नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 10वीं तारीख, तदनुसार 1 अगस्त 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

0: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीज की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। विविध भारती के कार्यक्रम इंटरनेट स्ट्रीमिंग, डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर पर उपलब्ध हैं। इन सभी साधनों के जरिए आप विविध भारती के कार्यक्रम 24 घंटे और दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं।
3: ये है विविध भारती।
2: आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

पहले सुनते हैं आज का चिंतन। मुंशी प्रेमचंद का कथन, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं, बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना ठीक नहीं। भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लिखा जोखा। अब से कुछ देर बाद सुबह 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, आज भाग 267। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से शुरू हो रही है एक नई श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर आप सुन सकते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम। सुबह 7 भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, 8 समाचार प्रभात, 8:15 पर त्रिवेणी। त्रिवेणी कार्यक्रम दोबारा दिन में 2 सुना जा सकता है। सुबह 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम होगा। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित है अभिनेत्री मीना कुमारी पर।

सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। आज की कहानी है मिसमैच, लेखिका डॉक्टर जया आनंद। 11:30 पर मैटिनी शो कार्यक्रम होगा। जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग सुनवाया जाएगा। प्रस्तुति तेजश्री कांबले। 12:05 पर यादों की महफिल, दिन में 1 बजे सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम होगा। 3 बजे मन चाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम होगा। आज नाटक सुनवाया जाएगा विवाह का प्रस्ताव। मूल रूसी कहानी एंटोन चेखव की, रूपांतरकार उग्रसेन, निर्देशक मधुप शर्मा। बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत शाम 4 बजे फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 5 बजे छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर जो संगीत सरिता कार्यक्रम प्रसारित होता है उसका पुनः प्रसारण होता है शाम 6:45 पर। वर्षा चौमासा श्रृंखला की पहली कड़ी सुनिएगा शाम 6:45 पर। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल, संगीतकार जयदेव द्वारा प्रस्तुत जयमाला कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। 7:45 पर ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा, पिसनहारी का कुआं,

कहानी श्रृंखला में आज इस कहानी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा हवा महल के अंतर्गत रात 8 बजे। वाचन अमरकांत दुबे, प्रस्तुति हर्षवर्धन कवई। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता भगवान दादा पर। रात 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे मैटिनी शो में क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति श्री कामले की। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और अब आपको सुनवाते हैं रामचरित मानस गान, आज भाग 267।

पवन पुत्र हनुमान सुग्रीव के गुप्तचर के रूप में श्रीराम लक्ष्मण के पास गए थे, किंतु उन्हें अपने इष्ट देव को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी। सीता हरण की घटना सुनकर वे तुरंत श्रीराम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले आए, जिनकी असंख्य वानर सेना के लिए जगत जननी सीता को ढूंढ लेना असंभव नहीं। सुग्रीव ने विलाप करती परवश सीता को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हाराम हाराम कहकर रोती बिलखती सीता का एक वस्त्र वहां गिरा था। श्रीराम को धीरज बंधाते हुए सुग्रीव ने वह वस्त्र खंड उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार उन्हें श्रीराम के विश्वास और मैत्री का गौरव प्राप्त हुआ। जब श्रीराम ने सुग्रीव से उनके वन में निवास करने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई। अत्यंत स्नेही भाई बाली उनका शत्रु बन बैठा। उसने न केवल उनका राज्य बल्कि पत्नी तक छीन ली। यह सब उस मायावी राक्षस के कारण हुआ, जिसका पीछा करते बाली ने यह कहकर गुफा में प्रवेश किया कि यदि वह राक्षस का वध करके 15 दिनों में लौट कर ना आवे तो उन्हें मृत मार लिया जाए। सुग्रीव ने पूरे 1 माह तक भाई की प्रतीक्षा की और गुफा से बाहर आती लहू की धार देखकर यह मान लिया कि बाली की

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता के श्रोताओ नमस्कार। आज से हम एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं जिसका शीर्षक है वर्षा चौमासा। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: शुभा जी आपका तो हम सभी, मैं व्यक्तिगत रूप से, विविध भारती परिवार की ओर से और विविध भारती के अनगिनत श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो श्रृंखला हम आरंभ कर रहे हैं वर्षा चौमासा, तो इसकी भूमिका में तो मैं अगर ज्यादा बोलूं तो अच्छा नहीं रहेगा, आप ही कुछ समझाएं बताएं कि आपके मन में क्या क्या सारी बातें हैं, हम कड़ी दर कड़ी बातचीत करते जाएंगे।
1: पहले तो ये बात आपको याद दिला दूं कि उत्तर भारतीय संगीत का और उत्तर भारतीय संगीत के जो विभिन्न प्रकार हैं, चाहे वो शास्त्रीय हों या उपशास्त्रीय हों या लोक संगीत हो, सभी का ऋतु से सघन संबंध रहा है। ये सत्य है एक, जो कि सर्वविदित है, सर्वमान्य है, तो इसे बार बार दोहराने की कोई आवश्यकता भी नहीं। और जो वर्षा का एक आप कह सकते हैं विशेष स्नेह रहा है संगीत के साथ, उसके बारे में भी सबको पता ही है। बल्कि मजे की बात यह है कि बारिश ना हो सामान्य जीवन में या कम हो तो अकाल का डर
0: तो
1: पड़ जाता है,
0: आंखों से शुरू हो जाती
1: नहीं,
0: है।
1: नहीं, अकाल का डर हो जाता है। यदि ज्यादा हो जाए तो बाढ़ का कहर ढा सकता है। लेकिन जो रचनात्मक लोग हैं, जो कलाकार हैं, जो कि कलाकृति करते हैं, उनके लिए बारिश हो ना हो, कम हो, बूंदाबांदी हो, मूसलाधार हो, वो उसके बारे में लिखते हैं, उसे संगीत में ढालते हैं और अलग अलग प्रकार का साहित्य, अलग अलग प्रकार की रचनाएं हमें मिलती हैं। तो इससे लगता है कि वर्षा और ये जो चार मास हैं जिसमें कि बारिश हमको मिलनी चाहिए यदि कृषियों के लिए लाभदायक हम मानते हैं इसे, तो इस दौरान शायद इतनी प्रेरणा मिली है कलाकारों को कि आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा खजाना है हमारे पास जिसके जिसमें कितने भी आप गोते लगा लें तो कभी उसका अंत नहीं मिलता, इतना गहरा है वो खजाना।
0: और इसी खजाने को हम टटोलते जाएंगे कड़ी दर कड़ी। शुभा जी, वर्षा काल या बारिश या वर्षा ऋतु कहने से बंदिशें जो आपसे अब हम सुनेंगे, बहुत से ऐसे कुछ शब्द जो मन को बड़ा मोह लेते हैं,

0: आप तो कह रही थी कि बरखा हो ना हो, बूंदाबांदी हो या अकाल हो, तो ये जो साहित्यिक रूप है शास्त्रीय संगीत में, उपशास्त्रीय संगीत में या लोक संगीत में बारिश का, उसको लेके कि घने बादल, बादलों की उमड़ घुमड़, काली घटा, दादुर मोर पपीहे की बोली, और बिजुरी छाने वाली बदरी, और ये बदरी न सिर्फ आकाश में, आंखों में भी बदरी छा जाती है वाली बात, तो संयोग और वियोग, श्रृंगार की बातें, काफी सारी चीजें आप हमसे बतियाती जाएंगी और हमारे सभी श्रोताओं को ये श्रृंखला बहुत ही पसंद आएगी। आज हम किस राग से या किस पद से आरंभ कर रहे हैं?
1: मैंने सोचा है कि आज जो पहली प्रस्तुति मैं करूं वो राग शुद्ध मल्हार की एक मध्यलय रचना आपको सुनाना चाहूंगी। शुद्ध मल्हार न केवल रागांग राग है, यानी कि शुद्ध मल्हार के जो अंग हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, उनको ध्यान में रख के अलग अलग मल्हार के प्रकार, जो कि बहुत विभिन्न प्रकार हैं हमारे पास, इसका कुछ अंश लेके उनकी रचना की गई है।
0: जी
1: यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जनक सा साधक माना
0: जी
1: जा सकता
0: जी
1: है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके जो विशेष स्वर संगतियां हैं, वो आपको अन्य मल्हारों में मिलेंगी।
0: जी
1: प्राचीन राग भी है, जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ में इसे मल्हार कहा गया है, कुछ में मलार कहा गया है, कुछ में मल्लारी कहा गया है, कुछ में मेघ भी कहा गया है,
0: जी
1: मेघ मल्हार भी कहा गया है। लेकिन जो मुझे तालीम में बताया गया है कि राग शुद्ध मल्हार जो है वो ही रागांग राग है, और इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूंगी। बिलावल थाट का राग है ये, और इसमें जो विशेष स्वर संगतियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। मल्हार का आप कह सकते हैं कि जो प्राण स्वर समूह है वो एक ये है, मा रे रे पा सा मा।

0: तो ये शुद्ध मल्हार का स्वरूप हमें बताया गया है जी। और इसमें एक तीन ताल में निबद्ध रचना मैं सुनाना चाहूंगी, धूम धाम ते आई बदरिया।
1: तो धूम धाम ते आई बदरिया, वाह।
0: जो स्वर में, जो इसके जो अक्षर हैं, इसमें ही एक एक भारी भरकम एक चीज है। धूम धाम ते आई बदरिया, गरज बरसे झहरे झूम झूम।
1: झहरे
0: जी, मतलब जो एक झरने की तरह जैसे फूटता है उस
1: हाँ।
0: तरह। गरज बरसे झहरे झूम झूम। अंतरा कहता है मोरवा शोर करे पपिहा पुकारे।
1: वही जो मोर शोर करत है
0: जी
1: जी।
0: मोरवा शोर करे पपिहा पुकारे, तापे पवन चलत सूम सूम।
1: हाँ।
0: तो ये रचना सुनाऊंगी
1: जी ये ताल कौन सी?
0: तीन ताल।
1: तीन ताल में निबद्ध है। और शुभा जी, शुद्ध मल्हार किस जाति का राग है?
0: इसमें पांच स्वर लगते हैं तो
1: तो ये
0: औड़व जाती है।
1: औड़व जाती है। तो मैं तो उत्कंठित हूँ ही, सुनाइए ना।

0: श्रोता मित्रों, आज की कड़ी हम यहीं समाप्त करते हैं। शुभा दीदी से हम अगली कई कड़ियों में मुलाकात करेंगे। आज शुभा जी को भी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं।

0: ही श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: आइए सुने भूले बिसरे गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अगस्त की पहली तारीख, और आप जानते हैं कि जब पहली तारीख होती है तो भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में पहला गाना कौन सा होता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इस गाने को बनाने वाले लोग कौन हैं? कमर जलालाबादी, बेमिसाल गीतकार जिन्होंने ये गाना लिखा और इसे स्वरबद्ध किया, हिंदी और मराठी के बहुत ही शानदार संगीतकार सुधीर फड़के ने किशोर कुमार की आवाज। और अगस्त के महीने का आगाज इस गाने के साथ कर रहे हैं। ये भी जरा गौर कीजिए कि 8 महीने 7 महीने बीत गए और 8वां महीना शुरू हो गया है साल का।
1: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, दिन है सुहाना।

बीवी बोली घर जरा जल्दी से आना, जल्दी से आना। शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करो ना बहाना बहाना बहाना, करो ना बहाना।

पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना वो पैसा जरा लाना। आज पहली तारीख है, खुश है जमाना।

मेहमान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

0: रेडियो फिर मजेदार है। आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पाता नहीं करता साला।
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना, जाना, वापस नहीं जाना।

0: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना।
1: खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख फिल्म का ये गाना और अगस्त की ये पहली तारीख कुछ बड़ी हस्तियों की याद दिलाती है, और उनमें से एक याद आती है महजबीन बानो की, जो मीना कुमारी के नाम से फिल्मी दुनिया में जानी गईं, और उनका आज जन्मदिन है। बस इतनी सी बात कि केवल 38 बरस जी मीना कुमारी।

भाभी की चूड़ियां फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में आपने सुना। पंडित नरेंद्र शर्मा की बोल थी और संगीत सुधीर फड़के का था। आशा भोसले का स्वर, साहिर लुधियानवी, रवि, फिल्म का नाम है काजल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज का दिन याद का दिन है जाने माने शायर अली सरदार जाफरी का भी। यूं तो फिल्मों से उनका बहुत ज्यादा लंबा नाता नहीं था। अली सरदार जाफरी वो शायर हैं जिन्होंने वो नज्म कही, जब नहीं आए थे तुम तब भी तो तुम आए थे, आंख में नूर और दिल में लहू की सूरत। पर भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक ऐसा गाना जो जाफरी साहब और मजरूह सुल्तानपुरी ने मिलकर लिखा है, फिल्म का नाम फुटपाथ। तलत महमूद की आवाज, संगीत खयाम का।

फुटपाथ फिल्म का ये गीत आपने सुना। बोले बिसरे गीत कार्यक्रम आप विविध भारती से सुन रहे हैं। और आपको बता दें कि बोले बिसरे गीत कार्यक्रम के अलावा आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 बजे, और आप उस कार्यक्रम में भी पुराने गाने सुन सकते हैं। आज जाने माने अभिनेता भगवान दादा का भी जन्मदिन है, और ये गाना है उनकी पहचान। सन 1951 फिल्म अलबेला।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है, लोग करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अलबेला फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना, लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजें थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल संगीत सी रामचंद्र का था। इसी के साथ आज का बोले बिसरे गीत कार्यक्रम हम यहीं खत्म कर रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के, ठीक सुबह 7:30 पर उसका आगाज करेंगे। दिन की इस भागदौड़ में विविध भारती के संग बने रहिए, देश की सुरीली धड़कन।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में दिलीप मंदिर फिल्म का ये गीत आपने सुना। हजरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में पूर्णिमा फिल्म का गाना, गुलजार के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

चलो। पाकीज़ा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना। कैफ भोपाली के बोल थे, संगीत गुलाम मोहम्मद का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में काजल फिल्म का गाना। साहिल लुधियानवी के बोल रवि की तर्ज़।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
3: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें।

0: सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
3: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल sec.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों

0: पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
1: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्ता में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, त्रिवेणी की धाराएं आज मिल रही हैं बारिश की बूंदों पर। थोड़ी खुशी थोड़ा गम अपने आगोश में समेटे बारिश जब आती है तो गर्मी से निजात दिलाती है, नहीं आती तो परेशानियों का पहाड़ ठेल देती है धरती पर। लोग बूंद बूंद के लिए तरस उठते हैं। हर मौसम में छिपा होता है थोड़ा न थोड़ा कहर। ये प्रतीक है इंसानों का। हर इंसान में खामियां और अच्छाइयां होती हैं। स्वीकार कीजिए अच्छाइयां, दूर फेंकिए बुराइयां। बरसात के मौसम की खूबियों से खुशी पाइए, इसके कहर से बचने का उपाय सोचिए, तभी बरसात के मौसम की खूबसूरती को आप महसूस कर पाएंगे।

मखमल की चादर सी बिछ जाती है जब होती है बरसात। पानी से नहाए पेड़ पौधे हरे रंग की पोशाक पहनकर झूमने लगते हैं। क्या आपने सोचा है, अगर बारिश न हो तो जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या हो, जिनका जीवन यापन ही पेड़ पौधों और जलाशयों से होता है। अगर बारिश नहीं हो तो नदी तालाब सूख जाते हैं, जंगल

के पशु पक्षी प्यासे ही दम तोड़ने लगते हैं। अब आप सोचेंगे, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम पेड़ पौधों को जिंदा रख सकते हैं, नए पेड़ पौधों की नई पीढ़ी तैयार कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण हमारी तरह स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ पर्यावरण से संतुलित बारिश होगी। हम बरसात के गीत यूं गाएंगे।

बरसात के सुहाने मौसम का गुणगान करना और बारिश की खूबसूरती पर फिदा होना सिर्फ इतना काफी नहीं है, हम सबकी एक जरूरी जिम्मेदारी है बारिश के पानी को इकट्ठा कर संग्रह करना। वर्षा जल के संग्रहण के अंतर्गत घरों की छतों पर पड़ने वाले वर्षा जल को एकत्रीकरण के लिए बनी टंकियों से जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा पत्थर से विशेष तरह की नालियां बनाकर जल संग्रहण किया जाता है। खोद कर बनाए गए तालाबों का निर्माण, पत्थरों और सीमेंट से किनारा बनाकर बीच में गड्ढा खोद कर जल संग्रहण और भी बहुत सारे तरीके इजाद किए जा चुके हैं। चलिए खुद से पूछें, वर्षा जल के संग्रहण में हमारा अपना कितना योगदान है।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सुं आयो विनायक, करो ये नसीती विने दरी, मारा दिलीप सेन जीव धारी।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आइए सुनिए चित्रलोक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 1 अगस्त की ये सुबह और मोनाली ठाकुर की आवाज। गीत अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत अमित त्रिवेदी, फिल्म का नाम लुटेरा।

कार्यक्रम चित्रलो। एक अगस्त की ये सुबह के दिन लोकमान्य तिलक को भी हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा।

0: فرحان اختر اور ساتھیوں کی آوازوں میں یہ گانا آپ نے سنا. آپ کو بتا دیں کہ آج ہم مینا کماری اور بھگوان دادا کو یاد کر رہے ہیں. صبح 9:30 پر آج کے فنکار کارکرم ابھینیتری مینا کماری پر کیندرت ہوگا, اور رات 9:30 پر ابھینیتا بھگوان دادا کو. اس کے علاوہ
1: ایک آواز جو آپ سبھی کے ذہن میں تازہ ہے اور جس سے جڑی ہیں آپ کی ڈھیر ساری ریڈیو کی یادیں.
2: میں نے یہ سوچا کہ بھارت میں تو بہت زیادہ بھاوک ہیں لوگ, کروڑوں کی سنکھیا میں سن رہے ہیں ریڈیو سے کان لگائے, تو میں نے تب اپنی آواز میں کمپن لاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میچ اب کمزور دل کے انسانوں کے لیے نہیں رہ گیا ہے.
1: جانی مانے کرکٹ کمنٹیٹر سوشیل دوشی کی زندگی کی کہانی, میٹنی شو 1 اگست دن میں 11 بجے صرف विविध भारती पर.
3: आए हाय
4: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा.
5: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए. 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है.
4: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
6: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
4: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
7: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है.
4: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
8: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा.
9: फोक कहते हैं आमद को. हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, उनको उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था. तो गडरण त भवन सु आयो विनायक करो ये नसीती विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया.
8: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर. तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन.
10: ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले.
0: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद.

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आई।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से चित्रलोक, नेहा भसीन की आवाज, इरशाद कामिल के बोल विशाल शेखर की तर्ज है। फिल्म है सुल्तान।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: फिल्म का नाम है वीर जारा।

0: चित्रलोक। दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जब नहीं आए थे तुम, अभी आपने ये गाना सुना, देव फिल्म का ये गाना था। आज अली सरदार जाफरी की याद का दिन है और ठीक इसी तरह की एक नज्म है उनकी, जब नहीं आए थे तुम, ये गीत देव फिल्म में निदा फाजली ने लिखा था। और अली सरदार जाफरी लिखते हैं, तुम नहीं आए थे जब तब भी तो मौजूद थे तुम, आंख में नूर की और दिल में लहू की सूरत, दर्द की लौ की तरह, प्यार की खुशबू की तरह, बेवफा वादों की दिलदारी का अंदाज लिए, तुम नहीं आए थे जब तभी तो तुम आए थे। अली सरदार जाफरी की याद को हमारा नमन। और चित्रलोक का अगला गाना ए आर रहमान, फिल्म हाईवे।

एआर रहमान की आवाज थी हाईवे फिल्म का ये गाना था। और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम हम खत्म कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर।

0: में जो रिदम है जंजीरों का,
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। बहते हुए आंसू ने आंखों से कहा थमकर, जो मैं से पिघल जाए वो जाम नहीं होता।

कार्यक्रम में आज दास्तान उस अदाकारा की, जिसे बचपन में महजबी बानू कहा गया और बड़ी होकर वो कहलाई मीना कुमारी।

मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। बचपन से ही मीना कुमारी बतौर बाल कलाकार फिल्मों की दुनिया में चली आई थीं। उनके बचपन का नाम था महाजबी बानू। अली बख्श और इकबाल बेगम की तीसरी बेटी थी महाजबी। इसके अलावा बाकी दो बेटियां थीं खुर्शीद और मधु। परिवार की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए नन्ही महाजबी को फिल्मी दुनिया में ला दिया गया। मीना कुमारी तब तकरीबन 5 बरस की थी और उनके पिता अली बख्श रूपतारा स्टूडियोज में एक्टर बनने के लिए जद्दोजहद किया करते थे। अपनी पत्नी के जोर देने पर उन्होंने महाजबी को भी फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया। हालांकि नन्ही महाजबी अभिनेत्री बनना नहीं चाहती थी, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी। 7 बरस की उम्र में नन्ही महाजबी ने फिल्म फर्जंदे वतन में काम किया। फिल्मी दुनिया में आने के लिए नन्ही महाजबीन का नाम बदलकर मीना कुमारी रख दिया गया। प्रकाश स्टूडियोज की फिल्म फर्जंदे वतन सन 1939 में आई थी और इसके निर्देशक थे विजय भट्ट। इसके बाद नन्ही मीना कुमारी ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा और अलादीन और

जादुई चिराग। प्रकाश स्टूडियोज में इस नन्ही कलाकार ने अपनी अभिनय प्रतिभा के जरिए लोगों का दिल जीत लिया था। इसीलिए फर्जंदे वतन के निर्देशक और निर्माता विजय भट्ट ने जब बैजू बावरा बनाने का फैसला किया तो बतौर हीरोइन मीना कुमारी को मौका दिया। बैजू बावरा मीना कुमारी की पहली कामयाब फिल्म थी। सन 1953 में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मीना कुमारी ने इस फिल्म में अभिनय के लिए हासिल किया।

0: तुम्हारा।
1: इसके बाद बीना कुमारी की एक के बाद एक कई कामयाब फिल्में आईं। परिणीता 1953, फिल्म दायरा 1953, बीआर चोपड़ा की फिल्म एक ही रास्ता में भी उन्होंने अभिनय किया। सन 1957 में आई शारदा।

मीना कुमारी ने ज्यादातर वो फिल्में की जिनमें वो एक दुखियारी स्त्री थी, समाज और हालात की सताई हुई एक दुखियारी स्त्री जिसके हिस्से में सिर्फ गम आए हैं, आंसू आए हैं, तकलीफें आई हैं और आई हैं ठोकरें।

मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हल्की फुल्की फिल्में ना की हों। सन 1955 में आई सी रामचंद्र के नायाब संगीत वाली फिल्म आजाद

0: आधे घंटे के इस कार्यक्रम में अदाकारा मीना कुमारी के पूरे करियर को समेटना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये तो मुमकिन है कि हम उनकी सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं की बातें करें। सन 1962 में आई फिल्म साहेब बीवी और गुलाम, गुरुदत्त की यह फिल्म मीना कुमारी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कही जा सकती है।
1: मुझे यहां क्यों बुलाया?
2: कुछ भी नहीं देख पाए।
1: क्या बकवास करती हो, मैं यहां बैठा तुम्हारा मुंह देखा करूं? इतनी फुर्सत नहीं मुझे।
2: सुनो तो, मेरा मुंह देखना तुम्हें पसंद नहीं तो ना देखो, पर आज तुम वहां ना जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ।
1: ना जाओ? वो क्यों? इस हवेली के मर्दों को तुमने निकम्मा समझा खाया क्या?
2: पत्नी के पास रहने से मर्द निकम्मा तो नहीं हो जाता जी? धर्म को साक्षी मानकर तुमने मुझसे ब्याह किया है,

0: क्या मेरी तरफ तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं?
1: जिस मर्द को अपना कर्तव्य जोरू से सीखना पड़े, लाना तो
0: रोज ही तो जाते हो वहाँ, एक दिन मेरे पास भी रह गए तो।
1: मैं मर्द हूँ छोटी बहू, चाबियों के ये गुच्छा नहीं जो सदा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं।
0: सदा की कौन कहता है जी, सिर्फ आज, कभी तो सेवा का मौका दो मुझे। हंसे क्यों?
1: सेवा करना जानती हो तुम लोग?
0: स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ।
1: मुझे खुश करने के लिए गाना गा सकोगी? जैसे चुन्नी दासी गाती है, गा सकोगी? नाच सकोगी मेरे सामने?

लोगों ने यह भी कहा कि फिल्म साहिब बीवी और गुलाम की यह भूमिका, जिसमें मीना कुमारी छोटी बहू बनी थी, असल में उनकी असली जिंदगी से बहुत मेल खाती है। दरअसल मीना कुमारी कमाल अमरोही से अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी के 6 साल के अंदर ही वो और कमाल अमरोही अलग हो गए थे। मीना कुमारी ने तलाक के समय लिखा था, तलाक तो दे रहे हो नजर कहर के साथ, जवानी भी मेहर के साथ लौटा दो। मीना कुमारी के अंदर एक ठोकरें खाई हुई स्त्री थी, जिसका दिल छलनी छलनी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मीना कुमारी शायरा भी थी। उनकी मौत के बाद जाने माने शायर, गीतकार और फिल्मकार गुलजार ने उनकी गजलों की किताब छपवाई और उसका संपादन किया। अपनी एक गजल में मीना कुमारी लिखती हैं, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, हम सफर कोई गर मिले कभी, दोनों चलते रहे कहां तन्हा। ये सच है कि मीना कुमारी में कमाल का सौंदर्य था, भला की खूबसूरती थी, लेकिन उनकी खासियत थी उनके चेहरे पर झिलमिलाते भाव। उनकी खासियत थी दर्द को अपने चेहरे पर लहर की तरह छा देना। जरा फिल्म दिल एक मंदिर का ये गाना सुनिए और जहन में याद कीजिए स्क्रीन पर झिलमिलाती मीना कुमारी को, जिसके दिल में है दर्द का तूफान।

कहते हैं कि अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों की वजह से मीना कुमारी ने शराब पीना शुरू कर दिया था और यही वजह थी कि जिंदगी उनके हाथों से फिसलती चली गई। सन 1962 मीना कुमारी के करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल था। इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए तीनों नॉमिनेशन मीना कुमारी को मिले। फिल्म आरती

और फिल्म साहेब बीवी और गुलाम। जाहिर है कि कोई प्रतियोगिता थी ही नहीं, मीना कुमारी का मुकाबला खुद से था और साहेब बीवी और गुलाम के लिए उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1965 में आई फिल्म काजल।

लेखक और गीतकार गुलजार शायरी की वजह से मीना कुमारी के करीब आ गए थे। उनकी शायरी की दुनिया को गुलजार ने जाना पहचाना था। सन 1971 में जब बतौर निर्देशक गुलजार ने फिल्म मेरे अपने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाया तो फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका मीना कुमारी को सौंपी।

मीना कुमारी के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी पाकीज़ा। इसे बनने में कुल 14 साल लग गए, लेकिन फिल्म पाकीज़ा के जरिए पर्दे पर कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने रचा एक तिलस्म।

मुझसे मेरी कहानी बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। एक अदाकारा जिसके भीतर था दर्द का समंदर, जो गहरी तन्हाई की शिकार थी, 31 मार्च 1972 को महज 39 बरस की उम्र में इस फानी दुनिया से चली गई। उनके अपने अल्फाज हैं, आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। दिन डूबे हैं या डूबे बारात लिए किश्ती, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता।

0: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिस मैच, उन्हीं के स्वर में।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे।

कहाँ रख दिया मैंने। कितना सोचा था कि आज की पार्टी में नया वाला सलवार सूट पहनूंगी, पर इसका दुपट्टा पता नहीं कहाँ रख दिया। ज्यादा

0: संभाल कर रखो तो भी चीजें नहीं मिलती। पर दुपट्टा कोई छोटी चीज तो है नहीं, अच्छा खासा 2.5 मीटर का दुपट्टा है। सौम्या ढूंढ ही रही थी कि आलोक, सौम्या के पति ने आवाज दी। कितना टाइम लगाती हो सौम्या? 7 बजे पहुंचना है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आ रही हूं आलोक, बस बस 5 मिनट। क्या करूं, कहीं टेलर के पास ही तो नहीं छूट गया। दुपट्टे का पीको करने दिया था। उफ, मैं अब जा रहा हूं। तुम्हारा हर बार का यही हाल है, कभी जो समय से तैयार हो जाओ, पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं। आलोक झुंझला पड़ा। कितनी तो प्लानिंग की थी, रात ही में सोच लिया था क्या पहनना है, अम्मा के लिए खाना बनाकर रख दिया था, दोनों बच्चों को प्रीति के यहाँ छोड़ आई थी। जब तक हम आए तब तक वे दोनों उनके बच्चों के साथ खेलेंगे खाएंगे, उनके लिए केक बिस्किट वगैरह सभी तो दे आई थी। आलोक की भी ड्रेस निकाल कर रखी थी, सब कुछ तो प्लान किया था। अब और कितना प्लान करूं, इस दुपट्टे ने सारा गड़बड़ कर दिया। सौम्या अलमारी में ऊपर के नीचे के रैक सब खंगालते हुए सोचती जा रही थी, इतना सब करने के बाद भी काम सही से नहीं हो रहा है।
1: कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

बात उन दिनों की है जब सौम्या का पहली बार आलोक के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना था। नई नई शादी के बाद अपने पति के साथ फिल्म देखने जाना बहुत उत्साह से भर रहा था सौम्या को। उसने अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया था, लेकिन तैयार होने में केवल 5 मिनट की देरी हो गई थी। बस आलोक मूवी तो ले गए लेकिन एक शब्द नहीं बोला। सौम्या का इस तरह मूवी देखने का अनुभव बड़ा ही अलग था। अपने मायके में तो जब भी कोई मूवी देखती थी तो उस पर सभी कितनी चर्चा करते थे, उसके गाने गुनगुनाते थे, पूरी समीक्षा कर डालते थे, पर यहां तो अंदाज ही जुदा था। इस तरह पहली बार चुपचाप नाराज होकर कोई मूवी दिखाए तो कैसी लगेगी मूवी। खैर, रूठे हुए पति के संग सौम्या ने जैसे तैसे पूरी फिल्म देखी, फिर कोई चारा भी तो नहीं था।

सौम्या, तुम ना पार्टी का पूरा मूड बर्बाद कर रही हो। लोकल ट्रेन छूट गई तो कैब से जाना पड़ेगा और इतना ट्रैफिक होता है कि शाम को पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगा। और तुम्हारी गाड़ी है कि खिसक ही नहीं रही है। 5 मिनट में तैयार हो, नहीं तो तुम अपनी पार्टी यहीं मनाती रहना। आलोक की तलखी से सौम्या चिढ़सी गई। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है आलोक के पास। अभी मैंने कुछ बोल दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे और एक हफ्ते बात ही नहीं करेंगे। कितने भी नए साल आ जाएं, इनमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला। हे भगवान, तुमने पूरब पश्चिम की जोड़ी बनाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी याददाश्त भी तो माशाल्लाह है, ऐसी जगह दुपट्टा रख दिया कि वक्त पर मिल ही नहीं रहा। यही सब सोचते हुए सौम्या ने गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा पहन लिया। अब क्या करे, नहीं मिल रहा है तो मिसमैच करना पड़ेगा। सौम्या गोल्डन दुपट्टे के साथ तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई और दोनों लोकल ट्रेन के लिए ऑटो से स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर आलोक कुछ नहीं बोला। सौम्या को भी गुस्सा आ गया था। जाओ, मत बोलो। मैं भी नहीं बोलूंगी, बहुत मना लिया।

ठाणे स्टेशन पर ट्रेन आते ही आलोक जनरल डिब्बे में चढ़ा और सौम्या लेडीज डिब्बे में। सौम्या ने चढ़ते समय देखा आलोक का मुंह अब भी फूला हुआ था। सौम्या का भी मन बुझसा गया। कितना सोचा था नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, खूब एंजॉय करेंगे, पर ये तो 5 मिनट की देरी भी नहीं आलोक को बर्दाश्त। मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ का कितना इंतजार करते हैं, जरा भी झुंझलाते नहीं। और एक हम दोनों, बिल्कुल मिसमैच। सौम्या को मन बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा है।

लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन आराम से खड़े रहने भर की जगह सौम्या को मिल गई थी। लोकल ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट, जैसे कि एक रंग बिरंगी दुनिया वहां समा गई हो। कोई महिला बैठे हुए हाथ में माला लेकर जप रही थी, तो दूसरी मोबाइल में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कई सारी महिलाएं दफ्तर से लौटने के बाद चेहरे पर थकान लिए घर जाने की प्रतीक्षा में निढाल सी खड़ी दिख रही थी। इन सब की जिंदगी में भी क्या सब कुछ मन मुताबिक होगा? कुछ ना कुछ अभाव तो सबके जीवन में होता ही है। इनके जीवन में भी कुछ झगड़े झंझट होते ही होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच रही थी कि उसे लेडीज डब्बे में पीछे की ओर बैग टांगे, जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप पहने उत्फुल्लता से बतियाती हुई कॉलेज जाने वाली लड़कियां दिखी। वैसे तो वे सब कॉलेज से वापस आ रही थी, लेकिन उनके दमकते चेहरे इसका तनिक भी आभास नहीं दे रहे थे। हल्का मेकअप तो जरूर था उनके चेहरे पर इससे कहीं अधिक भविष्य को लेकर बुने गए सपनों की चमक इन लड़कियों के चेहरे की रौनक को आबाद कर रही थी। ये लड़कियां कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रही थी। इन्हें स्पष्ट पता है कि इन्हें क्या चाहिए।

सचमुच ये लड़कियां अपनी मंजिल खुद तय करती हैं, और एक मैं थी। करियर, कपड़े, बाहर जाना, सब में किसी न किसी की अनचाही सलाह। और स्वयं भी तो वो कंफ्यूज रही। शादी की उम्र पर भी नहीं पता चल रहा था कि शादी किसके साथ की जाए। इसलिए तो सब मिसमैच। एताई, पुड़े चला ना। यह आवाज सुनकर सौम्या की सोच को विराम लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कान के झुमके वाला, बांगड़ी वाला आवाज दे रहा था। कुछ महिलाएं उससे झुमके, कंगन वगैरह खरीदने लगी। सौम्या को फिर याद हो आया कि किस तरह उसने सपने संजोए थे कि उसे उसका पति झुमके लाकर पहनाएगा। शायद हिंदी फिल्मों का असर रहा हो, पर यहां तो पासा ही पलट गया। सौम्या के पतिदेव जी को फिल्में देखने का कोई खास शौक ही नहीं था, तो फिर ये झुमके वाला रोमांस तो बहुत दूर की कौड़ी थी।

0: अंतराल के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। लीजिए सुनिए मिस मैच, इस कहानी का शेष भाग।
1: सौम्या को साहित्य संगीत से प्रेम और आलोक गणित का पहाड़ा पढ़ने वाले। सौम्या ने अगर आलोक को पकड़ के कोई कविता सुना भी दी तो कहेंगे, अच्छा तो तुम बताओ कि इस कविता के लिए क्या कहूं, या कविता सुनते सुनते कहते, वो तुमने दूध वाले का बिल दे दिया। सौम्या अपना सर पकड़ के रह जाती। कविता की ऐसी रस निष्पत्ति होगी उसने कभी नहीं सोचा था। नई नई शादी के बाद पहली बार सौम्या ससुराल में आरती कर रही थी। बड़े ही भाव के साथ आरती गा रही थी कि ओम जय जगदीश का अलग ही सुर या असुर कानों में सुनाई पड़ा। ये बेसुरा संगीत आलोक के मुखार बिंद से सुनाई पड़ रहा था। ये सुनते ही सौम्या की हंसी छूट पड़ी। ऐसा सुर संगम जिंदगी में उसने पहली बार सुना था। ये सब याद करते हुए सौम्या के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर आसपास लोकल ट्रेन में अन्य महिलाओं को देखते हुए स्वयं को फिर से गंभीर मुद्रा के साथ बांध लिया। उसे अपने आप में मुस्कुराता देखकर वे क्या सोचेंगी, पर मुंबई में कहां किसी को फुर्सत किसी के विषय में सोचने की। अच्छा भी है, इससे आप बेपरवाह रह सकते हैं, और अच्छा नहीं भी, क्योंकि कभी कभी मन को कितना भाता है जब कोई आपकी परवाह करता है। हां, करता था ना परवाह, बिना बोले सिर्फ अपनी आंखों से, और कभी बोला भी तो सबके बीच सौम्या की प्रशंसा करते हुए, बहुत अच्छा गाती है सौम्या, और लिखती कितना अच्छा है, और ओह कहां से कहां बात लेकर चली गई, सब पुरानी बातें जिन्हें बस याद करके मन झूम उठता है।

देखा तो आलोक का फोन था। हेलो, सौम्या ने फोन उठाते हुए कहा। क्या सौम्या, कितनी बार कॉल किया और तुम हो कि उठा ही नहीं रही हो, लगभग चिल्लाते हुए आलोक बोले। अरे ट्रेन में इतना शोर हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ेगा, और फिर मोबाइल पर्स में रखा है। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बस इधर उधर रहता है, एक बार में कभी फोन उठाना ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ हो तो बहुत कुछ सकता है, बस आगे बढ़ने से खुद को रोक लेती हूँ, सौम्या कहना चाहती थी पर कहा नहीं। अच्छा सुनो, दादर आने ही वाला है, 3 स्टेशन के बाद ही उतरने के लिए तैयार हो जाओ, आलोक की आवाज में अब भी तलखी थी। जरा मिठास से नहीं बोल सकते हैं क्या, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना अच्छा नहीं। कबीर ने कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पर साहित्य तो पढ़ा ही नहीं आलोक ने, तो कैसे समझ आएगी ये सब बातें। सौम्या मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी।

सी लाइन में खड़ी हो गई। ऐसे भी मुंबई में कोई काम बिना लाइन के चलता ही नहीं, थोड़ा भी तलविचल हुए कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। जब सौम्या आलोक के साथ मुंबई पहली बार आई थी तो ऐसा ही कुछ अस्त व्यस्त सा माहौल हो गया था। आलोक के हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी और सौम्या के हिसाब से ये तो कोई गलती ही नहीं। फिर अगर गलती मान रहे हैं तो वो गलती क्या थी? तो बात ये थी कि सौम्या साबुन लाना भूल गई थी। एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने में कुछ चीजें भूलना तो सामान्य बात है। इतना सामान पैक करना है तो कुछ ना कुछ छूट सकता है, पर आलोक को ये सब आधारभूत गलती लगती थी। साबुन कैसे भूल सकती हो? अब भूल गई, इतना पैक करना था सब कुछ, लेकिन साबुन कैसे कोई भूल सकता है? ओफो, साबुन ही है ना, ले आएंगे यहीं से। पर तब तक आलोक का मूड बिगड़ चुका था, यानी मुंबई पहुंचते ही सौम्या की लाइन में विचलन आ गया था। सौम्या यही सोचती रहती कि जिंदगी में ये गणित और साहित्य का संगम आखिर भगवान जी ने कैसे कर दिया।

0: है बॉम्बे मेरी जान।
1: ए ताई, दादर उतराए जा तुला। पीछे आती हुई आवाज से सौम्या की सोच को विराम लगा। सौम्या ने हां की मुद्रा में सिर हिलाया और फिर सोचते हुए मुस्कुरा दी। मंजिल तक पहुंचने के लिए लाइन में रहना जरूरी है। अब जो है जैसा है सब ठीक है। आलोक अगर पक्के गणितज्ञ तो मैं पक्की साहित्यिक, और फिर साहित्य वाले तो निश्चित रूप से अधिक समझदार होते हैं। कब कहां कैसे व्यवहार करना है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। और फिर व्यवहारिक जोड़ गुणा भाग भी तो उसे खूब आता है। चला ना ताई, लेडीज डिब्बे में फिर से आवाज गूंज गई। दादर स्टेशन आ गया था। लेडीज डिब्बे में भी बहुत भीड़ हो गई थी। सौम्या 8-10 लेडीज के बाद उतरी। ट्रेन से उतरते ही सौम्या अपना दुपट्टा संभालते हुए अपने बाल ठीक करने लगी। आलोक दूर खड़े होकर सौम्या को देख रहे थे। सौम्या आलोक के पास पहुंची। आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, ये कौन सा दुपट्टा डाल लिया? आलोक की बात बीच में काटते ही सौम्या बोली, वो मिसमैच किया है। मिसमैच पर अच्छा लग रहा है, अभी मैंने गौर किया। आलोक रूखे से ही बोले। और मैं कैसी लग रही हूं? सौम्या ने धीरे से पूछा। पता नहीं, आलोक का रूखा सा जवाब था, पर आंखें मुस्कुरा रही थी। सौम्या ने उन मुस्कुराती आंखों को देख लिया था, उसे हंसी आ गई। हम दोनों, व्हाट अ मिसमैच। पर जो भी है शायद अच्छा ही है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका हाथ पकड़कर साथ चलने वाले आलोक ही तो हैं। भले सुर साहित्य से उतना जुड़ाव नहीं, लेकिन उसके जीवन को पूर्णता के साथ सुरम्य बनाने वाले आलोक ही तो हैं। और फिर आलोक से जुड़ने के बाद भी न उसके अपने छूटे न उसके सपने। सौम्या का हृदय भाव से लबालब हो चुका था। वह अपना दुपट्टा संभालते हुए आलोक के साथ स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगी।

गीतों भरी कहानी। आज आप सुन रहे थे डॉक्टर जया आनंदी की लिखी गीतों भरी कहानी मिस मैच। वाचन स्वर था जया आनंद का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: मैटिनी शो प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी आवाज मौजूद है जिसने क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया और इनकी आवाज के हम सब दीवाने रहे हैं। हमारे बीच हैं पद्मश्री सुशील दोषी। ये है इस बातचीत का पहला भाग। आइए स्वागत करते हैं सुशील जी का।
1: धन्यवाद यूनुस और सभी श्रोताओं को एक बार फिर से नमस्कार। ये आवाज तो आप बरसों कमेंट्री में सुनते रहे होंगे और मुझे खुशी है कि एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। जीवन की कहानी की यात्रा किस तरह गुजरी, इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी, तो जिगर थाम कर बैठिए, बहुत लंबी बातचीत होगी अब।
2: क्या बात है, क्या बात है। मैं ना सर बहुत रोमांचित हूँ और एक चीज़ और है कि आपके सामने बैठने पर थोड़ा घबराया हुआ भी हूँ कि इतना विराट और लंबा अनुभव आपका रहा है। मुझे लगता है यात्रा इंदौर से शुरू करते हैं, अपने बचपन के बारे में बताइए।
1: नहीं देखिए, वैसे तो गरीब परिवार से हम थे, 15 रुपए महीने के मकान में किराए से रहते थे।
2: कौन सा मोहल्ला था वो?
1: वो इतवारिया बाजार, जिसे अब हुकमचंद मार्ग इंदौर जी कहते हैं, वहाँ रहते थे। और 4 भाई हम लोग और माता पिता, मैंने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी संघर्षरत थे। वहाँ से शुरुआत की यात्रा और टाटपट्टी वाले स्कूल में पढ़े
2: जी जी,
1: मास्टरों की रोज मार खाई और मुर्गा बने।
2: हाँ,
1: लेकिन ऐसा नहीं कि अगर दिल में इच्छा हो ना तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, और माता पिता का आशीर्वाद रहा तो फिर आप सही दिशा की तरफ प्रवृत्त भी हो सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने कहा कि परिवार जो है वो थोड़ा अभावों के रास्ते

0: पर था, और जैसे स्कूलों में आपने पढ़े, सब आज के बच्चों को तो पता भी नहीं है कि मुर्गा कैसे बनाया जाता है, मास्टर जी कैसे मुर्गा बनाते हैं। ये जो बचपन था, इस बचपन में किताबें बहुत सारी थी। मैंने ये जाना है कि आप लाइब्रेरीज में ब्लेड लेके जाते थे।
1: अब क्या बताएं, देखिए उस समय पैसे तो थे नहीं, वो
0: जी
1: क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी, तो हम करते ये थे कि लाइब्रेरीज जाते थे और बहुत कम बड़ी पत्रिकाओं में
0: जी
1: फोटो आते थे। एक पत्रिका में कभी बड़ी मुश्किल से क्रिकेटर का किसी का फोटो, और मैं एल्बम में क्रिकेटर्स के फोटो इकट्ठे किया करता था,
0: जी
1: और पैसे थे नहीं कि पत्रिकाएं खरीद सकें। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, विनय उसका नाम था, मेरे साथ पढ़ता था, तो हम दोनों जाते, ब्लेड ले जाते और चुपके से वो फोटो काट कर घर ले आते।
0: वाह,
1: एक दिन पकड़े गए,
0: अरे
1: और
0: बाप रे,
1: पकड़े गए तो मेरे दोस्त को आप ये समझिए कि उसने दो चपत लगाई,
0: वो
1: और अब कहा कि इस तरह के काम करते हो, शर्म नहीं आती। तो हम वापस आ गए और बड़ा छोटा मुंह हो गया, लेकिन देखिए पुराने दोस्त कैसे होते हैं। उसने ये कहा कि यार घर पर मत बताना कि आज हमको चपत पड़ी है, क्योंकि घर पर बताएंगे तो ये काम जो हम कर रहे हैं ना, ये कल से नहीं कर पाएंगे।
0: जी
1: तो देखिए कई बार मैं सोचता हूँ कि आज जब पद्मश्री मिल गया, या जिंदगी में आप हम व्यावसायिक तौर पर इतने आगे बढ़ गए, इतना नाम कमाया, लोग इज्जत कर रहे हैं, शोहरत प्राप्त हो गई, सब कुछ है, लेकिन हम उस दोस्त को कैसे भूल सकते हैं जो कि पद्मश्री मिलने के बाद भी उसका हक भी तो कुछ है उस उपाधि पर, जिसने हमें ऐसे वक्त जबकि दुनिया हमारे साथ नहीं थी, वो हमारा साथ देने को तैयार थे। तो ऐसे ऐसे दोस्त हुआ करते थे,
0: जी
1: बचपन की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी मुझे भावुक कर देती हैं।
0: जी बहुत प्यारी बात है। इंदौर बहुत प्यारा शहर है, संस्कारों वाला शहर है, पारंपरिकता और आधुनिकता को साथ लेके चलता है। जिन दिनों में आप पढ़ रहे थे, क्रिकेट मैच के बारे में जानने का जरिया सिर्फ अखबार थे, कमेंट्री अंग्रेजी में सुना करते थे।
1: बिल्कुल, और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप लोग बाथरूम में जाते हैं और गाने गुनगुनाते हैं ना,
0: जी
1: मैं बाथरूम में जाता था तो कमेंट्री गुनगुनाना था।
0: ओ
1: मतलब आप समझिए कि लोग, अब अंग्रेजी में कमेंट्री आती थी, हिंदी में तो आती नहीं थी। FPS सिस्टम का खेल, यानी कि फुट पाउंड सेकंड,
0: बिल्कुल
1: 22 यार्ड से जो खेल शुरू हुआ, लोग कहते थे हिंदी का इसमें क्या काम, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अंग्रेजी में ही कमेंट्री करते थे, और उनकी शैली में, जॉन ऑर्लट हो,
0: हाँ,
1: एलन मैकगिलवरी हो, या ऐसे बड़े बड़े कॉमेंटेटर्स जिनके हम नाम जानते हैं,
0: और
1: उनकी,
0: बैरिटोन एकदम
1: हाँ,
0: वो
1: उनकी मोटी आवाज में वैसे ही निकाल कर मैं
0: जी
1: वैसे ही कमेंट्री करता था, लोग बड़े प्रभावित होते थे। और स्कूलों में भी कोई मैच चलता था ना, मैं एक झाड़ के नीचे बैठकर कमेंट्री करने लग जाता था।
0: वाह
1: तो
0: वाह
1: ये एक वहां से शौक हुआ, और बचपन से मुझे पता नहीं था कि मैं कमेंटेटर बनूंगा,
0: जी
1: लेकिन कहीं से कहीं बुनियाद जो पड़ी ना मेरी, शायद वहीं से पड़ी होगी, क्योंकि वही चीज आगे जाकर विकसित हो गई।
0: बिल्कुल। तो पिताजी का क्या रवैया था?
1: नहीं देखिए, गरीबी के बावजूद, देखिए मैं पढ़ने में सबसे कमजोर, दुबला पतला, 48 किलो, जब मैं कॉलेज में भी जाता था ना, 48 किलो ही वजन था। तो मेरे प्रति उनको एक अलग से ज्यादा प्यार था। हमारे दूसरे तीन भाई हैं, तीनों भाई एमटेक आईआईटी से,
0: जी जी
1: मतलब इतने विद्वान और पढ़े लिखे, हमेशा प्रथम श्रेणी में आने वाले, मैं सप्लीमेंट्री लाकर पास होने वाला। उसके बावजूद भी वो इस कारण पिताजी प्यार करते थे कि ये कमजोर है, इसको हमारी मदद की जरूरत है।
0: ओके
1: और दूसरी बात ये कि उनको लगा कि ये, अगर इसको हिंदी में और इसमें ज्यादा शौक है, तो उनको लगा कि मैं क्रिकेट की तरफ प्रवृत्त हूं, तो क्रिकेट मेरी किताबों में, वो भी एल्बम में चिपकाते थे खुद बैठकर,
0: अरे गजब।
1: और बड़ी मदद की। और उस समय तो पता नहीं था, लेकिन एक बार मुझे याद है कि 1959-60 में ऑस्ट्रेलिया की रिची बेनो की टीम भारत आई, वो
0: हाँ
1: ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी रिची बेनो की, वो विश्व विजेता टीम थी, और
0: बिल्कुल
1: दुनिया में उसका कोई जोड़ी नहीं था। बड़े बड़े खिलाड़ी, रिची बेनो, लिंडवाल और नॉर्मन ओनील, नील हार्वे जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, जिनके फोटो में एल्बम में इकट्ठे किया करता था, तो वो आए हुए थे। और मैंने पिताजी से जिद पकड़ी, मैं 13 साल का था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था,
0: जी
1: मैंने जिद पकड़ी कि मुझे बम्बई टेस्ट मैच देखना है। और पिताजी, पता नहीं क्यों, मैं पिता होता तो कभी भी अपनी बेटे की ये बात स्वीकार नहीं करता,
0: जी
1: लेकिन वो, उन्होंने कहा कि बेटे की जिद पूरी करनी है, तो वो
0: वाह,
1: मुझे बंबई ले गए टेस्ट मैच दिखाने।
0: इंदौर से बंबई आए
1: इंदौर
0: आप
1: से
0: लोग?
1: बंबई ले गए, पैसे थे नहीं, जैसे तैसे टिकट कैसे जुगाड़ किया होगा, यहां से बंबई, बंबई कहते थे जब, बंबई जाने का, बंबई गए। उनको पता नहीं था कि अगर 50,000 लोग बाहर प्रतीक्षा करते हैं, तो 50,000 लोग

0: अंदर भी बैठे हैं और 50,000 लोग अंदर घुसने की प्रतीक्षा में बाहर खड़े हैं, तो उनको लग रहा था कि बंबई जाएंगे, टिकट दिलाएंगे। वो पिता थे, उनको ये बेटे में दिलचस्पी थी, क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो मुझे ले गए और वहां जाकर हम पिता पुत्र 4 दिन तक स्टेडियम, ब्रेबोन स्टेडियम
1: जी जी
0: के चक्कर काटते रहे और टिकट का जुगाड़ हुआ नहीं। चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई,
1: जी
0: उसने कहा कि अरे मैंने आपको पहचान लिया है और जुगाड़ नहीं हुआ क्या? तो बाबूजी कहता था पिताजी को, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बच्चे का दिल टूट जाएगा, हम बहुत दूर से आए हैं, इंदौर से आए हैं, तो जैसे तैसे ये मैच देख ले। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, चाय पान के समय जो बाहर आता है ना रेला, चाय पीने और मूंगफली खाने, तो मैं जब वापस जाएगा रेला तो मैं इस बच्चे को अंदर ठेल दूंगा, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, आपको अंदर नहीं जाने दूंगा।
1: अरे बाप रे।
0: तब देखे आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहे, मैं 13 साल का था, इतनी संवेदना भी नहीं थी कि पिताजी बाहर खड़े हैं,
1: जी जी
0: मैं अंदर फुदकता हुआ चला गया खुशी में।
1: गजब।
0: और अंदर जाकर जो दृश्य देखा, मैंने देखा 50,000, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है, कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, कोई तरह तरह के फोटोग्राफ्स लेके ऊंचे दिखा रहा है, प्ले कार्ड्स दिखा रहा है, और ढोल मजीरे बज रहे हैं, तरह तरह की ड्रेसेस पहनकर लोग खड़े हैं। तब मेरी निगाह पड़ी कमेंट्री बॉक्स पर,
1: वाह
0: तो मैंने
1: वाह।
0: किसी से पूछा कि यार ये कमेंट्री कौन कर रहा है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा बॉबी तेलियार खां और विजय मर्चेंट यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं।
1: लेजेंड लोग।
0: मैंने जगह देखी तो मेरे दिल में एक हुक सी उठी कि यार क्या जगह है, राइट इन लाइन विद द विकेट, बिल्कुल विकेट की लाइन में है, बर्ड्स आई व्यू, पक्षी जैसे मैच देख रहा है, सीधी लाइन में स्विंग और सीम और सब कुछ दिखाई दे रहा है, गजब की जगह है। मन में एक विचार आया कि क्या कभी यहाँ बैठने का मौका मिलेगा। और देखिए जंगली सपने भी कभी कभी कैसे सच होते हैं, कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच उसी ब्रेबोन स्टेडियम से, उसी कमेंट्री बॉक्स से, सन 1972-73 में तब किया जब टॉनी लुइस की टीम भारत आई।
1: 12 बरस लग गए।
0: तो 12 बरस लग गए, आप देखिए कि कैसे ये काम हो। इसलिए जो कलाम साहब कहते हैं ना कि सपने देखो तो खुली आंखों से देखो,
1: वाह वाह,
0: अगर
1: वा, वा।
0: बंद आंखों से सपने देखोगे तो सपना टूटने के बाद वो बिखर जाएगा, लेकिन जब आप खुली आंखों से सपना देखोगे तो उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो शायद वही बात थी कि वो सपना मैंने देखा कमेंट्री बॉक्स का, वो जाकर अब पूरा हुआ। अब इसमें दो बातें हुई साहब, देखिए यूनुस जी, मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये कि खुली आंखों से सपना देखा, और दूसरी बात उस पिता का सहयोग जो 90 मिनट तक बाहर खड़ा रहा और वापस आने की प्रतीक्षा में इसलिए उसी जगह खड़ा रहा जो कि कहीं बच्चा गुम ना हो जाए वापस आने पे, इतनी भीड़ भड़के में,
1: जी जी
0: बम्बई के बारे में कुछ जानता ही नहीं, ये वापस आएगा तो भीड़ में गायब हो जाएगा, तो वहीं खड़े रहे। और जब मैं वापस आया तो मुझसे ज्यादा खुश मेरे पिताजी थे
1: कितनी
0: कि चलो बच्चे ने मैच देख लिया। तो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, माता पिता, जो कि आपसे किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में नहीं रहते, वो चाहते हैं कि उनसे भी बेहतर आप करें, ऐसे दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता। तो जब भी आप बड़े हो जाएं, कॉलर ऊंचे मत करिए, माता पिता को कभी मत भूलिए।
1: क्या सुंदर बात कही। और आपने कहा कि पिताजी को आप बाबूजी कहा करते थे, तो मुझे गुलजार साहब का गाना याद आया, बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे प्यारे बाबूजी थे, एक था बचपन, तो इस गाने की यहां पर जगह बनाते हैं।

0: सुशील जी, 1959-60 में हम हैं, जहां पर आप ब्रेबोर्न स्टेडियम में 90 मिनट मैच देखते हैं और पिताजी बाहर इंतजार करते हैं और आप एक रोमांच लेकर बाहर लौटते हैं। यहां से आगे की कहानी।
1: नहीं, उसके बाद तो क्या, फिर वक्त बीतता गया, क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी बढ़ती रही, जैसे आपने कहा
0: और पढ़ाई
1: कि
0: साथ में चलती
1: पढ़ाई
0: रही।
1: साथ में चलती रही। विज्ञान का विद्यार्थी था मेरा, हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा,
0: जी
1: लेकिन अपने खुद की खुशी से मैं बड़े बड़े उपन्यास, यानी कि जयशंकर प्रसाद का छायावाद, महादेवी वर्मा है ना, या सुमित्रा नंदन पंत, इन सबका खूब अध्ययन किया मैंने, और धर्मवीर भारती जी की किताबें पढ़ी, सारे उपन्यास उनके पढ़े, गुनाहों का देवता, ये सब महादेवी वर्मा की सारी किताबें पढ़ डाली। तो ये तमाम चीज़ों से मेरी हिंदी बराबर बनी रही, हिंदी के प्रति मेरा एक विचित्र तरह का प्रेम बना रहा, एक रिश्ता बना रहा, मुझे लगा कि हिंदी मुझे खींच रही है, तो यहाँ से मेरी हिंदी की बुनियाद पड़ी।
0: यहां
1: और
0: बीच में थोड़ा सा रुकूंगा, आगे चल के धर्मवीर भारती से एक नाता बना, उसका जिक्र थोड़ा सा फ्लैश फॉरवर्ड करके करते हैं,
1: हाँ जी,
0: जब
1: हाँ
0: वो
1: बिल्कुल,
0: धर्मयुग के संपादक थे।
1: नहीं बिल्कुल, धर्मयुग में मैं जब लिखना शुरू किया 1968, 69 और 70 के आसपास, तब उनको लगा कि हिंदी, देखिए धर्मवीर भारती जी से हमारा कोई रिश्ता तो था नहीं, उनको लगा कि मुझे उस तमाम व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, उस हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए जो हिंदी का काम कर रहा हो, उनके दिल में बस एक ही तमन्ना थी। तो जसदेव सिंह और मुझे उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया, उन्होंने काफ़ी लिखवाया भी, तब धर्मयुग घर घर में धर्मयुग जाता था, प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी, तो उन्होंने हमसे काफ़ी लिखवाया। और बाद में जब 1979 का, जिसका मैं जिक्र बाद में करूंगा, जब वापस आया ना, उन्होंने मुझे गले लगाया, घर बुलाया और कहा कि भाई आज तुमने हिंदी का नाम रोशन कर दिया।
0: वाह
1: तो
0: वाह
1: ये जो
0: वाह,
1: मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता कि धर्मवीर भारती जी जैसा व्यक्ति, जिनसे मिलने को लोग लालायित होते थे, वो मुझे स्वयं घर बुला रहे हैं, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी।
0: बिल्कुल। तो हम वापस स्कूल के जमाने में चलते हैं, जहां आप धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत वगैरह को पढ़ रहे हैं, और हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रुचि है, लेकिन धारा विज्ञान के छात्र की है और रास्ता इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है।
1: हाँ, उस समय क्या होता था कि गरीबी के दिन थे, मैंने आपको बताया, किताबें थी नहीं, पैसा था नहीं, हमको लगता था कि भाइयों के जो स्लाइड रूल है, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो कपड़े हैं, वो हमारे काम आ जाएंगे, तो एक मुद्दा ये भी था कि पैसे खर्च नहीं होंगे और ये कमज़ोर है तो बड़े भाई पढ़ा भी देंगे इनको, और उन्होंने पढ़ाया भी खूब, मेरी खोपड़ी में बहुत कुछ घुसाने की कोशिश की इंजीनियरिंग की, जैसे तैसे मैं पास भी हुआ, लेकिन ये समझिए कि 5ों साल सप्लीमेंट्री लाकर पास हुआ मैं, बड़ी मुश्किल से पास हुआ, लेकिन इंजीनियर मैं बन गया। शक्ल सूरत से मैं लगता नहीं कि पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं इंजीनियर हूँ। तो
0: जी।
1: इंजीनियरिंग पढ़ने से एक बात हुई कि मुझे तकनीकी चीज़ें समझने में बहुत सहूलियत हुई। क्या होता है, जो शिक्षा होती है ना, ये आपके दरवाजे खोलती है।

0: है,
1: बहुत सही।
0: तो ये आपको चीजों को ग्रहण करने में मदद देती है। तो इंजीनियरिंग पढ़ने से क्या हुआ कि गेंद का एरोडायनामिक्स बहुत आसानी से समझ में आ गया कि कोई गेंद स्विंग होती है तो क्यों होती है, सीम के सहारे कट क्यों होती है, सीम पर पड़ती है तो उसका व्यवहार कैसा रहता है, पिच में नमी रहती है तब क्या होता है, तमाम चीजें समझने में बहुत आसानी हुई। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भले ही मैं बहुत बड़ा विद्वान न रहा लेकिन उससे बहुत सारी चीजें समझ में आई। और दूसरी बात ये कि जो आसपास के दूसरे कमेंटेटर्स होते थे ना, उन पर दबदबा रहता था कि भाई ये तो इंजीनियर हैं, ये
1: वाह
0: गलत बात नहीं करेंगे। तो
1: क्या
0: ये भी
1: बढ़िया
0: एक जरा एहसास रहता था मन में कि
1: जी
0: भाई हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं।
1: जी आपके बचपन किशोर युवा वाले दिनों में इंदौर क्रिकेट का एक गढ़ था, कुछ बड़े क्रिकेटर वहां से आते हैं, उनसे किस तरह का कनेक्शन रहा या देखना रहा उनको?
0: नहीं बिल्कुल ठीक है, आपने कर्नल सीके नायडू साहब, उनसे मेरी मुलाकात, पद्म भूषण जो
1: जी
0: अकेले पद्म भूषण क्रिकेट के उस समय पहले वाले पद्म भूषण उस समय, तो उनके घर पे भी काफ़ी जाता था, उनके परिवार से काफ़ी रिश्ता था। और उनका आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था जो स्पोर्ट्स एंड पास टाइम में कवर स्टोरी के रूप में छपा था उस समय,
1: वाह
0: इलस्ट्रेटेड वीकली में भी मैंने उनके बारे में लेख लिखा था। तो मैं हिंदी में लिखता था, मेरे बाबूजी जो थे वो अंग्रेजी में अनुवाद करते थे, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी,
1: वाह
0: अपने समय के भी काम थे। जिस गांव से वो आते थे, प्रतापगढ़ राजस्थान से, जहां मेरा जन्म हुआ लेकिन बाद में मैं इंदौर आ गया, लेकिन वहां पर कोई अकेले भी कॉम रहे होंगे तो उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि उसका मुझ पर भी बहुत प्रभाव पड़ा कि छोटे वाक्य ग्रामेटिकली सही वाक्य, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य। उनका हमेशा ये कहना था कि हिंदी भी अगर बोलो या लिखो तो व्याकरण की दृष्टि से सही बोलो या लिखो। ये चीज़ मेरे मन में गहरे तक समा गई थी और इसी कारण मैं जब भी लिखा या बोला ना, जब भी मैंने कमेंट्री भी जब की तो मैंने व्याकरण को बड़ा ध्यान रखा, और इसी कारण मेरी हिंदी जो लोग कहते हैं काफ़ी शुद्ध रही। तो अब लोग कह रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि शायद शुद्ध रही होगी।
1: जी अपने बचपन के ज़माने में फिल्मों से कैसा कनेक्शन था? क्योंकि इंदौर में मुझे याद है कि मैं एक दिन सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने पूरी टॉकीज़ों का बताया, ये यहाँ थी, यहाँ अंग्रेजी फिल्में लगती थी, यहाँ हिंदी फिल्में लगती थी, यहाँ मॉर्निंग शोज होते थे। आपका फिल्मों से कैसा
0: नहीं
1: नाता?
0: बहुत ज्यादा बहुत, मैं तो शाम को 8-9 बजे के सेकंड शो देखने ही चला जाता था, कुछ ना कुछ
1: गजब
0: बहुत, मतलब पिक्चर तो एक आदत की तरह हो गया था कि कोई भी, याद बाद में जब शादी हो गई तब भी पत्नी को भी काफी शौक था फिल्मों के प्रति, तो हम लोग शाम पड़ते ही हमारे कदम ऐसा लगता था कहीं जाकर देखें, ज्योति टाकेज या प्रकाश टाकेज या फिर एलोरा टाकेज, जहां अब तो रहे नहीं टाकेज, ये तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई हैं, लेकिन वहां जाकर फिल्में देखने का बहुत शौक रहा। और सलीम साहब से तो मेरी मुलाकात भी हुई,
1: जी
0: कई बार मुलाकात हुई, एक इंदौर में एक समारोह में साथ में मिले थे, और मुझे बहुत बहुत जीवंत व्यक्ति, जावेद
1: जी
0: साहब से तो मुलाकात नहीं हुई
1: जी
0: लेकिन सलीम साहब से जरूर मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई। और एक बार मुंबई शहर में भी करसन घावरी साहब के बड़े मित्र हैं जो पुराने क्रिकेटर हैं, तो जब एक बार कमेंट्री के लिए आया तो घावरी साहब ने कहा कि यार अपन लोग बैठते हैं, सलीम साहब भी याद कर रहे हैं, इंदौर का लड़का कमेंट्री करने के लिए आया है। तो सलीम साहब के तो, और क्या दिलकश आदमी,
1: वाह
0: मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कोई इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, और बिल्कुल उसी तरह से कि हमारे साथ बैठकर उन्होंने गाने भी गाए,
1: वाह
0: और
1: वाह
0: क्या आवाज़ उनकी, बिल्कुल लंबा खींचते हैं बिल्कुल,
1: जी
0: ऐसा लगता कहीं गला फटता ही नहीं है उनका,
1: जी
0: वो दुनिया के रखवाले वाला गाना उन्होंने सुनाया था,
1: क्या
0: तो
1: बात
0: वो
1: है।
0: कितना उसमें लंबी खींच जो आती है ना तान, वो
1: हाँ
0: पूरा उन्होंने वैसा के वैसा सुनाया,
1: तो दो इंदौरी लोग मिल गए थे उस
0: बहुत बहुत मजा आया।
1: दिन।
0: और मुझे लगता है कि इंदौरी लोग जब भी मिलते हैं ना आपस में, मालवा के लोग, इंदौर भोपाल के लोग, तो जब भी
1: आप
0: मिलते
1: मुझे
0: हैं
1: शामिल कर रहे हैं
0: तो बड़ा मजा आता है,
1: उसमें।
0: ऐसा लगता है कि कोई घर के लोग
1: जी
0: मिल गए और
1: बिल्कुल
0: इनके साथ खूब बात करनी चाहिए, और ऐसी भाइयों की एक बढ़ोतरी हो गई है भाइयों में।
1: यस बिल्कुल बिल्कुल। तो सलीम साहब से ये जो मुलाकात का आपने जिक्र किया, इस मुलाकात की याद के नाम वो दुनिया के रखवाले सुनते हैं।

0: सुशील जी, बहुत आनंद आ रहा है आपके बचपन के गलियारों में हम घूम रहे हैं। एक चीज जो मुझे हमेशा लगती रही, आप एक बहुत नामी क्रिकेट कमेंटर रहे और हिंदी क्रिकेट कमेंट्री के संस्कार जैसे बुनियाद आपने गढ़ी है। आपने स्वयं कितना क्रिकेट खेला है ये जानना मेरे लिए बहुत
1: नहीं,
0: दिलचस्प
1: देखिए,
0: है।
1: स्कूल में टीम में था, स्कूल में जाकर क्रिकेट खेलता था। वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ, इंदौर में, वहाँ जाकर खेलता था। और उस समय गरीबी के दिन थे, मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट का बल्ला खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना शौक था कि क्रिकेट खेला। इतना समझ में आया कि जब मिड ऑफ की जगह मिड ऑन पर गेंद जाती है तो होता क्या है, बल्ला जो बल्ले का हैंडल हाथ में घूम जाता है, इस कारण मिड ऑफ का मिड ऑन में जाता। तो ये तमाम चीज़ों की समझ जब
0: जी,
1: आप थोड़ा बहुत खेलते हैं ना तो आपको समझ में आता है।
0: यस,
1: तो ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत खेलें, ऐसा नहीं होता, सब कुछ सैद्धांतिक रूप से काम नहीं होता है इसमें। थोड़ा
0: नहीं,
1: महसूस करते भी आना चाहिए कि कोई चीज़ कितनी मुश्किल या कितनी सरल क्यों होती है। तो ये एक फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये रॉकेट साइंस नहीं है। क्रिकेट का खेल जो है ना, ये एक, अगर आप इंजीनियर हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, हाई डिग्री ऑफ कॉमन सेंस अगर आप में है या क्रिकेटिंग सेंस आप में है, तो फिर आप इस खेल की बारीकियों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
0: वाह,
1: आजकल के कई क्रिकेटर्स ये बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं रहती, वो कॉमेंट्री करते हैं, तो वो कहने की कोशिश करते हैं कि साहब क्रिकेट तो हमको ही आता है, ये सब जो है ना बाकी के लोग। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उनको पता नहीं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत मामूली विज्ञान है, जो अगर आप क्रिकेटिंग सेंस है तो आप उसको समझ सकते हैं।
0: जी
1: तो मैं
0: जी
1: उनको हमेशा ये कहता हूँ कि भाई आप अपनी विधा पर ध्यान दीजिए और साथ ही भाषा पर भी ध्यान दीजिए,
0: यस,
1: और ऐसा मत करिए कि हिंदी में बोल रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं। अरे भाई, देश की भाषा है, अगर आप बोल रहे हैं तो वो एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपकी खुद की भाषा है, इसको
0: बिल्कुल
1: सही बोलिए। और सबसे बड़ी बात, व्याकरण की दृष्टि से सही बोलिए। क्रिकेट खेली नहीं जाती, क्रिकेट खेला जाता है। विकेट गीली नहीं होती, पिच गीला होता है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप सही ढंग से नहीं बोलेंगे तो देश की भाषा खराब होती है। और
0: यस,
1: मैं तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी ये कहता हूँ कि भाई आपने देश के क्रिकेट की बागडोर या उसके राइट्स, आपने अधिकार बेचे हैं, भाषा को खराब करने के अधिकार नहीं बेचे हैं। तो ये एक देश की भाषा के प्रति उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कोई विदेशी चैनल से इसका मतलब ये नहीं है कि देश की भाषा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखें। और क्रिकेटर्स का तो बड़ा स्वागत है, अगर वो क्रिकेट कमेंट्री के क्षेत्र में उभर रहे हैं या आ रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूं कि, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम रहती, वो बता सकते हैं। जैसे ड्रेसिंग रूम में क्या वातावरण चल रहा होगा, कप्तान क्या सोच रहा होगा, तीन स्लिप और एक गली रखे हैं तो एक शॉर्ट थर्ड मैन क्यों रखा है, शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर अंदर रखा है तो बॉलर को लेग साइड में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, अन्यथा चौका हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें हमसे पहले वो समझते हैं, तो अपनी समझ को बरकरार रखें। लेकिन साथ ही भाषा के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए, देश की भाषा खराब करने का। ये नहीं समझे कि हिंदी भी कोई भाषा है क्या, कुछ भी बोल लेंगे चल जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी में कभी आपने सुना है कि आई इज गोइंग
0: नहीं,
1: या फिर दे इज कमिंग, तो आप कितने भी बड़े आदमी हो, लोग आपको सहन नहीं करेंगे। लेकिन हिंदी में हर तरह की भाषा चल रही है, तो ये ठीक सहन नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो इसको सहन कर रहे हैं ना, उनका भी अपराध उतना ही बड़ा है, क्योंकि गलत चीज़ को और खास करके भाषा के साथ अन्याय को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत बड़ी और जरूरी बात कही है। अब मैं उस जगह पर आ रहा हूं जहां पहली बार हिंदी में कमेंट्री की परंपरा शुरू होने का ऐलान होता है और सुशील जी उस रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करते हैं।
1: नहीं, सच बात है, आपने तो भावुक कर दिया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथे साल में पढ़ता था,
0: जी
1: और उस समय खबर आई कि पहली बार हर जगह से हिंदी कमेंट्री ज़रूरी है। और तब रणजी ट्रॉफी मैचों की भी हिंदी कमेंट्री, मध्य प्रदेश और राजस्थान का मैच था, और 15 दिन पहले कहीं से घोषणा हुई कि वो हिंदी में कमेंट्री होनी है। बड़ी ढूंढ मचाई, सबने कहा कि बेवकूफ़ी की बात है, हिंदी जो FPS सिस्टम का खेल, 22 यार्ड से जो शुरू होता है, उसमें हिंदी का क्या काम। तो लोगों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। तो मैं पहुंच गया वहां पर स्टेशन डायरेक्टर के पास, कि
0: आकाशवाणी इंदौर में
1: मैं समझिए कि ये मामूली रहन सहन था।

0: और मैं वहाँ पहुँचकर मैंने स्टेशन डायरेक्टर से कहा कि मैं कमेंट्री कर सकता हूँ और आप मुझे मौका दीजिए। तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे याद है उनकी मुस्कुराहट अभी भी याद है।
1: जी
0: उन्होंने कहा कि बॉय सिंपली गेट आउट, क्योंकि
1: हो
0: पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स एंड देन कम। और उनका सोच
1: ओ
0: बिल्कुल सही था। उस समय कमेंटेटर्स 50, 55, 60 साल के होते थे।
1: और आप 18 के
0: बोले
1: थे।
0: मैं 18 साल का था, तो तजुर्बे का थोड़ा लेकर तो आइए ज्ञान, उसके बाद फिर बात करिए। तो वो ठीक कर रहे थे, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया।
1: दिल टूटा।
0: मुझे अपमानजनक भी नहीं लगा, क्योंकि आदत थी, गरीब थे तो शायद अपमान की आदत थी। तो वापस चले गए, कोई बात नहीं, टहलते हुए वापस आ गए। फिर वो दिन आ गया जिस दिन कमेंट्री होनी थी, कोई मिला ही नहीं।
1: ओ
0: तो उन्होंने कहा कि एक पागल सा लड़का आया था जो कमेंट्री करने की कोशिश कर रहा था, उसको बुलाकर पूछते क्या वो कर सकता है। तो मुझे ढूंढ कर फिर बुलाया, तो मैं गया वहां पर और उन्होंने कहा इमेजिनरी कमेंट्री करके बताइए जरा।
1: हाँ
0: अब मैं तो धारा प्रवाह अंग्रेजी में करता ही था, तो मैंने कहा किसकी शैली में बताऊं,
1: अरे
0: जॉन
1: गजब।
0: ऑर्लट की शैली में बताऊं, एलन मिगलबरी की शैली में बताऊं, या ब्रायन जॉनसन की शैली में बताऊं। तो बोले अच्छा करके तो बताइए। तो मैंने अंग्रेजी में तीनों अलग अलग तरह की शैली में कमेंट्री करके बताइए। वो लोग इतने प्रभावित हुए, यार क्या गजब कमेंट्री करते हो तुम तो, लेकिन एक काम करो कि हमें तो हिंदी में कमेंट्री करनी है।
1: हाँ
0: अब मैं तो इसके लिए तैयार नहीं था, मुझे पता नहीं था। तो मैंने हिंदी में कुछ करने की कोशिश की, अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, किसी की सुनी ही नहीं थी कभी। अच्छा हुआ नहीं सुनी थी, अगर सुनता तो शायद किसी की नकल करता, क्योंकि इतना बुद्धिमान तो था नहीं मैं। कोई नकल करने को मिल जाती तो नकल करता मैं, लेकिन जब नकल करने को नहीं मिली तो फिर अकल लगानी पड़ी।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: उसमें यह हुआ कि फिर कमेंट्री की, और उन्होंने कहा कि नहीं ये चलो चला तो लेगा ये लड़का काम। तो मैं कमेंट्री की, और कमेंट्री की तो ये समझिए कि खाली प्याले में एक तूफान सा आ गया। लोगों ने कहा कि ये तो क्रिकेट की हत्या हो गई, किसी ने कहा कि ये जिंदगी भर कमेंट्री सीखें तो भी कमेंटेटर नहीं बन सकते। और मैं उन्हें दोष नहीं देता, शायद अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि एक तो उम्र भी कम थी और परिपक्वता भी नहीं थी। लेकिन कुछ था जो स्टेशन डायरेक्टर को प्रभावित कर गया, उसकी बात मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब ये हुआ ना, इतनी ज्यादा आलोचना हुई, तो पिताजी नाराज हो गए कि देखिए अपने पास पैसा तो है नहीं और अब तुम नाम के बजाय बदनामी ज्यादा मोल ले रहे हो, या तो गंभीरता से काम करो और सोचो, अच्छा काम करो। क्रिकेटर करता क्या है, उसके व्यवहार की तरफ दृष्टि डालो, उसके हाव भाव, उसका चाल चाल कैसी चलती, क्या करता है स्ट्रोक खेलते वक्त, ये सब सोच के फिर हिंदी में सोचो। अंग्रेजी में सोचना बंद करो, अंग्रेजी कमेंट्री का भूत अपने सिर से निकालो, और फिर अगर करना हो दिल से महसूस करके दिलों को छूने की कोशिश करो। जब
1: वाह।
0: उन्होंने ये कहा तो फिर मैंने सोचा कि जैसे स्क्वायर कट करता है तो क्या करता है खिलाड़ी, मैंने सोचा कि पहले शॉर्ट पिच गेंद आती है, ऑफ स्टंप के बाहर आती है, बल्लेबाज अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है और फिर स्क्वायर कट कर देता है 4 रन के लिए। तो
1: वाह वाह
0: ऐसा जब
1: वाह,
0: सोचा ना, तो मैंने देखा कि ये तो एक वाक्य भी बन गया,
1: रिदम आया।
0: शैली भी बन गई। शैली मतलब जो कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की शैली बन जाएगी। आज मैं 4 वाक्य बोलता हूं, लोगों को पता चल जाता है कि कमेंटेटर कौन है ये। तो ये जो पहचान बनी ना, इस कारण बनी कि हिंदी में मौलिक रूप से मैंने सोचना शुरू किया। और इसका ही फल है कि आज हिंदी में जितनी भी भाषा, जितनी शब्दावली बहुत सारी जो चल रही है, जैसे कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के लिए मैं शंका का गलियारा मैं कहता था, कि किसी ने भी कभी सोचा नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: कई इस तरह के शब्द जैसे अपनी नजरों के ठीक नीचे खेल रहे हैं, ये तकनीकी शब्द लेकिन बिल्कुल सरल हिंदी में, तो बिल्कुल तकनीकी रूप से बिल्कुल सही खेल रहे हैं, नजरों के ठीक नीचे खेल रहे हैं। तो ये जो सिर बिल्कुल स्थिर रख रहे हैं जब खेलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो ये
1: सीमा
0: तमाम
1: रेखा,
0: चीजें, ये सब तकनीकी चीजें हिंदी में कभी थी ही नहीं।
1: आपने सीमा रेखा जैसा शब्द भी गढ़ा।
0: क्यों याद दिलाते हैं, मेरी पत्नी का नाम रेखा है,
1: अच्छा
0: तो क्रिकेट में तो उनकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी रही नहीं। लेकिन वो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि पहले मैं बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए ऐसा बोलता था, मैंने सोचा कि बाउंड्री लाइन भी क्यों बोलूं,
1: हाँ
0: सीमा रेखा, इसका हिंदी में अनुवाद करो, सीमा रेखा के बाहर 4 रन के।
1: हाँ
0: ये जब बोला तो पत्नी ने आड़े हाथों ले लिया घर में आते ही, बोले
1: अच्छा
0: रेखा तो मैं हूं, ये सीमा कौन है।
1: क्या बात।

0: है, शानदार बात है। यहाँ ना एक गाने की जगह बन रही है, पर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, गाना थोड़ा आगे करेंगे, लेकिन एक दिलचस्प चीज मुझे समझ में आई कि आपने अंग्रेजी में कमेंट्री करके सुनाई थी, मैं वो थोड़ा सा सुनना चाहता हूँ।
1: अब क्या वो इमेजिनरी कमेंट्री करते थे कि
0: जी जी किसकी शैली में है वो भी बताइएगा।
1: नहीं, जॉन ऑर्लेट बोलते थे जैसे
0: जी
1: कि फ्रेडी ट्रूमन कमिंग इन फ्रॉम द वेक्सलैंड कम्स इन एंड बोल्स टू सुनील गावस्कर एंड गावस्कर फॉरवर्ड डिफेंसिवली बैक टू द बॉलर नो रन।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या ग्रेन्स, और वो जो रिदम है ना इस कमेंट्री का, ये टिपिकल अंग्रेजी रिदम है, इसको आपने नहीं अपनाया था। और इसकी बात आगे करते हैं, यहां गाना लेके आता हूं, इम्तिहान फिल्म का गाना जो आपकी जिंदगी से मेल खाता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, सुंदर गाने की जगह बनी।

0: मैं वो बात कर रहा था कि अंग्रेजी कमेंट्री का एक माइलस्टोन तय था, एक पैमाना तय था कि ये ऐसी होती है। हिंदी कमेंट्री का आप अपना एक संसार रच रहे थे, वहां किस तरह की चुनौतियां आपके सामने थी?
1: नहीं देखिए, बहुत बड़ी चुनौतियां, एक तो कारण ये कि बहुत बड़ा वर्ग आपको सुन रहा है,
0: जी
1: 70% आबादी के प्रति आप जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, राज सिंह डूंगरपुर ने मुझे बात बताई थी कि कभी भी कोई गलती करो ना, ये मत सोचो कि रेडियो कमेंट्री है, किसने देखा कि क्या हुआ था। आप अगर गलत भी कुछ बोल दिया तो उस पर टिके रहो, लोग ऐसा कहते हैं, कई हिंदी कमेंटेटर ऐसा सोचते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी को समझो,

0: कि आप ईमानदारी से बात करो कि अगर लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी सख्ती की इतनी ज्यादा है कि आप गलती करो तो विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो। एक किस्सा है, कानपुर टेस्ट मैच में मुझे याद है कि प्रणव रॉय बोल्ड हो गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए थे एक गेंद पर, और किसी कमेंटेटर ने कहा कि ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ गेंद आई, तो मैंने कहा कि राज भाई वो मुझे लगता है कि मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ आई और बैट के बाहरी किनारे को भी छोड़ती हुई ऑफ स्टंप उड़ गया था। तो बोले यार चलो, राज सिंह जी ने तो वो बोला नहीं था, किसी तीसरे ही कमेंटेटर ने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा एक काम करते हैं लंच के समय अपन प्रणव रॉय से ही पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो हम लोग लंच के समय गए, राज सिंह जी कितने बड़े आदमी थे, देखिए मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रहे। तो वहां जाकर प्रणव रॉय से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ बाहर की तरफ निकल गई थी।
1: गजब।
0: तो देखिए उस कमेंटेटर ने क्षमा नहीं मांगी, लेकिन राज सिंह डूंगरपुर ने ऑन बिहाफ ऑफ द कमेंट्री टीम उन्होंने कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, हमसे ये गलती हो गई थी कि हम अंदर की तरफ आई और बैट और पैड के बीच में निकली, ऐसा हमने कहा था, लेकिन गेंद दरअसल बाहर की तरफ निकली,
1: उल्टा हुआ था।
0: हाँ, तो सत्य के प्रति उनकी जो आस्था थी वो मेरे दिल में घर कर गई
1: जी।
0: कि आज भी मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ, और सच मानिए लोगों को ये बात पसंद आती है
1: बिल्कुल,
0: कि आप अगर विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो, क्योंकि आपकी इच्छा तो झूठ बोलने की है नहीं, आपसे कोई गलती हुई, आप भी तो इंसान है ना, बैट्समैन से गलती हुई तो वो आउट हो जाता है, अंपायर से गलती हुई तो गलत आउट दे देता है, आप भी तो आखिर इंसान है, आपसे गलती हो सकती है, आप विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो।
1: क्या बात है। पहला बहुत ही बड़ा मैच जिसकी कमेंट्री करने का आपको मौका मिला था, वो यादें हमारे साथ बांटिए।
0: नहीं, 1972-73 का जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ,
1: ब्रेबोन,
0: ब्रेबोन स्टेडियम, तो वो तो मैं भूल नहीं सकता कि हमारे सामने ऋषि कपूर बैठे हुए थे, डिंपल कापड़िया, उस समय बॉबी फिल्म साइन ही की थी, तब तक फिल्म आई भी नहीं थी,
1: जी जी,
0: दोनों दिख रहे, विनोद खन्ना को हमने देखा, फिर सामने बैठे थे डेविड, बिल्कुल गंजे
1: डेविड अब्राहम, हाँ, जी।
0: तो डेविड वो अपनी भीड़ के साथ नारे लगा रहे थे भारत माता की जय, और मतलब अद्भुत दृश्य था। विनोद खन्ना को देखा हमने
1: जी,
0: कि अपने मतलब इतने आकर्षक ये लोग,
1: हाँ।
0: कि अब मैं भी छोटा था ना, 24-25 साल का ही था, तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती थी, पहला टेस्ट मैच करता था, और सच मानिए मुझे पता ही नहीं था कि मैं अच्छा कमेंटेटर हूं या नहीं, मुझे लग रहा है कि मौका मिल रहा है कर लीजिए, तो कोई एक सपना था कि अच्छे काम की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं माता पिता की सलाह से, तो उस काम की तरफ बढ़ गए। तो ये वो एक पहला मौका, बहुत बड़ा मौका था, और कुछ गलतियां मैं करता था, जैसे 39 जैसे मालवा के लोग बोलते हैं ना,
1: जी जी,
0: है ना, 69 को,
1: हाँ।
0: तो वो शुरू शुरू में गलतियां होती थी, लोगों ने काफी प्रताड़ित भी किया फिर उसको, लेकिन सीखने की, देखिए हमेशा मैंने ये रखा कि सीखने की इच्छा रखी, गलतियां की तो सीखने की इच्छा रखो, कम उम्र थी सीखने का मौका मिला, लेकिन धारा प्रवाह कमेंट्री करता था
1: जी जी,
0: और धारा प्रवाह तो कई बार मेरी पत्नी से लोग, उनकी सहेलियां पूछती हैं कि इतना धारा प्रवाह ये कमेंट्री करते हैं तो क्या आपके सामने भी बोल पाते हैं, उन्होंने कहा बेचारे बोल पाते होते तो वहां पर इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री करने की जरूरत क्या पड़ती तो ये धारा प्रवाह का सिलसिला
1: जी
0: चलता
1: जी
0: रहा, तो एक रिदम था, सही शब्द सही जगह,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्रिकेट कमेंट्री में सबसे बड़ी बात सही शब्द सही जगह, तो चूंकि इसमें साहित्य बहुत काम आता है,
1: बिल्कुल,
0: आजकल के क्रिकेटर्स के साथ दिक्कत यह है कि साहित्य नहीं पढ़ते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो रोमन लिपि पढ़ते हैं उनको पता नहीं हिंदी साहित्य तो पढ़ते ही नहीं है अधिकांश, उसमें 90% लोग जो आज कमेंट्री कर रहे हैं
1: जी,
0: टेस्ट क्रिकेटर्स जो कर रहे हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हिंदी पढ़े भाई,
1: बिल्कुल,
0: साहित्य पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है कि संवेदनशीलता आती है, संतुलन की भाषा, संतुलन आप कैसे आएगा, जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, सहवाग की सबसे बड़ी बात क्या थी कि संतुलन, बॉडी बैलेंस, तो ये संतुलन कमेंट्री में भी बहुत होता, संतुलन कैसे आएगा, निष्पक्ष कमेंट्री कैसे आएगी, आज हम देखते हैं कि पक्षपातपूर्ण कमेंट्री होती है, भारत ऐसा कर देगा तो अच्छा हो जाएगा, भाई आप निष्पक्ष कमेंट्री के लिए बैठे हो,
1: बिल्कुल,
0: रिची बेनो ने भी कहा है कि आप निष्पक्षता बरती है, कमेंट्री हमेशा निष्पक्षता का काम है, आप किसी पक्ष के नहीं है, तो ये एक बात समझने की है,
1: बिल्कुल। बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके सुशील दोषी जी, और अब मुझे लगता है कि ड्रिंक्स ट्रॉली जैसे आती है ना क्रिकेट में, वैसे यहां पर गाना आएगा ऐसा।

जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग आज आपने सुना मैटिनी शो कार्यक्रम में। सुशील जी से बातों का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। अगले हफ्ते यानी 8 अगस्त को इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, तो जरूर सुनिएगा मैटिनी शो 8 अगस्त को दिन में 11 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम के लिए संपादन और प्रस्तुति तेजसी कामले की। मिलेंगे अगले हफ्ते, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। श्री मोदी आज राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने

0: 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मदन मोहन की तर्ज पर लता मंगेशकर और साथियों को आपने सुना साहिर लुधियानवी के बोल थे, गजल फिल्म की ये प्यारी सी गजल आपने सुनी।
1: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब, कैसे
2: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

सुमन, कल्याणपुर और सखियों को आपने सुना फिल्म पूर्णिमा में। भरत व्यास के बोलों को सुर में ढाला कल्याण जी, आनंद जी ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज थी, फिल्म थी दिल एक मंदिर।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे।

0: से सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे नूरजहां फिल्म का ये दो गाना, मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये गीत था, रोशन का संगीत।

को आप सुन रहे थे शैलेंद्र का लिखा गीता। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पराई। आज कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रोताओं अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों को।

0: गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पाकीज़ा से।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आज नगदी में रंग है बहार।

0: प्यार ने काम किया।
1: ऐसे प्यार को क्या कहिए जिसने
2: भी। मैं चुप रहूंगी, इस फिल्म का गीत था लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गाया, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। यादों की महफिल कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, विविध भारती की सुर लहरियों पर आपके रेडियो सेट पर जब ये कार्यक्रम शुरू होता है तो हम लेकर आते हैं बहुत से ऐसे नगमे जो आपके दिल में समाये हुए हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही नगमे हैं। वैसे हमारे श्रोताओं ने फेसबुक पर इबारत पढ़ी है और वो समझ ही चुके हैं कि आज इस कार्यक्रम में किस हसीन नाज़नीन और मशहूर अभिनेत्री के गीत हमने शामिल किए हैं। ये इबारत जो आज हमने पोस्ट की है फेसबुक पर, आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं। उनका आना था, मौसम आशिकाना हो गया, हुस्न का वो नाजो अंदाज देख चांद जाने कहाँ खो गया, कुदरत ने न जाने कहाँ से छलकाई ये बदरिया, सौंदर्य ऐसा जैसे सावन के मौसम की रात, नगमा शेर से छलकते हुए जज्बात उस महजबी के, नरगिस के फूल सी जैसी आंखें, फिर प्यार हो जाए तो हम क्या करें, दो सितारों ने कहा ये कौन हुस्न परी आई है जिसने तन मन की सदबुद को बेगाना कर दिया, वक्त आज भी वहीं ठहरा है खामोशी में, कभी धड़कनों में कभी दुआओं में तेरा इंतजार रहता है, गुलों में रंग भरे जब बाद नौबहार चले, चांद चमके खुदा करे उस रोज तू आए। तो श्रोताओ, आज बात है एक नाज़नीन चेहरे की जो जब भारतीय सिनेमा के रुपहले पर्दे पर नजर आता तो लोग देखते ही रह जाते। ये थी अभिनेत्री मीना कुमारी, जिन्होंने अपने अभिनय के फन से सबके दिलों में

एक ऐसी जगह बनाई जो उनकी याद से कभी खाली न हुआ। मीना कुमारी की याद को आज भी दिल कहीं ढूंढता है। आज उनकी जन्म जयंती है। उनकी फिल्मों के चंद नगमे हमने सुरीला सफर कार्यक्रम में लिए हैं और इन्हीं नगमों से इस कार्यक्रम को आज सजाया है। तो बताइए कि फिल्मों में आपको मीना कुमारी की अदायगी कैसे लगती थी, उनकी फिल्मों की कौन सी यादें हैं जो आपके साथ आज भी हैं, उन पर फिल्माया गया कौन सा प्यारा सा गीत है जो आपको आज भी बहुत पसंद आता है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर हम सभी श्रोताओं का। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। और आपको बताना है इस गीत के संगीतकार।

ये परिंदों की आवाज और ये कौन सी खास जगह है श्रोताओ, जहां मीना कुमारी पर ये गीत फिल्माया गया, यानी स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो आपको बताना है। और फिल्म पाकीज़ा का ये गीत था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी। तो फिल्म पाकीज़ा जो थी वो अपने डायलॉग्स के लिए भी बहुत जानी जाती थी। इस फिल्म का कौन सा डायलॉग है जो आपको बहुत पसंद आता है, ये आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख कर भेज सकते हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है। मीना कुमारी हिंदी फिल्मों की एक ऐसी महान अभिनेत्री थी जिनके अभिनय में भावात्मक गहराई और संजीदगी थी। वे अभिनेत्री होने के साथ साथ एक उम्दा शायरा और पार्श्व गायिका भी थी। फिल्मों में उनका योगदान अमूल्य है। वे केवल एक कलाकार नहीं बल्कि एक युग थी जिन्होंने अभिनय को भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति के साथ पिरोया यानी बनाया। उनका नाम आज भी भारतीय सिनेमा में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। और इन्होंने कुछ गीत भी अपनी पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज मीना कुमारी जी के फिल्मों के गीत से सजेगी महफिल सुरीला सफर कार्यक्रम की। एक और श्रोता ने लिखा है कि अभिनेत्री मीना कुमारी जी को परिभाषित करता ये गद्यांश नजर आ रहा है जिन्होंने अभिनय को अलग आयाम से नवाजा। जी हाँ, मीना कुमारी जी की जो अदायगी थी श्रोताओं वो बहुत ही अलग थी। वैसे उन्होंने बहुत कम समय काम किया फिल्मों में, लेकिन जो सिल्वर स्क्रीन पर उनकी एक पहचान बनी वो आज भी कायम है। मीना कुमारी की जो फिल्में थीं, कौन सी फिल्में आपको बहुत पसंद आती हैं और कौन सा किरदार पसंद आता है, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत में कुछ गीतों के नगीने सजे हैं जो एक महान कलाकार की याद का दिन है। मीना कुमारी जी को शत शत नमन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है इस कार्यक्रम में अपने जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं उनके द्वारा। ये गीत आपको पहचानना है श्रोताओं और बताना है इस गीत के गीतकार कौन है और मीना कुमारी जी के साथ कौन नजर आते हैं।

शंकर जयकिशन की तर्ज थी श्रोता और लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना दिल अपना और प्रीत पराही फिल्म से। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, पहले फिल्म में गुलाम मोहम्मद साहब की तर्ज थी और इसमें शैलेंद्र की रचना थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दद को अगर कभी कोई चेहरा मिला तो वो मीना कुमारी थी। उनकी आंखों की खामोशी और अभिनय की गहराई सीधे दिल को छू जाती थी। उन्हें यूं ही ट्रेजेडी क्वीन नहीं कहा गया, शरत और सफलता के बीच भी उनके जीवन का अकेलापन उनकी शायरी और अदाकारी में साफ झलक था। आज भी उनका नाम संवेदनाओं और दर्द की एक अमर दास्तान बनकर याद किया जाता है। लेकिन उनकी आप जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखेंगे श्रोताओ, तो वो इतनी खूबसूरत नजर आती हैं मीना कुमारी के, और उनका नृत्य भी जैसा कि आपने इस गीत में भी देखा बड़ा ही खूबसूरत है। तो मीना कुमारी ठीक है ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जानी तो जाती हैं, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप चाहें तो जरूर लिखें इस बात को, क्योंकि वो मुस्कुराती बड़ी खूबसूरत लगती थी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीत जो हैं वो समझ में आ रहे हैं, इतने गीत तो याद नहीं आ रहे फिर भी, लेकिन अब देखना है कि इनमें से कौन सा गीत हमारे जो है वो लिस्ट से मैच होता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि इनकी फिल्में केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो हर पीढ़ी को ये सिखाती हैं कि महान अभिनय ऊंची आवाज या भव्य दृश्यों से नहीं बल्कि आंखों में उतर आए सच्चे एहसासों से जन्म लेता है। मीना कुमारी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी शायरी, उनकी खामोशी और उनके अमर किरदार हमेशा ये एहसास दिलाते रहेंगे कि कुछ कलाकार समय से विदा होकर भी कभी विदा नहीं होते। और आप तो समझ ही चुके हैं कि मीना कुमारी एक मशहूर शायरा भी थी और मकबूल भी थी। तो वो किस नाम से शायरी किया करती थी? क्योंकि मीना कुमारी तो वो लिखती नहीं थी और उनका एक और नाम था, बल्कि यूं कहें कि दो नाम थे। तो ये नाम अगर आपको याद आए तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखती हैं कि ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर वो पाकिज़ा की हसीना जिनका अंदाज बयां दिल को छू जाता था। चांद सी उनकी सूरत और उनकी जो हर कोई जो अदा होती है, लगता नहीं कि दिल मेरा उजड़े दयार में। और कुछ फिल्मों के गीत भी इन्होंने लिखे हैं, झील सी आंखें, और उनके बारे में बहुत कुछ इन्होंने अपने शब्दों से बयां करने की कोशिश की है। इस गीत में, इस फिल्म में मीना कुमारी के जो अभिनेता हैं उनको आपको पहचानना है, यानी को स्टार।

अभिनेता सुनील दत्त के साथ ये फिल्म थी मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में राजन कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म के बारे में, इस गीत के बारे में, जो इन गीतों के बारे में जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया उसके बारे में लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म में उनका किरदार बहुत कम बोलता है, लेकिन करुणा के मन की पीड़ा, मौन, समर्पण और त्याग उनकी आंखों से स्पष्ट झलकते हैं। बिना कुछ कहे भी राजकुमार सुशील के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, तो श्रोताओं, मीना कुमारी जी पर तो बहुत सारे डायलॉग हैं, आपको उन पर फिल्माया गया कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है फिल्म के बारे में कि अजीब दास्तां है, लता मंगेशकर जी की आवाज और ऑन स्क्रीन उदासी और प्रेम की पीड़ा को अमर आवाज देता है ये गीत। इस गीत के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझसे कोई ये पूछे कि मीना कुमारी जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, मेरा जवाब होगा मुझे उनकी सभी फिल्में बहुत अच्छी और लाजवाब लगती हैं। जी हाँ, मीना कुमारी जी ऐसी ही थी जो अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि अलग पहचान की थी।

0: जाने कहां पहुंचे जादू ये देखो हम तुम मिले हैं।
1: ये गीत आप सुन रहे थे जो मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गीत था और प्रदीप की ये रचना आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी एक ऐसी अभिनेत्री जो अपने आप में एक भारतीय फिल्म में एक युग हैं। अभिनय में मीना कुमारी जी का कोई तोड़ नहीं था और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी शायरा भी थी। उनकी मनमोहक आंखें संवाद खासकर दर्द में डूबे तो दर्शकों के दिल में छा जाते। मीना कुमारी जी अभिनेत्री यदा कदा ही उनकी तरह होती हैं और चित्रलेखा और आरती फिल्म वगैरह के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जब फिल्म का प्रसिद्ध गीत चलते चलते रिकॉर्ड किया जा रहा था तब स्टूडियो में ये गीत सुनकर मीना कुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि ये गीत सिर्फ साहिबजान का नहीं बल्कि उनके अपने दिल की गहराइयों की आवाज और उन्होंने संगीतकार गुलाम मोहम्मद को बधाई दी। तो ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं जो मीना कुमारी जी के बारे में जुड़ जाती हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पाकीज़ा मूवी का गीत जो है वो अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, पूरा जीवन इसी तरह ख़त्म हो गया चाहे पाकीज़ा हो या साहब बीबी और गुलाम। तो साहब बीबी और गुलाम फिल्म की कुछ यादें आपके साथ हों तो आप उसे बांट सकते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं फिल्म मैं चुप रहूँगी, मीना कुमारी हैं इसमें, सुनील दत्त हैं इसमें और तमाम इन्होंने डिटेल लिखी है उन गीतों की उस फिल्म की। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर आज का कार्यक्रम है और मैं बचपन से ही मीना कुमारी जी का फैन रहा हूं। तो आपने कौन कौन सी फिल्में उनकी देखी हैं और हमने आपसे पूछा भी था कि कौन सा वो प्यारा सा डायलॉग है जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया और आपको बहुत पसंद है और इस गीत को आपको पहचानना है।

मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत था आजाद फिल्म से। आजाद फिल्म में उनके को स्टार कौन थे श्रोताओं? और अगर आप किसी जो खास उनके को स्टार रहे किसके साथ, यानी आप जोड़ी मीना कुमारी की पसंद करते थे या किन के साथ वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, ये आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारी श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी को अपने अभिनय के लिए कई बड़े सम्मान मिले। उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीवी और गुलाम और काजल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एक और श्रोता लिखती है, मीना जी की छोटी छोटी मगर नशीली आंखें बेहद खूबसूरत लगती थी। वो दर्द से भरी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही हों, उनको मेरा शत शत नमन। एक और श्रोता ने लिखा है, आपने मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों में सबसे पसंदीदा गीत की चॉइस पूछी है, जो गीत दिल एक मंदिर फिल्म से है और हमें सबसे ज्यादा पसंद है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा का संवाद जो है वो आपके पांव मैंने देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ज्यादातर श्रोताओं ने इसी डायलॉग के बारे में लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी अपने कलामों में नाज नाम का इस्तेमाल करती थीं और उनके निधन के बाद उनकी कविताओं का संग्रह तन्हा चांद नाम से प्रकाशित हुआ। जी हाँ, नाज नाम से वो लिखा करती थीं। और हमारी एक और श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी को हंसते हुए बहुत कम देखा गया है, अतः मुस्कुराहट पर टिप्पणी मुश्किल है। वैसे जो गीत हमने आपको सुनवाया आजाद फिल्म का, उसमें तो मीना कुमारी बहुत ही प्यारी नजर आती हैं और खिलखिलाती हुई नजर आती हैं। तो आपको बताना है कि जब वो छोटी थी यानी बाल कलाकार के तौर पर उनकी पहली कौन सी फिल्म थी, और फिल्म जो रिलीज हुई और रातों रात जिससे मीना कुमारी स्टार बन गई, ये फिल्म कौन सी थी? आपकी सहूलियत के लिए बता दें, 1952 में रिलीज ये फिल्म थी।

ये आवाज आपको पहचाननी है श्रोताओं कि इस गीत को किसने गाया। नूरजहां फिल्म का ये गीत था, शकील बदायूं का लिखा, रोशन की तरह थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार जी को ट्रेजेडी किंग नायक के रूप में प्राप्त था, ये कह सकते हैं कि तमगा, कि मीना कुमारी जी को नायिका के रूप में प्राप्त था। जितनी आसानी से वो किसी किरदार को बखूबी निभाती थी, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। छोटी बहू, साहब बीवी और गुलाम फिल्म का दर्द उनकी भावना को जिस तरह से प्रकट करता है वो बहुत ही सराहनीय है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ चेहरे समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, कुछ चेहरे यादों की चांदनी बनकर हमेशा चमकते रहते हैं। मीना कुमारी उन्हीं विरली शख्सियतों में से एक थी। उनकी मुस्कान में मासूमियत, आंखों में अनकहे जज्बात और अदाकारी में ऐसी सच्चाई थी कि हर किरदार एक एहसास बन गया। शायद इसीलिए आज भी उनका नाम आते ही दिल में गजल सी नरमी और पुराने गीतों की मधुर गूंज उतर जाती है। अभिनेता राजकुमार के साथ मीना कुमारी की कितनी फिल्में हैं श्रोताओं? इस फिल्म में एक और मुख्य कलाकार हैं जो मीना कुमारी के साथ हैं, वो कौन है?

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मीना कुमारी पर फिल्माया गया और इस फिल्म में दो कलाकार थे, राजकुमार और राजेंद्र कुमार। यही हमने आपसे पूछा था और हमारे श्रोताओं ने बताया भी है। और बतौर बाल कलाकार जो मीना कुमारी की फिल्म आई पहली, ये थी लेदर फेस। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। बेबी मीना के नाम से प्रसिद्ध हुई वो। 1946 में बच्चों का खेल, 1952 में बैजू बावरा फिल्म थी जिसके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये फिल्म ऐसी थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1953 में रिलीज हुई परिणीता, ये भी व्यावसायिक रूप से सफल थी। और बैजू बावरा फिल्म में क्या किरदार था श्रोताओ मीना कुमारी का, ये आप जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज मीना कुमारी जी का जन्मदिन है, उनको अभिवादन करते हुए सुरीला सफर कार्यक्रम में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ कहना चाहूंगा कि उनकी जो फिल्में थी उनमें आजाद कोहिनूर बहुत कामयाब रही। आज इन दो सितारों का जमीन पर मिलन है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुनिया के खूबसूरत ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है कार्यक्रम। उनकी फिल्मों में संवाद, अदायगी, अभिनय और ऐसा तालमेल था कि उनकी आवाज में खास खनक और रूहानी दर्द छिपा हुआ था जो साधारण संवादों को भी असरदार बना देती थी। वो केवल मुंह से संवाद नहीं करती, बोलती, बल्कि उनका पूरा जो शरीर था, उनकी आंखें अर्थों का बयां करती थी। और प्रतिभा के बारे में लिखते हैं कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई अभिनय नहीं बल्कि अपने दिल की बातों को साझा कर रही हैं। फिल्म बैजू बावरा में कौन थे मीना कुमारी के साथ?

भारत भूषण मीना कुमारी के साथ थे श्रोता, और इसकी इस फिल्म के जो गीत थे वो भी बहुत मकबूल हुए थे। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीना कुमारी की किसी एक फिल्म को अगर आप चुनना चाहें जो आपको सबसे अच्छी लगती है, तो उस फिल्म का नाम आपको बताना है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी भले ही ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर हुई, लेकिन उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी थी। तब हालांकि उन्हें कॉमिक रोल करने का बहुत कम मौका मिला। जी हाँ, मीना कुमारी कॉमेडी रोल में भी बहुत अच्छी लगती थी, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनका किरदार बहुत ही चुलबुला है, खासकर उनकी जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं। तो उनकी कलर फिल्में भी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी हैं। वो उनकी कौन सी जो फिल्में हैं वो आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं, यानी मीना कुमारी किन फिल्मों में ज्यादा अच्छी लगती हैं? ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा सुंदर लगती हैं आपको या कलर में? और आपको कोई एक फिल्म बतानी है

कुमारी जी, बड़ी खूबसूरत लगती हैं इस गीत में, यानी इस गजल में। श्रोताओं, नगमा शेर की ये सौगात उन्होंने किसके लिए पेश की फिल्म में, ये आपको बताना है। और ये भी आपको बताना है कि मीना कुमारी की आखिरी फिल्म कौन सी थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी जी को समर्पित ये कार्यक्रम उनसे जुड़ी सत्य घटना का जिक्र करना चाहूंगा, जरूरी हो गया है, जिससे मीना कुमारी जी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बात फिल्म पाकिजा की शूटिंग के दिनों की है। मीना जी और कमाल अमरोही जी की कार का मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जंगलों में पेट्रोल खत्म हो गया, तो कुछ इन्होंने जो है वो इनकी बातें लिखी है उस समय की, जो शायद ये वाकया इनके साथ हुआ होगा। और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, उसमें ये बताना है आपको कि ये गीत एक और गायक की आवाज़ में है। ये फिल्म कौन सी है और वो आवाज़ कौन सी है? मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म कौन सी है?

इस गीत को मोहम्मद रफी साहब ने भी गाया है श्रोताओं, और आप सुन रहे थे भीगीरात फिल्म का ये गीत। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा था कि मीना कुमारी जी को तो मुस्कुराते हुए कम ही देखा है, तो फिर आप इस गीत के बारे में क्या कहेंगे जो आपने सुना अभी अभी? कितनी प्यारी लगती हैं मीना कुमारी जी इस गीत में, ये आप जब इसका पिक्चराइजेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो मीना कुमारी की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं, जिनमें उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, तो वो अपने चेहरे के भावों से भी जबरदस्त एक्टिंग करती थी, ऐसा लगता था जैसे वो किरदार को जी रही हूँ।

दो सितारों को आपने पहचाना होगा श्रोताओं, इन दो सितारों की कौन सी वो फिल्म है दूसरी जो आपको अच्छी लगती है?

मूड फिल्म के इस गीत की झलक आपने सुनी श्रोताओं, और ये गीत किस फिल्म का है इसकी भी एक झलक आपको सुनवा देते हैं।

खूबसूरत फिल्मों के अलावा श्रोताओं, भाभी की चूड़ियां, जिंदगी और खाब, प्यार का सागर, आजाद, बहाना, चिराग कहां, रोशनी कहां, यहूदी की लड़की, मिस मैरी, शारदा, फूल और पत्थर, ये और फिल्में थी।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि साहब बीवी और गुलाम एक बहुत ही सराहनीय मार्मिक भावपूर्ण फिल्म है, जहाँ तक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के शौकीन लोग हैं इसे बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, इसमें बहुत सुंदर लगती है मीना कुमारी। सिने जगत की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के गीत आज शामिल थे सुरीला सफर कार्यक्रम में। श्रोताओं, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न

दोस्तों, त्रिवेणी की धाराएं आज मिल रही हैं बारिश की बूंदों पर। थोड़ी खुशी थोड़ा गम अपने आगोश में समेटे बारिश जब आती है तो गर्मी से निजात दिलाती है, नहीं आती तो परेशानियों का पहाड़ ठेल देती है धरती पर। लोग बूंद बूंद के लिए तरस उठते हैं। हर मौसम में छिपा होता है थोड़ा न थोड़ा कहर, ये प्रतीक है इंसानों का। हर इंसान में खामियां और अच्छाइयां होती हैं। स्वीकार कीजिए अच्छाइयां, दूर फेंकिए बुराइयां। बरसात के मौसम की खूबियों से खुशी पाइए, इसके कहर से बचने का उपाय सोचिए, तभी बरसात के मौसम की खूबसूरती को आप महसूस कर पाएंगे।

मखमल की चादर सी बिछ जाती है जब होती है बरसात। पानी से नहाए पेड़ पौधे हरे रंग की पोशाक पहनकर झूमने लगते हैं। क्या आपने सोचा है, अगर बारिश न हो तो जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या हो, जिनका जीवन यापन ही पेड़ पौधों और जलाशयों से होता है। अगर बारिश नहीं हो तो नदी तालाब सूख जाते हैं, जंगल के पशु पक्षी प्यासे ही दम तोड़ने लगते हैं। अब आप सोचेंगे, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम पेड़ पौधों को जिंदा रख सकते हैं, नए पेड़ पौधों की नई पीढ़ी तैयार कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण हमारी तरह स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ पर्यावरण से संतुलित बारिश होगी। हम बरसात के गीत यूं गाएंगे।

बरसात के सुहाने मौसम का गुणगान करना और बारिश की खूबसूरती पर फिदा होना सिर्फ इतना काफी नहीं है, हम सबकी एक जरूरी जिम्मेदारी है बारिश के पानी को इकट्ठा कर संग्रह करना। वर्षा जल के संग्रहण के अंतर्गत घरों की छतों पर पड़ने वाले वर्षा जल को एकत्रीकरण के लिए बनी टंकियों से जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा पत्थर से विशेष तरह की नालियां बनाकर जल संग्रहण किया जाता है। खोद कर बनाए गए तालाबों का निर्माण, पत्थरों और सीमेंट से किनारा बनाकर बीच में गड्ढा खोद कर जल संग्रहण और भी बहुत सारे तरीके

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष

0: पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया।

0: है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केवंझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा।

0: आप सुन रहे थे फिल्म यहूदी में लता मंगेशकर और सखियों को शैलेंद्र के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

बनेगा शकील बदायूं नी मासकार हेमंत कुमार गीता दत्त की आवाज में साहब बीबी और गुलाम फिल्म का गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म अर्धांगिनी में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला वसंत देसाई ने। और अब आपकी नजर कर रहे हैं दिल एक मंदिर फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: अलबेला फिल्म का गीत था लता मंगेशकर, चितलकर और साथियों की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सी राम चंद्र के सुरबद्ध के इस गीत के साथ ही श्रोताओ आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

विवाद भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। वक्त दोपहर का, बारिशों की रिमझिम इन हल्की ठंडी फुहारों के साथ साथ लीजिए। आपके रेडियो सेट पर शुरू हो रहा है प्रोग्राम। श्रोताओं, आप ही के पसंदीदा गीतों का प्रोग्राम मन चाहे गीत, तो सुनिए प्रोग्राम। देखिए कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो नहीं। आज सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

मियाँ ना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना।

सावन की ठंडी ठंडी फुहारों की तरह ये गीत हैं श्रोताओं, जो बंद हैं आपकी चिट्ठियों में, और उन्हीं में से ये गीत हमने आपको सुनवाया। दो रास्ते फिल्म का ये गीत था, जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। इस गीत को पसंद किया मालीवेस बीड शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, और इस गीत में आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से। श्रोताओं, आइलैंड नगर केटगांव से इसी गीत को पसंद किया भाऊ साहब नवथर, अक्षय चंदन, जय कुमार चंदन, सुचिता चंदन, और बसमत रोड परभणी से रणजीत कारेगांवकर, कंचन सृष्टि, समरजीत कारेगांवकर की ये फरमाइश थी। शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, पैरी पार्वती और राधा चंद्राकर की फरमाइश आपने सुनी।

राहुल देव बर्मन की तर्ज, गुलजार के बोल, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म आंधी में आप सुन रहे थे ये गीत आंधी का। और बागपत उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने। वारुंगा फाटा जिला हिंगोली से वैष्णवी, अश्विनी, कुंडलिक और पांडु रंग की ये फरमाइश थी। श्रीकांत श्रीवास्तव, श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव, ये दो नाम हैं पीरनगर गाजीपुर के। और इसी गीत को सुनना चाहा बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव शशिकला, सुमेध कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल ने। और इसी गीत के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश आई अहमद और मान सिंह की। ये फरमाइश है ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत की धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गीत को पसंद किया। न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय और शीतल ने और जीसीएफ स्टेट परेल लाइन से ये चिट्ठी आई है। इनके नाम हैं सुरेश राजपूत, सुमित, शानू, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, पुष्पा सुदेशना और निमो की ये फरमाइश है। शीतलानगर दुर्ग से शिव और भगवान चंद्राकर और नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी।

विविद भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत मेरे हमसफर। इस फिल्म का ये गीत है लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कालीगांव जाफराबाद से इस गीत को सुनना चाहते थे श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित मोताला से, कुमार प्रथमेश प्रणाली कड़ा रोड से, कुमारी सानवी देशमुख की ये फरमाइश थी और कुमार सरवत देशमुख भी यहीं से, विमल निकेतन अकोले की ये फरमाइश है, महेंद्र नागेश पारस जयेश ऋषभ संयम सिद्धांत जैन और साक्षी जैन और इनके परिवार के सभी सदस्य, मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह उषा ऋषभ प्रियंका पूजा और रितु की फरमाइश आपने सुनी।

दो कलियां फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। विनायक नगर निजामाबाद से इस गीत को सुनना चाहा ज्योति श्रीहरि, राजकमल, विनोद कुमार, रामानंद और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा ने। मोहाली पंजाब से ये पत्र आया है। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल की ये फरमाइश थी।

लेकिन हम तो जानते हैं श्रोताओं के, हमारे श्रोताओं की नजरें कभी खफा नहीं हो सकती। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपके ढेरों पत्र आए, और इसी तरह से आप पत्र लिखते रहिए, हमें रहता है आपके पत्रों का इंतजार। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को कार्यक्रम मन चाहे गीत से। आप सभी का कार्यक्रम के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: ये है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर, विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। आइए सुने नाटक विवाह का प्रस्ताव।

0: माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ दस्तक देकर ही अंदर चला आया।
1: और हम भी तुम्हें यूं ही बाहर नहीं जाने देंगे। आओ बैठो आइवन लोमोव।
0: धन्यवाद।
1: आइवन, तुमने तो हमें भुला ही दिया।
0: जी, एक उलझन के कारण मैं इधर आ नहीं पाया, इसके लिए बहुत लज्जित हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी याद सदा मेरे साथ रहेगी।
1: और ये तुम्हारा स्नेह है जो तुम हमें अपना समझते हो। मगर आइवन, आज खैर तो है, ये फर का नया कोट, ये रंग बिरंगी कराकली टोपी और ये सफेद दस्ताने, आज तुम जा कहाँ रहे हो?
0: जी कहीं भी तो नहीं, बात यह है कि मैं आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लाया हूँ।
1: अच्छा,
0: अब आपसे कैसे कहूँ?
1: तो और कौन कहेगा?
0: ये भी ठीक है, और कौन कहेगा? जी मैं ही कहूँगा, लेकिन थोड़ा पानी पिलवा दीजिए। हाँ, पहले मुझे
1: अभी लो।
0: मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, डरता हूँ अगर आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा?
1: पानी।
0: धन्यवाद।
1: अब ये मुझसे कुछ रुपया उधार मांगेगा और मैं इसे अंगूठा दिखा दूंगा।
0: देखिए, मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है कि इस दुनिया में जितना आपको मेरा ख्याल रहता है, किसी को नहीं रहता। मैं आपके इस अपार स्नेह के योग्य तो नहीं हूं।
1: आइवन, आज तो तुम्हारी बातें भी तुम्हारी पोशाक की तरह बिल्कुल नहीं है।
0: जी जी जी, ये बात नहीं है।
1: तो वो बात क्या है?
0: वो बात ये है।
1: हाँ, हाँ?
0: अभी कहता हूँ।
1: कहो।
0: बस मैं कहने ही जा रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: जहाँ हालत तक तो आ गई है।
1: तो ज़बान पर ले आओ।
0: अच्छा,
1: शाबाश।
0: अपनी बेटी नतालिया का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए।
1: आइवन, मेरे प्यारे आइवन, एक बार फिर कहो जी, कहीं मेरे कानों ने वो तो नहीं सुन लिया जो पिछले कई वर्षों से मेरे दिल में था। कहो ना आइवन।
0: फिर किस मुंह से कहूँ? कहाँ आप इतने बड़े जमींदार और कहाँ मैं आपका एक पड़ोसी छोटा सा जागीरदार।
1: ऐसा न कहो आइवन, ऐसा न कहो। जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, लेकिन तुम पहले मेरे गले से लग जाओ। मैंने सदा तुम्हें अपनी बेटी नितालिया की तरह चाहा। अरे, मैं अभी तक यहीं क्यों खड़ा हूँ? आइवन, तुमने देखा, मारे खुशी के मैं ये भी भूल गया कि मुझे नितालिया को तुम्हारे आने की खबर करनी चाहिए।
0: तो क्या नितालिया मुझे पसंद कर लेगी?
1: क्या कहते हो आइवन, तुम जैसे स्वस्थ सुंदर और नए नए कोट पहनने वाले गुलगुले जवान को भला कौन पसंद नहीं करेगा? मैं अभी नितालिया को भेजता हूं।
0: जी। चुबोकोव चले गए, अब नितालिया आएगी। ये क्या? अरे, मैं तो सिर से पांव तक कांप रहा हूं। अरे बाप, मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हुआ जा रहा है। ये क्या? मेरे हो हो होंठ कांप रहे हैं, मेरी भाई आंख फड़क रही है।
2: अरे, यहाँ तो आइवन लोमोव विराजमान है।
0: आपको आपको आश्चर्य हुआ कुमारी नितालिया?
2: जी हाँ।
0: क्या?
2: आप पर नहीं, बाबा की बात पर।
0: बाबा की बात पर?
2: जी हाँ, बाबा बोले कोई मटर खरीदने आया है।
0: ओह।
2: और मैं जल्दी में इन मैले कपड़ों में ही यहाँ चली आई। अंदर आंगन में मटर की फलियों में से दाने निकाल रही थी।
0: जी।
2: आपके लिए कुछ खाने को लाऊं?
0: जी जी जी जी, आप कष्ट न करें, मैंने अभी खाना खाया है, आप कृपया बैठ जाएं तो।
2: लीजिए, बैठ गई।
0: जी।
2: आज तो आप अपने घर से खूब बन ठन कर निकले हैं।
0: जी।
2: सच, इन नए कपड़ों में तो आप देखने में बहुत भले लगते हैं।
0: कुमारी नितालिया।
2: जी।
0: मेरी मेरी मेरी आपसे प्रार्थना है।
2: कहिए।
0: जी, मैं आज बहुत ठंड पड़ रही है,
2: आपके लिए कंबल लाऊं?
0: जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था।
2: बात क्या है? आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं?
0: देखिए कुमारी नितालिया, मैं आपके बाबा को तब से जानता हूँ जब आप अभी पैदा भी नहीं हुई थी, और ये तो आप भी जानती हैं कि आज मैं जिस जागीर का मालिक हूँ वो मुझे मेरे नाना नानी से मिली थी। मेरा मतलब है, मैं कहना ये चाहता था कि मेरे नाना नानी भी आपके बाबा को बहुत चाहते थे और आज भी हमारे घरों के आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं। देखिए ना, आपके घर की दीवार मेरे घर की दीवार के साथ लगती है, आपके खेतों के साथ मेरे खेत हैं, आपकी सफेदा जमीन के किनारे मेरा चेरी का बगीचा खड़ा है।
2: क्षमा कीजिए
0: जी,
2: क्या क्या वो चेरी का बगीचा आपका है?
0: जी हाँ, क्यों?
2: यूं नहीं, सोच कर बताइए।
0: आप भी कमाल करती हैं, भला इसे सोचने की कौन सी बात है? और फिर क्या मेरे सोचने पर मेरा वो बगीचा किसी दूसरे का बन जाएगा?
2: लेकिन जो बगीचा हो ही दूसरे का, वो आपका कैसे बन सकता है?
0: मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
2: इसलिए कि वो बगीचा हमारा है।
0: अजी, मैं चेरी को उस बगीचे का जिक्र कर रहा हूँ जो आज तक कभी हरा नहीं हुआ, जिसके एक सिरे पर आपकी सफेदा जमीन है और दूसरे सिरे पर खाई है।
2: जी हाँ, मैं भी उसी बगीचे के लिए कह रही हूँ कि वो हमारा है।
0: कमाल है, ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ कि वो बगीचा आपका है।
2: और मैंने भी आज पहली बार सुना कि वो आपका है।
0: लेकिन मेरे बगीचे पर आप अपना कब्जा कैसे जता सकती हैं?
2: अरे, मगर वो बगीचा आपका कब से हुआ?
0: जब से मैंने होश संभाला।
2: फिर जब से आपने होश संभाला है, आप झूठ को सच समझ रहे हैं।
0: जी नहीं, आप अब सच को झूठ समझ रही हैं। देखिए कुमारी निकालिया, मेरे पास ऐसे कागजात हैं जिनमें ये साफ साफ लिखा है कि मेरी नानी की दादी ने वो बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को बिना पट्टा लिखवाए खेती करने के लिए दिया था, और आपके दादा 40 साल तक हमारी उस जमीन की कमाई खाते रहे। और फिर आप ही की तरह जब आपके दादा ने भी हमारी उस जमीन का मालिक बनने की कोशिश की, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी।
2: देखिए, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो मैं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लूं।
0: मैं जानता हूँ कुमारी निकालिया, आप इतनी बुद्धिमान भी नहीं है जो किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना हक जताना छोड़ देंगी।
2: आइवन, इस प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं।
0: जी,
2: आपका मुंह बंद करने के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो सूखा सड़ा बागीचा जिसकी कीमत 300 रूबल से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं है, मैं आपको भेंट कर सकती
0: हूँ। कुमारी निकालिया, मैं आपकी उदारता का कायल हूँ, लेकिन आपको मेरी ही संपत्ति मुझे भेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगीचा तो मैं आपको भेंट कर सकता हूँ, मगर अब प्रश्न सिद्धांत का है, न्याय का है।
2: अन्याय भी ये है कि न्याय आप कर रहे हैं। 300 साल से जो बगीचा हमारे अधिकार में चला आ रहा है, आज उसे आप अपना बता रहे हैं।
0: फिर वही बात, आप किसी दूसरे की सुनती भी तो नहीं है। कुमारी निकालिया, हुआ यूं था कि आपके परदादा के काश्तकारों ने मेरी नानी की दादी को मकान बनाने के लिए ईंटें पकाकर दी थी, इसलिए कुछ बख्शीश के तौर पर मेरी नानी की दादी ने उन्हें।
2: फिर वही दादी की नानी, नाना के दादा। अब मैं आपसे और कितनी बार कहूं कि वो बागीचा हमारा है, हमारा
0: जी
2: है।
0: नहीं जी, नहीं जी, नहीं, वो मेरा है। आप सुनिए तो, वो हुआ यूं था।
2: आइवन, अगर आप लगातार 2 दिन तक इसी तरह बहस करते रहेंगे और अपने घर से एक बढ़िया कोट पहनकर आते रहेंगे, तो भी ये बागीचा हमारा ही रहेगा।
0: देखा है ना सीना दूरी। कुमारी निकालिया, मैंने आज तक कभी किसी की संपत्ति पर अपना हक नहीं जताया, मैंने आज तक कभी किसी की जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की।
2: इसीलिए आप अपनी ईमानदारी का सिला हमसे वसूल करना चाहते हैं?
0: ओ, मेरे गले में कांटे उगे हैं। ठहरिए, जरा पानी पी लूं तो बताता हूँ आपको। मैं फिर कहता हूँ कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है।
2: ये चीख आपकी है, मगर बागीचा हमारा है।
0: जी नहीं, वो मेरा है।
2: वो बगीचा हमारा है, और मैं आज ही अपने कारिंदों को वहाँ की सारी घास काटने के लिए भेजती हूँ।
0: क्या?
2: हाँ, मेरे आदमी अभी वहाँ पहुँच जाएंगे।
0: तो कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरी धरती पर किसी ने कदम रखा तो मैं उसकी खाल में भूस भरवा दूंगा।
2: इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अंजाम से वाकिफ हैं?
0: मैं कहता हूँ इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बगीचा मेरा है, मेरा है, मेरा है।
2: आइवन, अगर ये घर मेरा ना होता तो आप इससे भी कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, दहाड़ सकते थे।
0: कुमारी निकालिया, कुमारी निकालिया, अगर मुझे दिल का रोग ना होता, अगर मेरे पुट्ठों में दर्द ना होता, तो आज मैं आपको बता देता कि किसी की संपत्ति पर आंख रखने का क्या परिणाम होता है। देखिए, अब भी भलाई इसी में है कि सीधी तरह से मान लीजिए कि वो बागीचा मेरा है।
2: नहीं, हमारा है।
0: जी नहीं, मेरा है।
2: हमारा है।
0: मैं कहता हूँ मेरा है।
1: जी क्या हो रहा है?
2: बाबा, आप जरा इनकी समझ में ये बिठाइए कि हमारा वो चेरी का बगीचा किसका है।
1: हमारा है और किसका?
0: आप अपनी बेटी की बोली में बोल तो रहे हैं, मगर कुछ पता भी है कि मेरी नानी की दादी ने यह बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को थोड़ी सी मुद्दत के लिए ऐसे ही खेती करने के लिए दिया था, और फिर 40 वर्ष तक वे अपना पेट और आपके दादा का घर भरते रहे।
1: आइवन, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि उन काश्तकारों ने तुम्हारी दादी को उस बगीचे के पट्टे की सारी रकम चुका दी थी। विश्वास न हो तो गांव के पटवारी से या तहसीलदार की कचहरी से जाकर मालूम कर लो कि उस जमीन का लगान आज तक कौन भरता रहा।
0: फिर तो आप सरकार को भी धोखा देते रहे।
1: धोखा? हाँ, अपनी जमीन का लगान तुमसे सरकारी खजाने में भरवा के हम तुम्हें अवश्य धोखा दे सकते थे,
2: लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया।
0: मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता कि वो बागीचा मेरा है और मेरे पास इसका सबूत है।
1: नहीं आइवन, तुम ये साबित नहीं कर सकते।
0: क्यों नहीं कर सकता?
1: आइवन, तुम इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दो कि हम तुम्हारा वो बगीचा हड़प कर जाना चाहते हैं।

0: अगर तुमने यूं ही चिल्लेपो मचाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वह बगीचा तुम्हारा है तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करने के बजाय अपने किसी काश्तकार को यूं ही दे
1: दूंगा। जी हाँ क्यों नहीं, बेटी भेंट करने की बात कहती है और बाप किसी और को दे डालने की धमकी देता है। मैं पूछता हूँ किसी दूसरे की संपत्ति को आप इस तरह कैसे लुटा सकते हैं, क्या अधिकार है आपको?
0: ये तो मैं ही जानता हूँ मुझे अधिकार है या नहीं, लेकिन तुम अपनी जबान को काबू में रखो, मैं ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं।
1: तो हो जाएंगे, अब आपका वास्ता मुझसे पड़ा है।
0: यूं ही आवेश में मत आओ।
1: वाह वाह, आप तो पड़ोसी होने के नाते मेरा बागीचा हड़प कर जाएं और मैं आवेश में भी नहीं
0: हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ।
1: मैं तो जैसे आपके आदेश की प्रतीक्षा में ही था। मैं कह देता हूं आप मेरे पड़ोसी नहीं हैं, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू हैं।
0: क्या कहा?
2: बाबा बाबा, इन्होंने आपको डाकू कहा?
0: अब मैं इसे क्या कहूं?
1: जो मैंने आपको कहा है आप वही अपनी बेटी से भी कहिए।
2: बाबा आप कुछ कहने के बजाय कुछ कीजिए।
0: मैं कुछ करूं?
2: हाँ।
0: लेकिन मैं क्या करूं?
2: आप अपने कारिंदों से कहिए कि वो बागीचे की सारी घास खोद लाए।
1: खोद लाए? कुमारी नितालिया, घास खोद लाना इतना आसान नहीं है।
0: इस बारे में आप अधिकार से बात कर सकते हैं।
1: आप मेरी यूं खिलना उड़ाइए, मैं अब इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
2: और जब इंसाफ होगा आप अदालत का दरवाजा तोड़ डालेंगे।
0: क्योंकि तुम इंसाफ उसे मानते हो जो इंसाफ के साथ खुद बड़ी बेइंसाफी।
1: हाँ, इसका फैसला अब अदालत में ही होगा।
0: आइवन, मैं तुम्हारी मुकदमेबाजी की लत से वाकिफ हूँ और मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पुरखों की सारी जिंदगी अदालतों में ही।
1: देखे, मेरे पुरखों का अपमान मत कीजिए, उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी लोगों की जबान पर हैं। हाँ, आप अपने चचा की ईमानदारी का डंका जरूर बजाइए जो गबन के अपराध में आज भी जेल में आटा पीस रहे
0: हैं। तुम्हारा तो दिमाग चल गया।
2: इनके घराने में ठीक किसका था?
0: हाँ, इसका दादा संकी।
1: हाँ, दादा संकी था। आपकी माँ का भी तो ऊंट की तरह कोहान निकला हुआ था। मेरा दिल पानी।
0: अरे तुम्हारा तो बाप पत्तेबाज था, क्रॉसवर्ड पजल भरा करता था।
2: आपकी नानी के मुंह में जबान नहीं ततैया मिस थी और वह हर किसी को काटने को दौड़ती थी।
1: मेरी बही ठंड के तार झंझनाने लगे और आप मीठी जबान से हर किसी का गला काट रहे हैं। और ये मेरा दिल, और ये कौन नहीं जानता कि चुनाव से पहले मुझे मुझे मुझे कुछ नहीं सुझाई दे रहा, मेरी टोपी कहाँ है?
0: अरे तुम मक्कार, अरे भी।
1: लेकिन आपसे कोई मुकाबला नहीं है। ओ, मेरा दिल, यही मेरी टोपी, अब दरवाजा की तरह मेरी टांग सुन हो गई।
0: घसीट कर ले जाओ अपने आप को यहाँ से।
1: हाँ हाँ, जा रहा हूँ।
0: इतना और सुनते जाओ, हमारे घर फिर कभी पांव रखा तो हाथ से टांग, नहीं टांग से हाथ धो बैठोगे। हाँ,
2: और अब यहाँ से सीधे अदालत में ही जाना। हाँ,
0: चला गया कमीना कहीं का।
2: हमें इस रीछ पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए।
0: और आस्तीन के सांप का हमें सर कुचल देना चाहिए।
2: हाँ, नहीं तो ये हमारी संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठ जाएगा।
0: निर्लज्ज का दुस्साहस तो देखो।
3: बोला, आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
2: कैसा प्रस्ताव?
0: अरे ब्याह का प्रस्ताव, कमीना जलील गुंडा कहीं का मेरी बेटी से ब्याह करना चाहता था।
2: पहले क्यों नहीं बताया?
0: अरे मैं क्या बताता, तुमने खुद नहीं देखा कि वो रीच का बच्चा कैसा छैला बनकर आया?
2: वो मुझसे ब्याह करना चाहते थे।
0: अरे अरे, क्या हुआ बेटी नितालिया, क्या हुआ?
2: बाबा बाबा, उन्हें बुला लाइए, अभी बुला लाइए।
0: क्या, अब उसे मैं बुलाने जाऊं?
2: हाँ बाबा, अभी जाइए, अभी जाइए बाबा। ओह, मेरा सर चकरा रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
0: अरे मगर बेटी, अभी हमने उसे यहाँ से इतने शानदार स्वागत से निकाला और अब वो दोबारा यहाँ आने के लिए कभी नहीं मानेगा।
2: बाबा आप अभी जाकर उन्हें किसी भी तरह मना लाइए, मैं उनके
0: अरे बेटी नितालिया, होश में आओ, ये क्या पागलपन है? भगवान, अब मैं कहाँ डूबने जाऊं?
2: इससे पहले उन्हें बुला लाइए।
0: जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, जा रहा हूँ।
2: आज उन्होंने फर का कैसा बढ़िया कोट पहन रखा था। हमने उनका ऐसे सम्मान किया, कौन जाने अब वो आएंगे भी या नहीं।
0: निटालिया बेटी, हेलो, अब तुम अच्छी हो जाओ, वो आ रहा है। कम वक्त अभी सीढ़ियों पर ही था, मगर अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बोलूंगा, तुम जानो और वो जाने।
2: वो कब आएंगे?
0: अरे भाई, उसके पर नहीं, पैदल आ रहा है।
2: आप उन्हें उठा कर क्यों नहीं ले आए?
0: ओ भगवान, तुम एक अच्छे भले आदमी को बेटी का बाप क्यों बना देते हो? मेरी तो मिट्टी खराब हो गई।
2: कैसे?
0: तुम्हारे कारण पहले मैंने उसे जली कटी सुनाई, उसे अपमानित किया और फिर उसे खड़े खड़े अपने घर से बाहर निकाल दिया, और अब
2: क्या क्या मेरे कारण?
0: और नहीं तो क्या
2: बाबा, अब आप मेरे साथ वैसा व्यवहार ना कीजिए।
0: अच्छा बाबा, अच्छा, सारा दोष मेरा ही था। एक बेटी का बाप निर्दोष हो ही कैसे सकता, और फिर वो भी अपनी बेटी की नजर में। लो, वो आ गया और मैं अपने कमरे में जा रहा हूं।
1: मेरा दिल बड़े शोरों से धड़क रहा है,
2: और मेरे दिल को बड़ा चैन मिला है आपको यहाँ अपने पास देखकर।
1: वो बगीचा मेरा है।
2: जी हाँ, वो बगीचा सचमुच आप ही का है। आपके जाने के बाद मुझे याद आया,
1: मेरी टांगे सुन्न हो गई हैं, लेकिन वो बगीचा मेरी नानी की दादी से पहले भी हमारा था।
2: जी हाँ जी हाँ, हमसे भूल हो गई, आप कृपया क्षमा करते।
1: बात असूल की थी, सिद्धांत की थी, नहीं तो आप जाने सूखा हुआ बगीचा जो कभी हरा नहीं हुआ चीज ही क्या है।
2: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, अब कोई और बात कीजिए।
1: तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मेरी नानी की दादी ने आपके दादा के काश्तकारों को।
2: जाने दीजिए, मैं अपनी भूल पर पहले ही बहुत लज्जित हूँ। ये बात कैसे चलाऊं? आप शिकार खेलने के लिए कब जा रहे हैं?
1: मैं फसल की कटाई के बाद मैं मुर्गाबी का शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या शिकार खेलूंगा?
2: क्यों?
1: अपने डब्बू को तो आपने देख ही रखा है ना, उस बेजबान की अब टांग भी टूट गई है।
2: ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर उसकी टांग टूट कैसे गई?
1: ठीक से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे डब्बू की टांग किसी कुत्ते ने ही तोड़ी है, क्योंकि कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है, और मेरे डब्बू की टांग क्या टूटी, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी ही कमर टूट गई हो। मैंने उसे बड़े लाल प्यार से पाला था, और अब जब मुझे उसकी जरूरत थी वह बेचारा अपाहिज हो गया। भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता।
2: डब्बू आपने लिया किससे था?
1: अजी, ये पहले मेरो नोब के पास रहता था, तब ये अभी ढंग से भौंकना भी नहीं सीख पाया था कि इत्तफाक से इस पर मेरी नजर पड़ गई, और मैं इस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया। उधर मेरो नोब इससे बिछुड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने मेरो नोब के सामने 125 रूबल का ढेर लगा दिया तो वो कुछ ना कह सका।
2: 125 रूबल?
1: हाँ, आपको अचंभा हुआ?
2: जी हाँ, इतने में तो हाथी आ जाता।
1: कुमारी निथालिया, मैं इसे हाथी का बच्चा ही समझ कर लाया था।
2: तब आपने कुत्ते के नहीं अपनी समझ के दाम चुकाए थे, नहीं तो मेरे बाबा मेरे लिए कालू 50 रूबल में लाए थे, और हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना अच्छा है।
1: मुझे तो इस पर भी संदेह है कि आपको 1000 तक गिनती आती है, नहीं तो आप अपने कालू का मेरे डब्बू से कभी मुकाबला नहीं करती।
2: मुकाबला हो ही कैसे सकता है, शेर का भेड़ से क्या मुकाबला।
1: जी
2: आइवन, हमारा कालू अभी बच्चा है। हाँ। एक बुरा कुत्ता बनने में उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन अब भी हमारे सारे प्रांत में ऐसा कोई कुत्ता नहीं जो जीदारी और फुर्ती में हमारे कालू का सामना कर सके।
1: तो सुन लीजिए कुमारी निथालिया, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कालू का जबड़ा बहुत छोटा है, और ऐसे कुत्ते बच्चों की गेंद भी उठाकर नहीं ला सकते।
2: जबड़ा छोटा है?
1: जी,
2: ये बात भी मैंने आज पहली बार सुनी है।
1: विश्वास कीजिए, आपके कालू का निचला जबड़ा उसके ऊपर के जबड़े की अपेक्षा बहुत छोटा है।
2: क्या आपने उसे कभी नाप कर देखा है?
1: मैं अब नाप कर दिखा सकता हूँ, आप उससे अपनी टांग पर कटवाइए। वैसे मैं ये मानता हूँ कि ऐसे कुत्ते जिनके जबड़े छोटे होते हैं वे दौड़ने में अच्छे

0: होते हैं, लेकिन शिकार पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती।
1: जरा ये भी फरमाइए, आपका वो लंगड़ा खाज का मारा डब्बू
0: जी
1: किस राज घराने में से है, किस कुल का दीपक है?
0: आपको जब जरूरत होगी तो मैं आपको उसका गोत्र तक बता दूंगा, उसकी जन्म कुंडली भी दिखा दूंगा। अभी तो इतना ही सहन कर लीजिए कि डब्बू उस किस्म का कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में समुद्र से मोती निकाल कर ले आते हैं, और आपका वो कालू घर वालों को काटे और चोर के आने पर दुम दबा कर भागे।
1: स्वामी भक्ति की ऐसी परिभाषा केवल आप ही कर सकते हैं, मगर हमारा कालू ऐसा नहीं है।
0: मैं ऐसा नहीं है तो ऐसा वैसा होगा?
1: आप होंगे, होंगे क्या आप हैं?
0: जी
1: भला ये भी कोई बात है, पहले हमारे बगीचों को अपना बताया और अब अपने खाज मारे लंगड़े डब्बू को हमारे कालू से बढ़िया बता रहे हैं।
0: अच्छे को तो अच्छा कहा ही जाएगा।
1: लेकिन आप ऐसा कह नहीं रहे, आपका दिल मानता है कि हमारा कालू कुत्तों का बेताज बादशाह है, लेकिन आप फिर भी अपने लंगड़े की शान बघारे चले जा रहे हैं।
0: यही बात तो मैं अपने डब्बू और आपके बारे में भी तो कह सकता हूँ।
1: लेकिन सच क्या है?
0: आप ही कहिए, क्या आपके कुत्ते का जबड़ा छोटा नहीं?
1: कहाँ छोटा है?
0: छोटा है।
1: नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरा मेरा बस चले तो मैं आपके डब्बू को कमेटी वालों से गोली लगवा
0: दूं। और मेरा बस चले तो मैं वही गोली, मेरा दिल फिर डूबने लगा।
1: आपको कुत्तों के बारे में इतना ही पता नहीं है कि
0: वो मेरा दिमाग फट रहा है। अब आप चुप हो जाइए।
1: जब तक आप ये ना मानेंगे कि हमारा कालू आपके डब्बू से हजार गुना बढ़िया है, मैं कभी चुप नहीं
0: हूँ। यही बात है तो बेशक चिल्लाइए, चीखिए, लेकिन मैं आपके उस मरियल कुत्ते की शक्ल के मेमने को कुत्ता नहीं कहूंगा। अगर वो आपकी संगत में कुछ दिन और रह गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो बावला हो जाएगा। ओ मेरा कंधा, मेरी आंखें, गणपति, गणपति।
1: और आपका कुत्ता तो जैसे टांग तोड़वा कर अमर हो गया है, और अब उसे कुछ होगा ही नहीं।
0: ओ मैं कहता हूँ खामोश हो जाइए, दुख से मेरा दिल फटा जा रहा है।
1: अब मैं चुप नहीं हूँ।
0: अरे अरे अरे, ये फिर क्या हो रहा है?
1: बाबा बाबा, आप सच सच कहिए, हमारा कालू अच्छा है या इनका लंगड़ा?
0: पहले आप ये बताइए, आपके कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं? पक्षपात किए बिना कहिएगा कि कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं।
2: है, लेकिन फिर क्या हुआ पता है? हमारे कालू जैसा बढ़िया कुत्ता सारे प्रांत में नहीं।
0: मेरे डब्बू को छोड़कर आप ऐसा दावा जरूर कर सकते हैं?
2: तुम्हारा डब्बू भी बड़ा गुणवान है। उसके कान खड़े और शरीर गठीला है, पिछली टांगे पतली लंबी सुडोल है, लेकिन उसमें दो ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण उसे कुत्ता कहना एक अच्छी नस्ल के कुत्ते का अपमान करना।
0: देखिए देखिए देखिए, मुझे दिल की बीमारी है, वास्तविकता को झुठलाने की कोशिश न कीजिए। कुत्तों की वार्षिक दौड़ में मेरा डब्बू राजा साहब के कुत्ते के बराबर रहा था, और आपका वो कालू दौड़ दौड़ कर पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया।
2: तो बेचारा और क्या करता, दौड़ शुरू होने से पहले राजा साहब के कारिंदे ने उसे हंटर जो मारा था।
0: अरे काश वो उसे गोली मार देता।
2: आइवन, ये मत भूलो कि तुम्हें दिल की बीमारी है। हाँ। और मुझे गुस्सा बहुत आता है। और गुस्से की हालत में मैं बुरा भला बल्कि
0: आप अपने कुत्ते की हिमायत में मुझे धमका रहे हैं। अरे मेरा दिल फिर बड़ा जोर धड़कने लगा। अरे हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल,
1: हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। इस दिल से ये जंगल में शिकार खेलने जाएंगे बाबा। अजी आप, मैं कह रही हूँ रसोई घर में बैठकर मक्खियाँ मारा कीजिए।
2: मक्खियाँ उड़ाने के लिए कहो बेटी, इनका दिल बड़ा कमजोर है। आइवन, मैं तुम्हें जंगल में जाकर शिकार खेलने से रोकता नहीं हूँ। क्या पता कोई जानवर तुम्हारा शिकार बनने से पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना डाले।
0: अरे शिकारी को जानवर अपना शिकार बना ले और जानवर को अपना शिकार मैं बना लूं, ऐसा भी हो सकता है अगर किसी रात आप मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने चले।
2: आइवन, मुझसे ऐसी बातें कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
0: जब आप मुझसे ऐसी बातें बड़े गर्व से कहते हैं तो मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए?
2: तुम्हारा तो शर्म,
0: देर ही कितनी लगती है, लेकिन कारण भी तो बताइए।
2: मूर्ख,
0: और जो स्वयं न समझ सके और दूसरों को समझा न सके उससे तो आप कुछ कहेंगे नहीं।
2: मैं कहता हूँ जहर उगलने से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा।
0: आप क्या सिर फाड़ेंगे, गलियों में बच्चे तक जानते हैं। अरे मेरी जान, आपकी पत्नी भरे बाजार में आपको पीट दिया करती थी। मुझे टांग दो।
2: और तुम भी तो अपनी उस नौकरानी से छिपते फिरते हो।
0: मेरी टांग आ गई, मेरा दिल कहाँ टूट गया। डॉक्टर, डॉक्टर,
2: कमीना, बेशर्म, गधा।
1: घोड़े पर सीढ़ी लगाए और स्वयं को शिकारी कहलवाए। पापा, पापा,

0: तो इन्हें हुआ क्या है?
1: आइवन, आइवन, बाबा आइवन चले गए।
2: क्या? नितालिया, नितालिया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो। तुम मेरा दिल पीट रहा है। बेटी, तुम मेरा एक काम करो।
1: क्या बाबा?
2: मुझे मेरा पिस्तौल ला दो।
1: जाने दीजिए बाबा। अब आप मरे को क्या मारेंगे?
2: अरे बेटी, मैं पिस्तौल अपने लिए मंगवा रहा हूँ।
1: अपने लिए?
2: हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा।
1: नहीं नहीं नहीं बाबा, नहीं।
2: अरे पिस्तौल नहीं तो मुझे चाकू ही ला दो, मैं अपना गला काट लूंगा।
3: ला दो ना।
2: अरे आइवन तो अभी जिंदा है। आइवन
1: जिंदा है।
2: लो लो, पानी पी लो, पानी पी लो।
3: मैं कहाँ हूँ?
4: तुम जहन्नुम में हो जो तुम्हारे आने से पहले जन्नत थी। हा? अब तुम झट से उठ के बैठो और नितालिया से ब्याह कर लो।
3: हा? क्या?
4: हाँ बाबा, हाँ, नितालिया ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और वो तुम्हें बहुत चाहती है।
3: क्या सच?
4: चुप चुप। नितालिया बेटी, लाओ अपना हाथ इधर लाओ।
1: बाबा।
4: आइवन
3: जी, ये लो,
4: नितालिया का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ और अब तुम लोग मेरा पीछा छोड़ो।
3: ओ बाबा, मैं आपका किस्मत से शुक्रिया अदा करूं। बाबा, मैं बिल्कुल अच्छा हो गया।
4: अच्छा?
3: जी हाँ। तो वो बात क्या थी? मुझे कुछ कुछ तो याद आ रही है।
1: जी, मैं बता। मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
4: और मेरा भी जी का जंजाल कटा।
3: हाँ याद आ गई। ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरा डब्बू आपके कालू से कई गुना बढ़िया है।
1: ये कई गुना घटिया है।
3: जी नहीं,
1: ये आपको मानना पड़ेगा।
3: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
1: मैं कहती हूँ घटिया है।
3: जी नहीं, मैं कहता हूँ बढ़िया है।
1: आश्रम की कुछ
3: मैं
1: तो अभी
3: से मैं कहता हूँ बढ़िया है।
1: बढ़िया नहीं है, घटिया है।
3: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
4: तुम लोग
3: भी है। जी है।
4: मैं ही यहाँ से।

अभी आप सुन रहे थे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में सन 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप सेन साहब। पिछले भाग में हमने आपके कुछ गीतों पर, आपके संगीत पर चर्चा की थी, तो आइए आज फिर से आपकी संगीत यात्रा पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप साहब, बात हो रही है आपकी संगीत रचना पर। आपने इतने गीत अब तक बना दिए हैं, तो 90 के दशक में आप लोग जब लाइव म्यूजिशियंस और क्रिएटिव सिटिंग्स के जरिए गाने बनाते थे,
3: हाँ,
2: और किसी एक साज वाले से गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था, इस तरह से काम हुआ है, इसमें क्या तकलीफें आती थी?
3: देखिए, आज जो टेक्निक है ये क्लिक पे रिकॉर्ड होता है।
2: हाँ,
3: पहले वो क्लिक ले लेते हैं, टक टक टक टक, प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वो ऑलरेडी बज चुका है, अब उसको सुन के लोगों को बजाना है, समझ गए?
2: जी।
3: हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था।
2: जी।
3: हमारे वक्त क्या, जैसे अभी गाना शुरू हुआ, वो जैसे गोरी चोरी चोरी कहाँ जाए पता, तेरा टाका बिगड़ा हमको है पता, कैसे आंखें लड़ी कैसे बात बड़ी, कैसे चुभा तुझे कुछ हुआ तुझे, हमको ना बनाना रे, हमसे ना छुपाना रे, गोरी चोरी चोरी मेरी नींद गई मेरा चैन गया, कब जब होश ना था कुछ बात हुई हाय मैं, ये जैसे गया।
2: हाँ।
3: अब आंखों की बनी तनम को बहुत भाव गई, राजन से मिलके घड़ी दो घड़ी में देखो चली आ गई, कहां लाली गई। अब ये जो आता है,
2: हाँ,
3: यहां से क्या होता है, हल्का सा टेम्पो बढ़ जाता है जब लाइफ होता है ना,
2: हाँ,
3: डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा, चिंता का चिंता का चिंता का चिंता का चिंता का। तो आज अगर हम लोगों ने जो लाइव म्यूजिक बजाए हुए हैं उनको अगर आप क्लिक में लोगे वो हिला हुआ लगेगा, क्लिक पे आ नहीं था। तो ये जो टेक्निक थी हमारी, तो जैसे वो गया, अगर किसी ने बढ़ाया रिदम तो बजाते बजाते एक जोश आता है ना अंदर से,
2: बिल्कुल।
3: तो जैसे आपने बजाया बजाया, तो जैसे जोश आया तो कभी कभी कोई ओवर जोश हो जाता था, अरे कट कट कट कट कट, दोबारा लेते हैं, तो इस तरीके से किसी ना किसी की हो जाती थी। और अक्सर क्या आके जैसे कुछ फ्रेज लोग भूल जाते थे
2: जी,
3: तो हमारे वक्त जो लाइव म्यूजिशियन होते थे उसमें हल्का सा उतार चढ़ाव रहता था, टेम्पो की बात कर रहा हूं। आज क्या, क्लिक के ऊपर है, वो हिलता नहीं है, इसीलिए आज जो सिंगर है ना वो बहुत बंधा हुआ गाता है। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, एक एक से दो बार एक्स्ट्रा रखते हैं उस फॉर द सिंगर, क्योंकि जैसे मैंने गाया वो गाएगा नहीं, तो उसको थोड़ी जगह चाहिए कि सांस लेने के लिए या फील डालने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा दो बार रख लेते हैं। फिर उसका जितना उसने गाया हमको जहां तक उसका चाहिए चाहिए, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बार हुआ वो हम कट करके वापस जॉइंट कर देते हैं। आज ये फैसिलिटी है। तो उसमें गाने में हम लोग ये कोशिश रखते हैं कि बार की, अमूमन हर आदमी को ये टेक्निक नहीं पता,
2: नहीं आती है। जी जी जी
3: जी।
2: तो कोई एक गाना कितने दिनों में रिकॉर्ड हो जाता था उन दिनों, 90s की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक गाने को रिकॉर्डिंग करने में आपको कितना दिन लगता था, या एक कलाकार कितना समय लेता था एक गाने की रिकॉर्डिंग?
3: एक दिन।
2: अच्छा,
3: एक दिन में दो दो गाने किए मैंने। मैं एक फिल्म कर रहा था वो एक दिन में विद सिंगर के, पहला गाना जब किया तो उसमें मोहम्मद अजीज जी और अलका याग्निक जी विद कोरस ऑर्केस्ट्रा, मतलब कम से कम 100-125 म्यूजिशियन कोरस के साथ में, और सिंगर अपने रूम में, तो अलका जी और अपना ये मोहम्मद अजीज, वो 11:30 बजे के रिकॉर्डिंग करके 3:30 बजे 3:30 बजे तक उनका पैकअप हो गया। 4 बजे दूसरी शिफ्ट में आशा जी, अमित कुमार, वो भी लाइव, 10:30 तक उनका भी पैकअप हो गया। तो कभी कभी हमने दो भी गाने किए हैं
2: जी।
3: और जब थोड़ा जब सक्सेस आ गई तो एक गाना दो दिन में भी किए।
2: हाँ जी।
3: तो वो ऐसा नहीं है, वो दो दिन में तो इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन में पहले दिन फुल ऑर्केस्ट्रा हो गया, दूसरे दिन ये हो गया, क्योंकि बाद में टेक्नो जो साउंड आया ना ये थोड़ा टाइम लेने लग गया। क्योंकि देखिए, जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक बात बता रहे हैं कि आपको वो उस चाल में चलना पड़ेगा साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने जितने भी गाने किए अफलातून के जो भी प्रोग्रामिंग होते थे उसके साथ साथ हमारा ऑर्केस्ट्रा भी होता था
2: जी,
3: लाइव ऑर्केस्ट्रा भी। तो हम लोग पहले ट्रैक ले लेते थे, फिर ट्रैक ओपन करके इनके वॉइस जो कोरस मतलब जितने ऑर्केस्ट्रा है कोरस है उनमें हेडफोन में उनको आता था जो हमारा कीबोर्ड का जो प्रोग्रामिंग का है। अब जैसे आप देखिए मेरा गाना था ओले ओले, अब अफलातून ये 98 के करीब के गाने हैं,
2: बिल्कुल।
3: तो हम लोगों ने उस वक्त से भी मतलब मॉडर्न थे हम लोग जो आज भी हिट

0: तो अभिजीत साहब की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था।
1: हाँ, ये पहले किसी और के था, और अभिजीत आया था एक गाने की, एक लाइन गाने के लिए। लगी लगी है ये दिल की लगी, ना समझो इसे दिल लगी। देखिए, जब सक्सेस होना होता तो ईश्वर की
0: जी
1: कृपा होती है।
0: जी
1: उसने गाया और उसकी वॉइस क्वालिटी, और नो डाउट मेहनती लड़का तो था ही वो।
0: बिल्कुल
1: उसने जी जान तोड़ के वो गाने को गाया, ओले ओले गाने के बाद। अब वो गाना क्या हो गया कि मैं और प्रेमिला जी, मतलब मिसेस चोपड़ा,
0: पामिला
1: हाँ
0: जी।
1: प्रेमिला जी, तो अक्सर हम लोग जब भी बातचीत होए, वो बोले नहीं वो सिंगर ठीक है, मैं बोला नहीं जी ये ठीक है, अभिजीत ठीक है, बोले नहीं दिलीप जी ये कुछ लाउड नहीं लग रहा। आखिर मैंने बोला सैफ की जो वॉइस का टोन है वो इसका टोन ज़्यादा बेटर है।
0: मिलता है।
1: फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं की। तो एक बार हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे, इतने में यश जी आ गए। यश जी आते, हम दोनों चुप हो गए। तो हम दोनों को देखते, यश जी समझ गए कि कुछ बात कर रहे थे, चुप हो गए। हाँ भाई क्या बात हो रही थी आपस में? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बात है। नहीं तो यश जी ने बोला, बोलो नहीं बोलो तानसेन क्या बात है? मैं बोला कुछ नहीं, बहन जी बोल रही है कि वो फलाना सिंगर है। और मैं बोला आप क्या चाह रहे हो? मैं बोला अभिजीत ज़्यादा ठीक लगा। तो यश जी ने मेरी तरफ और प्रेम जी की तरफ देख के बोला, देखो प्रेम, हम डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हैं, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, ये हमारा काम है, म्यूज़िक का हमारा नहीं है। म्यूज़िक का काम है म्यूज़िक डायरेक्टर का, गाना इन्होंने बनाया है, तो ही वेरी इज नो वेरी वेल कि इसमें कौन सा सिंगर है। अगर तानसेन बोल रहा है कि अभिजीत सही है तो अभिजीत सही है, वो हमको इसमें आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
0: बहुत
1: तानसेन
0: बढ़िया,
1: जी अभिजीत का ही रखेंगे, इस तरीके से वो अभिजीत का रहेगा।
0: क्या बात। और बहुत शानदार गाना गाया उस
1: नहीं नहीं बहुत अच्छा
0: आवाज
1: गाया,
0: में, जो सैफ अली साहब की आवाज
1: सूट
0: थी
1: हुई, और
0: बिल्कुल स्वीट हुई।
1: नहीं, और अभिजीत ने मेहनत भी की।

0: क्या होता है, ऐसे ही कोई नहीं स्टार बन जाता, कुछ तो काबिलियत होती है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से लता दीदी का, उन्होंने आएगा आने वाले से कई पहले गाने गाए थे, बट जैसे उनका महल का गाना आया, आएगा, तो दीदी को लाइमलाइट में आना था
1: जी,
0: आई
1: जी।
0: तो आज इसी तरीके से सिंगर की जो जिंदगी है, कोई ना कोई गाना बना देता है,
1: बस उस पल का इंतजार होता है।
0: हाँ,
1: जैसे आपकी जिंदगी बनी सुरमा भोपाली से, आईना से,
0: हाँ,
1: मतलब
0: मगर
1: वो
0: पहचान बनी ओले ओले से।
1: चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
0: एक गाना मुझे आर्य बर्मन जी का, मतलब एक गाना था चिंगारी कोई भड़के,
1: अमर प्रेम का,
0: अमर प्रेम का एक गाना है। ये गाना मुझे दिल को इसलिए छूता है कि उसकी जो लय है, चिंगारी कोई, वो इतना लय, दबी हुई लय में गाना है। मगर जो बख्शी साहब ने लिखा, जो किशोर दा ने गाया और जो कंपोज हुआ, मैं समझ रहा हूं कि बस ये आइडियल चीजें हैं, ये हमारी स्कूल है। इसी गाने के हिसाब से मेरा टेम्पो मैंने रखा था, मेरा हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हमने भी यहीं से एक टेम्पो लिया था। मैं चाहूंगा कि ये चिंगारी गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल, सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: तो दिलीप जी, आपने जैसा कि कहा कि आरडी बर्मन साहब का ये गीत, या किशोरदा की आवाज, या आनंद बख्शी के बोल, क्या इन सभी लोगों से मिलना आपका हुआ कभी?
1: नहीं,
0: वो
1: किशोरदा के साथ तो ऐसा है, मेरा मुलाकात, किशोरदा उस वक्त जिंदा थे,
0: और आरडी बर्मन
1: और
0: साहब से, या
1: आरडी जी के साथ तो इसने काफी काम किया। किशोरदा का तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक फिल्म थी हमारी, अमित जी गा रहे थे, अमित कुमार।
0: अमित कुमार?
1: तो अमित कुमार क्या किया, हमको नीचे बिठा के काफी देर तक आए नहीं। तो दादा उस वक्त दो बार घूमे, दादा घूमे तो मैं खड़ा होकर उनके पैर छूने के, बोले नहीं, नहीं, नहीं। सेन साहब के लड़के बहुत बनाओ, वो जो उनका स्टाइल है, अमित नहीं आया, अमित नहीं आया। इतने में अमित नीचे आया तो उनको बोला, देखो अमित, ये नॉर्मल संगीतकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खानदान है, इनको वेट नहीं कराने का, टाइम से रखो। टाइम दिया तो टाइम, अभी इतनी देर से बैठे हैं ना ये, आइंदा ध्यान रखना। वो मेरी मिट्टी, और हमारा एक गाना गाने वाले थे सुरमा भोपाली, मगर वो किसी कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गा पाए, तो फिर वो गाना मोहम्मद अजीज ने गाया। तो ये जो लीजेंड लोग हुए ऐसे ही नहीं हुए। और गाना जब कोई चलता है, मैंने कहा ना कि सिंगर जो होता है वही उसको लेके चलता है, तो जितना अच्छा कंपोजिशन, जितनी अच्छी लिखावट थी, उतनी अच्छी फील भी इस गाने में, जो मुझे तो अच्छी लगी, शायद ऑडियंस को भी लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे गाने हैं जिन्हें कभी भुलाया ही नहीं
1: और
0: जा
1: उसके बाद
0: सकता।
1: में मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, बख्शी साहब के साथ जब मैं काम करने लगा, पहली फिल्म उन्होंने की मेरे साथ तू चोर में सिपाही,
0: जी
1: तो जिसका वो गाना था, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, वो पिक्चर मेरी चली। फिर उसके बाद में एक पिक्चर थी हमारी भीष्मा, तो उसमें गाना उनका, बाकी गाने तो चले मगर एक गाना उनका बहुत चला, वो मेरे सीने में दिल मेरा डोले के पिंजरे में पोपट बोले। क्योंकि मैं देखिए जिन जिन लोगों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं, कैफी आजमी साहब के साथ मैंने पिक्चर की थी जाना दिल से दूर,
0: जी
1: और नीरज साहब के साथ में पिक्चर की जाना ना दिल से दूर, विजय आनंद जी की, जो देवानंद जी की लास्ट पिक्चर थी एज ए हीरो, वो
0: हाँ
1: किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई। विजय आनंद जी की भी लास्ट पिक्चर थी वो, और जिसमें नीरज साहब के गाने थे, कैफी आजमी साहब के गाने थे, एक गाना था उसमें, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया,
0: बहुत सुंदर
1: था
0: गाना।
1: कदम कदम पर इम्तहां, हर इम्तहां से गुजर गया। ये कैफी साहब का लिखा हुआ था, और नीरज साहब का लिखा हुआ था,

0: मेरे नूर।
1: क्या बात है।
0: इसका अंतरा सुनिए आप। आंखें बरसे बदरा बरसे, अग्नि ना कोई बुझाए,
1: वाह वाह सुंदर।
0: हाय।

0: तो ये बहुत भाग्यशाली रहा। फिर मैंने इनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म की, अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हमारा काफी पॉपुलर हुआ, हर कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई। फिर असद भोपाली साहब के साथ की मैंने सुमा भोपाली, माया गोविंद जी के साथ एक मैंने काफी काम किए, जिनमें एक हमारी पहली सीरियल है जिसको टैप टोन में नंबर वन का अवार्ड भी मिला है, वो थी फिल्म रमेश सिप्पी जी की किस्मत।
1: किस्मत।
0: हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है।
1: गीतकार माया गोविंद के
0: माया
1: साथ
0: गोविंद
1: आपने
0: जी के
1: काम
0: साथ
1: किया है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम महिला गीतकार हैं, तो
0: नहीं,
1: माया
0: उनमें एक
1: गोविंद,
0: माया जी के अलावा एक रानी मलिक जी थी,
1: रानी मलिक थी जी।
0: बहुत अच्छी राइटर थी, काफी गाने उनके हिट हुए, मगर उनका एक गाना मेरे साथ काफी बड़ा हिट रहा, वो गाना था फिल्म मेहरबान का, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये सोनू निगम जी का एज ए सिंगर फिल्म में खुद का गाया हुआ गाना पहला गाना था। इससे
1: अच्छा।
0: पहले उन्होंने अता उला के गाए थे, अच्छा जैसे लादी ले तूने, रफी साहब के वर्जन गाए थे, मतलब एक होता है ना कि जिस गाने की मोहर लगे कि पहला गाना एज ए सिंगर
1: वो ये
0: वो
1: था।
0: ये था।
1: हाँ, तो क्या अनुभव रहा सोनू निगम के साथ काम करने का? आज
0: नहीं
1: तो वो इतने बड़े कलाकार के रूप में है, वो पहला गीत गाते समय क्या उनका वो रहा
0: नहीं वो
1: होगा?
0: गीत दरअसल उसका था भी नहीं, जब ये क्योंकि सोनू जी वहां काम करते थे और बच्चे ही थे, तो गुलशन जी को वो बोलते थे कि यार एक बार मुझे दिलीप सैन समीर सैन के यहाँ साथ में गाना है। तो गुलशन जी आए मेरे पास, बोला यार दिलीप जी एक काम करो, ये गाना जो बन रहा है ये सोनू से गवा लो। मैं कहा सर मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा जुल का, मिथुन जी की चेहरे पे ये आवाज़ थोड़ी पतली लगेगी, मैं जाता हूँ शब्बीर या मोहम्मद अजीज कोई हो। नहीं, आप सोनू से गवाइए, बेचना तो मुझे ही है। फिर सोनू ने गाया, सोनू ने इतना अच्छा गाया, और सोनू के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वर्सेटाइल सिंगर तो है ही वो, मगर उसके अंदर एक कोई कुदरत की ऐसा जादू है कि उसको अगर बोल दो ना कि इसके अंदर ये भाव चाहिए तो भाव वो पैदा कर देता था। तो सोनू जी में बात तो है, तभी तो देखो आज सुपरस्टार है वो।
1: जी। तो एक गाना सुन लेते हैं, और कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है इसी पिक्चर में, धीरे

0: इतना गहरा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे कलाकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सभी के साथ आपने काम किया है और बहुत सफल गाने आपने दिए हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी चॉइस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की चॉइस अलग रही हो और आपको एडजस्ट करना पड़ा हो और कोई फिर एक बहुत ही शानदार गीत निकल कर आया हो?
1: नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे काम पे के साथ साथ मेरी बातों पे बहुत भरोसा करते थे, और उनको ये लगता था कि ये आदमी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा।
0: जी
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनमें 19-20 चल जाता है
0: जी जी
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहाँ दिल में नहीं लगोगे।
0: सही कह
1: दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज़ है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत, और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते हैं तो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है, तो
0: जी।
1: इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूँ कि फलाना राइटर है या फलाना। सिंगर के लिए जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं जरूर कह देता हूँ कि भाई मुझे सिंगर वो दो जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूँ, क्योंकि मेरी कोई जाति दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं सिंगरों से। मैं सुन लेता हूँ, हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है, अच्छा कोई 19-20 होता भी है सिंगर तो हम उसको सपोर्ट करके बाकायदा वहां तक पहुंचाते, क्योंकि
0: तो दिलीप सेन साहब, जब आज के समय में तो ऐसा हम सुन ही रहे हैं कि ऑटो ट्यून जो टेक्निक आ गई है वहां थोड़ा सा आवाज 19-20 को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप संगीतकार बने थे, जब कड़ी मेहनत का जमाना था, रियाज का जमाना था,

0: क्या कभी कोई कलाकार की आवाज 19-20 हो जाती थी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे
1: नहीं,
0: कलाकारों के साथ काम किया है।
1: मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ कि देखिए, कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, सुनिधि, अपना जसविंदर नेरुला, ऋचा शर्मा, अपना
0: अनुराधा
1: अनुराधा
0: पौडवाल जी
1: जी,
0: हैं, अलका याग्निक,
1: अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, ये पंकज उदास जी, और मनर अपना पंकज के अलावा मेरे साथ विनोद राठौड़ जी, मुकेश जी, नितिन मुकेश है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर जी, अनवर, इवन अपना शंकर महादेवन, अपना ये क्या बोलते हैं सुखविंदर, बाली ब्रह्म भट्ट,
0: अरे क्या
1: जॉली
0: बात।
1: मुखर्जी, ये जितने सिंगर मुझे जिस वक्त मिले, पैमिला जैन, अपना सुषमा श्रेष्ठा जो
0: पूर्णिमा के नाम से
1: पूर्णिमा
0: है।
1: जी, और कोई सिंगर छूट नहीं जाए भाई, किसी को बुरा ना लग जाए, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट श्वेता सेट्टी, ये जितने अलीशा चिनोई, मुझे जितने भी सिंगर मिले या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो चित्रा जी और हरिहरन जी, ये इन्होंने मुझे हद से ज्यादा प्यार दिया, और मेरी गरिमा को या मेरी पोस्ट को एक रिस्पेक्ट दी जो मैं चाहता था, वो उस वक्त वैसा ही करते थे, चाहे वो कुमार सानू जी रहे हो, सोनू जी रहे हो, क्योंकि नो डाउट जब ये कोई भी गाना बनता है तो वो नया होता है, शब्द भी नए होते हैं, धुन भी नई होती है। अब सिंगर क्या होता है कि सिंगर जब आता है तो ये लोगों की एक बड़प्पन ये रहा है कि जब ये मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, सुरेश वाडेकर जी हुए, फिर वो उस दिन दूसरा कोई काम नहीं लेते हैं,
0: जी
1: वो इसलिए नहीं लेते कि भाई दिलीप सेन के यहाँ कितना टाइम लग जाए, और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर को कोई तंग करता हूँ,
0: नहीं, वो
1: क्योंकि
0: बात नहीं है, वो
1: वो उनको
0: रिस्पेक्ट
1: पता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट
0: और
1: कि
0: कला
1: यार
0: के
1: वहां
0: प्रति,
1: जाएंगे तो वो भागने का काम नहीं
0: और
1: करना है,
0: कला के प्रति समर्पण।
1: हाँ, समर्पण के नहीं यार, वो जब तक दिलीप सेन, समीर सेन मुतमिन नहीं होंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं बोलेंगे, हम उनके यहां से दूसरा गाना गाने जाएंगे नहीं।
0: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
1: जी बिल्कुल, सुनिए।
0: कौन सा गाना?
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है जो दीदी ने मेरे दिल से गाया था, होठों पे बस तेरा नाम है,
0: तुझे चाहना मेरा काम
1: काम
0: है,
1: है जी।
0: फिल्म ये दिल लगी का गीत, बहुत सुंदर गीत है
1: जी
0: दिलीप
1: जी
0: सेन
1: जी
0: साहब
1: जी
0: ये,
1: जी
0: तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आपका परिवार संगीत सम्राट तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ रहा है
1: नहीं, हम
0: और
1: केसर सेन की औलाद हैं, मतलब केसर सेन जी उनके शिष्यों में गिने जाते हैं।
0: जी तानसेन के शिष्यों
1: हाँ,
0: में गिने
1: शिष्यों में।
0: जाते थे तो, और आपके पिता जमाल सेन साहब भी जाने माने संगीतकार रहे और आपके घराने की जो विरासत के कारण आपके गानों में एक जो इंडियन क्लासिकल बेस और पक्के सुरों की जो गहरी समझ दिखाई देती है आपके गीतों में, आपके संगीत रचनाओं में, लेकिन साथ ही हमने देखा कि आपके कुछ गानों में देसी तरीका भी अपनाया गया है, जहां पर टेबल पर धुन थपथपाते हुए भी गीत कुछ आए
1: हाँ
0: हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे है?
1: नहीं देखिए, एक एक चीज याद रखिएगा, फोक जो है, अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि फोक कहते हैं किसको है।
0: जी
1: फोक कहते हैं आमद को, एक चीज आमद होती है। तो इसी तरीके से हमारी जो माताएं बहनें उस जमाने में, आज से 100-200 साल पहले, दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरणत भवन सु आयो विनायक, करो ये नसीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जी पधारिया जी। वो इस तरीके से करके ज्वाइंट करती दे रहती थी।
0: बिल्कुल
1: तो वहां से ये फोक ट्यूने
0: शुरू
1: निकली।
0: हुआ।
1: जैसे रेशमा जी के लिए कहते हैं कि रेशमा जी ने फोक से ही शुरुआत की, और वो भी राजस्थान से हैं,
0: जी
1: मेहंदी हसन साहब भी राजस्थान से हैं।
0: बिल्कुल
1: तो जितने भी लोग राजस्थान के कल्चर में पैदा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, इनका सबका एक अपना कल्चर है। और फोक जो है, फोक हमारी आत्मा है, क्योंकि हर जगह राग तो चलती नहीं है, तो फोक ही होता है। मगर फोक कहीं ना कहीं, फोक में क्या होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होता, वो एक ही ट्यून होती है, वो एक ही ता जैसे सा है तो उसी सा में चला जाएगा वो। फिर उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लो, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने भी जैसे कि
0: कई गीतों में आपने ही प्रयोग किया।
1: नहीं, पर मैंने एक, मैं बहुत अविनाश करके हैं, गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं
0: जी
1: जिनका काफी हिट गाने हिट हुए। उनका एक गाना था, अमे की याते गाम ना गोरी राज, अचको मचको कारेली। हमने थोड़ा सा उनसे एडोप्ट किया उस गाने को। हम मेरी चोली के टूटे सब धागे, अचको मचको का करुणा। तो ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत फोक का सहारा ले लेते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज्यादातर की कंपोजिशन खुद की हो।
0: कहीं से उठाकर नहीं ली
1: नहीं
0: गई हो,
1: नहीं
0: ताकि वही
1: फोक तो
0: जो
1: आप किसी का भी ले सकते हो। अब नौशाद साहब का अमूमन ज्यादातर के अगर गाना सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फोक ट्यूनिंग के आसपास के नजर आएंगे, बाकी वो अपनी कंपोजिशन करते हैं। वैसे नहीं, नैयर साहब हुए, उन्होंने पंजाब के फोकों को काफी इस्तेमाल किया, तो वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर को भी हम उठा के दे रहे हैं।
0: हाँ।
1: अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं,
0: जी।
1: जहां हमें हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा, हर प्रांत का संगीत, हर प्रांत का खाना पीना, इतनी वैरायटियां दुनिया में कहीं नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो इसलिए हमें तो गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवर्ष में पैदा हुए हैं।
0: बिल्कुल
1: तो आप काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कुछ अच्छी बातें

0: जाए। आप काम ऐसा करो कि लोग बाग आपको जब भी बाजू में से निकले तो लोगों में बोले नहीं यार ये दिलीप सेन जा रहा है, ये नहीं अरे ये दिलीपिया जा रहा है, ऐसा नहीं, ये दिलीप सेन जी जा रहे हैं या दिलीप जी जा रहे हैं, आपके नाम के आगे पीछे जी लगना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: जी
1: सही
0: तब लगेगा जब जी वाला काम दूसरों का दिल जीतोगे।
1: जी। चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, कौन सा गाना है?
0: अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल, सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आपकी पांचवी पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में
1: जी
0: मिला।
1: हाँ,
0: इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
1: देखिए दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूँगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं
0: जी
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चार जनरेशन को मिला था, मतलब जमाल सेन से सोहेल सेन तक
0: अच्छा।
1: चार पीढ़ी को के एक सम्मान मिला कि भाई इतना लंबा मतलब
0: सफर।
1: सफर जो कपूर खानदान का रहा है या सेन परिवार का
0: जी
1: संगीत
0: जी
1: में रहा है।
0: जी जी
1: और पांचवी पीढ़ी में अभी मेरा पड़पोता समर जो सोहेल का बेटा है,
0: अरे वाह, मतलब सोहेल तो आ ही गए हैं, सोहेल सेन के बेटे भी आ
1: बेटे
0: गए
1: भी आने वाले हैं अभी
0: हैं
1: जल्द। जी
0: जी तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको और
1: धन्यवाद जी,
0: आपके
1: धन्यवाद।
0: परिवार को। और नए गायकों, नए संगीतकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए मैं इतना ही कहूंगा, जितने जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा उन लोगों से एक ही कहना है कि देखिए इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के और उसकी चीज की तारीफ करके आप उस जैसा मत बनो, उसके साथ कोई मिलती जुलती सी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें क्यों आपकी अलग एक तारीफ बनती है। और हमें अपना जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको खोना नहीं है, जो
0: जी
1: आज लुप्त होते जा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है कि शायद ये नई जनरेशन जो आ रही है, हमें थोड़ा संगीत सीखना चाहिए, संगीत की मालूमात रखनी चाहिए, शायरी की मालूमात रखनी चाहिए,
0: जी
1: कविताओं की मालूमात रखनी
0: भाषा
1: चाहिए,
0: की।
1: भाषाएं में जिनमें देखिए कविताएं आनी चाहिए, शायरी उर्दू। जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ें, मगर कम से कम जैर जबर तो हो, आप तलफ्फुज तो सही करा सकें। तो ये जो चीजें हैं सिंगर के लिए भी जरूरी है, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी जरूरी है। आप जरूरी नहीं है कि 100 राग हैं या 50 राग हैं या बेसिक दो चार पांच, क्योंकि आजकल भैरवी, यमन कल्याण, भोपाली या पहाड़ी या समझो शिवरंजनी, इस टाइप के जो चार पांच रागे हैं वो थोड़ा बहुत उसका अनुभव हो, कॉर्ड से गाना बनाइए, मगर कम से कम आप अपनी मेलोडी को मत जाने दीजिए। जो आपकी धरोहर है
0: उसे रखिए।
1: उसे आप कायम रखिए। क्यों? कि आज हमारा हिंदुस्तान जो हमारी सभ्यता से ही पहचाना जाता है,
0: जी।
1: हमारी संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी इबादत से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, क्योंकि हम अनेकता में एकता में पहचाने जाते हैं कि हमारे सर्वधर्म सम्मान है। हम हर
0: जी
1: धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं,
0: करते
1: हर
0: हैं।
1: संगीत की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ जितने प्रांत है उतना ही हमारा अलग अनूठा संगीत है,
0: जी
1: प्यारा संगीत है। आप किसी भी प्रांत का संगीत ले लीजिए, आपका दिल खुश होगा, पूरा प्यारा सा गुलदस्ता है हमारा संगीत का।
0: बिल्कुल सही कहा। बस जाते जाते एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं।
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल सुनाते हैं। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप सेन साहब, जाते जाते कि आप एक शास्त्रीय बंदिश हमें अगर सुना दें तो हमारे श्रोता भी खुश
1: मैं
0: हो जाएंगे।
1: आपको एक वो चीज सुनाने जा रहा हूं कि जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो।
0: जी
1: शिव तांडव तो आपने सुना ही है, जैसे कि जटा कटा जटा टज प्रभावता वितस्थले वीरो विलंब विलंब तुंग तुंग मार जटा टविगल ज्वल प्रभाव वितस्थले, ये शिव तांडव हो गया।
0: जी
1: कि हनुमान तांडव जो है कि हनुमंत के लपेट दिल अंगूर के झपेट दिल दुष्ट को दपेट जर पेट चकला न बजे नक चरा तो न तो कटा कट की रिसे न पटा पट पटी पटी पाट कभी गुह की लकार की लजू है जी लकार पड़ी भीड़ भी लकार कटे रखे जनी दान तह तेज को कुमार करी को बेसुमार वीर लखन कुमार झुकी जारी की रवान प्यारे सीताराम को उजारू रघुवंश को।

0: यारो जन पेजे महागुरु रण को रघुकुल मंडल प्रचंड बैठ दंड मुन दंड न उमन न सुख न नया कल को भूपत सर तो कोना वेलो अल वेलो न रेलो रूप रेलो चल राग सनी कर को आन सकते की रहते उमंडी खले खानी चंडी पति सो कमंडी कुल खानी देने कर को ये इस तरीके से पूरा हनुमान तांडव है जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है जो मेरी आवाज में रिकॉर्ड है और इसी से ये जो रैप बना है बोलते हैं ना लोग प्रदेश का है कहीं का नहीं है हमारे छंद है आज से 10,000-20,000 साल पहले के ये छंद है जो हम डांस में यूज करते हैं इसे तूने मुझे देखा नहीं मैंने तुझे देखा नहीं चाय भी पिलाऊंगा खाना भी खिलाऊंगा चल मेरे साथ तेरे बाप को मिलाऊंगा
1: अच्छा
0: तो इससे आप कुछ भी रैप बना सकते हैं तो ये रहा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के इसलिए आपके पूरे परिवार को आकाशवाणी को विविध भारती को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां नमस्कार
1: बहुत खूब और आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया इसके लिए आपका तहे दिल से विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार
0: धन्यवाद
2: तो ये था संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग संपादन सहयोग अंबालिका सिंह विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज में करता था। और उसके बाद
4: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का पसंदीदा और दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

ढलती हुई शाम केवल दिन के अंत का संकेत नहीं है, बल्कि भाग दौड़ भरे जीवन में सुकून का एक हसीन पल है। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें और यह शांत माहौल हमें सिखाता है कि हर ढलान के बाद एक नई सुबह का उजाला जरूर आता है। यह शाम आपके जीवन में ढेर सारी शांति, नई उम्मीदें और अपनों का प्यार लेकर आए। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युवाणी में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री।

दोस्तों कार्यक्रम में चलिए बात करते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में, जो प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। दोस्तों इसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना और शिशुओं के स्वस्थ भविष्य के लिए इसे बढ़ावा देना है। माँ

का दूध नवजात शिशु के लिए सबसे पहला सुरक्षित और संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें ऐसे आवश्यक पोषक तत्व और रोग प्रतिरोधक तत्व होते हैं जो शिशु को अनेक संक्रमणों और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार जन्म के पहले एक घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान कराना और पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना सबसे लाभकारी माना जाता है। इसके बाद भी 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखने की सलाह भी दी जाती है, जिससे कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास बेहतर होता है। दोस्तों, स्तनपान केवल शिशु के लिए ही नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यह माँ और शिशु के बीच स्नेह एवं विश्वास का मजबूत संबंध बनाता है तथा माँ के स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दोस्तों, ये तो रही बात विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में, लेकिन आप जानते हैं कि दूध को संपूर्ण आहार भी माना जाता है, क्योंकि इससे शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, नियमित रूप से दूध पीने से हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं तथा बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायता मिलती है। दूध शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी सहायक होता है। इसमें मौजूद प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे शरीर कई बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है। दोस्तों, बढ़ती उम्र के लोगों के लिए भी दूध बहुत लाभदायक है, क्योंकि यह हड्डियों को कमजोर होने से बचाने में सहायता करता है। यदि दूध के साथ संतुलित आहार और नियमित व्यायाम भी किया जाए तो स्वास्थ्य और भी ज्यादा बेहतर बन सकता है। दोस्तों, हालांकि हर व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, कुछ लोगों को दूध से एलर्जी हो सकती है, तो ऐसे मामलों में उन्हें चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद ही दूध का सेवन करना चाहिए। कुल मिलाकर संतुलित मात्रा में दूध का नियमित सेवन स्वस्थ जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में एक सरल और प्रभावी कदम है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, कार्यक्रम में चलिए अब बात करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में, क्योंकि आज है इनकी जयंती। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता यात्रा केवल संघर्षों और आंदोलनों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन महान व्यक्तित्वों के त्याग, समर्पण और राष्ट्र प्रेम की गाथा भी है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे में महान राष्ट्रभक्तों में से एक थे भारत रत्न से सम्मानित पुरुषोत्तम दास टंडन। उनकी जयंती हमें उनके आदर्शों, विचारों और मातृभूमि के प्रति उनके अटूट प्रेम को स्मरण करने का अवसर देती है। दोस्तों, पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और हिंदी के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपना जीवन भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं और देश की एकता को मजबूत करने के लिए पूर्णतया समर्पित कर दिया। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से होती है। इसी भावना के साथ उन्होंने हिंदी भाषा के विकास और सम्मान के लिए निरंतर प्रयास किए। दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर देश की आजादी के संघर्ष में भाग लिया। वे सत्य, अहिंसा और जन सेवा के मार्ग पर चलते हुए समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य

0: में रहने की प्रेरणा देते हैं। उनकी जयंती पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र के गौरव को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। टंडन जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका त्याग और राष्ट्र प्रेम हमें हमेशा यह संदेश देता रहेगा कि सच्ची देशभक्ति वही है जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करे।
1: अजीब गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौठा मैनू याद नहीं, पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी वो पल मैनू अज भी याद है। इन्ना सोहना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

जी का नाम अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और जन जागरण के प्रतीक के रूप में सदैव अमर रहेगा। उनकी पुण्यतिथि हमें उस महान व्यक्तित्व को नमन करने का अवसर देती है जिन्होंने अपने विचारों और संघर्षों से करोड़ों भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। दोस्तों, गंगाधर तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षक और पत्रकार थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन की नीतियों का निर्भीकता से विरोध किया और भारतीयों में आत्मसम्मान और स्वराज की भावना जगाई। उनका प्रसिद्ध उद्घोष स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, आज भी देशवासियों के भीतर स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति जागरूकता का संचार करता है। दोस्तों, तिलक जी का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए उसके नागरिकों में आत्मविश्वास, शिक्षा और एकता का होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से जन जन तक राष्ट्रीय विचारों को पहुंचाया और लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे आयोजनों को सामाजिक एकता और राष्ट्र भावना को मजबूत करने का माध्यम बनाया। दोस्तों, लोकमान्य तिलक जी का जीवन संघर्ष से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी कठिन परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। वे दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस के प्रतीक थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान का विषय है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे तिलक जैसे महान सेनानियों का त्याग और संघर्ष छुपा है। उनकी पुण्यतिथि हमें ये याद दिलाती है कि देश की स्वतंत्रता अनगिनत बलिदानों का परिणाम है और इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। दोस्तों, गंगाधर तिलक जी के विचार आज भी हम युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वे अपने ज्ञान, साहस और कर्मठता से राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और राष्ट्र प्रेम के साथ कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उनकी स्मृति सदैव भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की राह दिखाती रहेगी।

दोस्तों कार्यक्रम में चलिए अब बात करते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, क्योंकि आज है इनकी पुण्यतिथि। दोस्तों भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी का विचार है, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। दोस्तों, ये कथन अपने शब्दों के साथ बिल्कुल सत्य साबित है और इस तरह के व्यक्तित्व को हमें अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम युववाणी से अपनी रेडियो दोस्त रानी राष्ट्री को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: तो बहनों, आज आपसे कई विषयों पर बातचीत होगी, जैसे विश्व स्तनपान सप्ताह, पुरुषोत्तम दास टंडन जयंती और बाल विवाह के बारे में। तो बहनों, आप सब तैयार हैं प्रोग्राम सुनने के लिए? तो कुछ देर के लिए बैठ जाइए अपने रेडियो सेट के पास और सुनिए प्रोग्राम गृहलक्ष्मी। बहनों, देखिए, बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत समान होता है। इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरीके से होता है और बच्चा ठीक तरह से होता है, तो साथ ही साथ उसकी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ के द्वारा मनाया जाने वाला एक वैश्विक अभियान है और इसका मुख्य उद्देश्य शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और माताओं को समर्थन देना है। मैंने बच्चे के जन्म के तुरंत बाद यानी 1 घंटे के बाद बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए और यह बच्चे का संपूर्ण आहार होता है। इस सप्ताह का मुख्य लक्ष्य स्तनपान के महत्व को उजागर करना, बढ़ावा देना और साथ ही साथ विश्व भर में शिशुओं और माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करना भी है और इससे माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसे शुरुआती पोषण माना जाता है। बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। इससे शिशुओं की बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है यानी कि इम्यूनिटी मजबूत होती है और इसके अलावा माँ का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। बहनों, बातें और भी होंगी और देखिए, इससे ज्यादा जानकारी के लिए भेंट वार्ता सुनिए। विषय है स्तनपान माँ और शिशु के लिए वरदान। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर दिव्यांशी सोनी और उनसे बातचीत कर रही हैं बबीता बत्रा।
1: हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं। एक नवजात की पहली मुस्कान, उसकी पहली ताकत और उसकी पहली सुरक्षा, सब कुछ माँ के दूध से ही शुरू होता है। माँ बनना ही एक सुखद अनुभव है और अपने बच्चे को स्तनपान कराना उस अनुभव का सबसे सुंदर हिस्सा। स्तनपान माँ और शिशु के लिए वरदान। आज इसी विषय पर भेंटवार्ता करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्यांशी सोनी जी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। पहला प्रश्न है, स्तनपान का माँ और बच्चे दोनों के लिए क्या महत्व?
2: स्तनपान प्रकृति का सबसे संपूर्ण आहार है
1: जी।
2: हर बच्चा और माँ दोनों के लिए ये अत्यंत लाभकारी है। ये अगर हम बात करें महत्व की, बच्चे पे और माँ पे क्या लाभ होंगे। एक बच्चे के लिए स्तनपान तो संपूर्ण आहार है, वो उनकी रक्षा सुरक्षा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट से निकलता है, माँ की कोख से, और बाहर इतनी बीमारियां हैं, इतने इन्फेक्शन है, उनसे बचाने के लिए स्तनपान सबसे जरूरी होता है। एक संपूर्ण आहार है, पूरी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति कराता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बच्चे में, बिल्कुल इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ मस्तिष्क के विकास के लिए मदद करता है। और अगर माँ पे लाभ की बात की जाए तो प्रसव के बाद गर्भाशय जल्दी सामान्य आकार में आता है। यदि स्तनपान रेगुलरली करेंगे तो प्रसव के बाद जो गर्भाशय है वो अपने आकार में आ जाएगा। और उससे भी बड़ी बात कि माँ और बच्चे के बीच में एक प्राकृतिक रूप से संबंध और मजबूत होता है जी।
1: एक प्रश्न ये है कि जन्म के कितने समय बाद बच्चे को स्तनपान शुरू कर देना चाहिए?
2: देखिए, जन्म के 1 घंटे बाद जब माँ का एक पीला
1: गाढ़ा सा
2: दूध आता है जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो कोलेस्ट्रम एक मान के चलिए कि एक प्राकृतिक टीके की तरह काम करता है
1: जी।
2: ठीक है, तो बच्चा पैदा होने के 1 घंटे के ही अंतराल में बच्चे को स्तनपान, वो कोलेस्ट्रम वाला दूध देना आवश्यक होता है जी।
1: और नवजात शिशु के लिए माँ का पहला दूध वही कितना जरूरी है और कितने समय तक फिर बच्चे को मतलब फीड करना
2: जी? जी जी, देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पहला दूध यानी कोलेस्ट्रम बच्चे का पहला टीका माना जाता है। ये एंटीबॉडीज में भरपूर होता है
1: जी।
2: संक्रमण से बचाता है, बच्चे की आंतों को भी मजबूत करता है, पीलिया और कई शुरुआती बीमारियों का खतरा कम करने में भी मदद करता है।
1: अच्छा।
2: जी, अब ये बात रहेगी कितने समय तक केवल माँ का दूध देना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक घंटे के अंतराल में ही हमें शुरू कर देना चाहिए और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दें। माँ का दूध अपने में ही एक संपूर्ण पौष्टिक आहार है। 6 महीने तक में पानी की आवश्यकता नहीं है बच्चे को, घी शहद कोई भी, मतलब पानी भी नहीं देना है, दूध अपने में पर्याप्त है। और उसके बाद 6 महीने के बाद से आप गाय का दूध, टॉप फीड, जो भी आपको देना है आप वो दे सकते हैं। और 2 साल तक की उम्र तक या फिर उससे थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा, आप इतने समय तक दूध दे सकते हैं माँ का बच्चे को।
1: एक प्रश्न है।

0: एक स्तनपान से बच्चे की सेहत पर क्या-क्या फायदे होते हैं?
1: देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्तनपान से संक्रमण कम होता है, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बच्चे की बढ़ती है, मानसिक और शारीरिक विकास होता है, दिमाग और बेहतर विकसित होता है, एलर्जी का खतरा कम होता है और भविष्य में मोटापा और डायबिटीज जैसा खतरा भी कम हो सकता है
0: अच्छा
1: अगर स्तनपान
0: हाँ
1: कराया जाए।
0: और ये स्तनपान से क्या माँ के स्वास्थ्य को भी लाभ होता है?
1: बहुत बिल्कुल बहुत जरूरी सवाल है ये। स्तनपान से, जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रसव के बाद शरीर का जल्दी रिकवर होने में मदद करता है। उससे भी बड़ी बात, ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर जैसी बड़ी बीमारी जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है, स्तनपान उसको होने नहीं देता है। स्तनपान से ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव होता है।
0: बचाव होता है।
1: जी, टाइप 2 मधुमेह का जोखिम भी कम करता है स्तनपान।
0: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये है, अगर महिला किसी बीमारी से ग्रसित है, मान लीजिए कोई बीमारी है उसको, पहले से चली आ रही है, तो क्या वो स्तनपान करा सकती है?
1: देखिए, ये समझना जरूरी है कि बीमारी क्या है। अगर सामान्य बीमारी है, सर्दी जुकाम बुखार सीजनल है या फिर कोई एलर्जी है, तो स्तनपान कराने में कोई दिक्कत देखिए होती नहीं है। बिल्कुल आप करा सकते हैं, क्योंकि जो दूध है उसमें एंटीबॉडीज हैं, बच्चों को शुरुआती दौर में वो एंटीबॉडीज चाहिए ही चाहिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर माँ को बीमारी है किसी प्रकार की, लंबे वक्त तक जैसे आपने कहा चली आ रही है, तो एक डॉक्टर से सलाह मशवरा लेना बहुत जरूरी है। अपने मन से कोई भी दवा ना लें, डॉक्टर के सलाह मशवरा के बाद ही आगे प्रोसीड करें। तो किया जा सकता है, अगर सामान्य दिक्कतें हैं तो किया जा सकता है, स्तनपान कराया जा सकता है, पर अगर बड़ी लंबी दिक्कत है तो उसके लिए डॉक्टर को विजिट करना जरूरी है।
0: कई बार ये देखा जाता है डॉक्टर साहब कि माताओं को स्तनपान में जैसे दिक्कत आती
1: जी
0: है ना,
1: जी
0: जैसे दूध कम आना है, ऐसे में फिर क्या करना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहली बात तो घबराए ना। जब हम घबराते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमें लगता है कि दिक्कत है, वो दिक्कत और
0: बढ़
1: बढ़ी हुई
0: जाती
1: महसूस
0: है।
1: होती है। ठीक, तो अगर ऐसा लग रहा है कि दूध कम आ रहा है, पहले तो अक्सर ऐसा होता नहीं, अधिकांश मामलों में ऐसा होता नहीं है कि दूध कम आ रहा है। कभी कभी बच्चे की पकड़ ही अच्छी नहीं हो पाती है, बच्चा स्तन को पकड़ ही नहीं पाता है उस तरह कि वो दूध आ पाए। तो इसमें परेशान नहीं होना है, बच्चे को बार बार थोड़ा थोड़ा करके दूध पिलाएं, उसको सही पोजीशन पे रखें ताकि वो पकड़ पाए। थोड़ा बच्चे की भी ट्रेनिंग लगती है शुरुआती समय में ही, और अक्सर दूध आने लगता है, ऐसे कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं, किसी वजह से अब भी लग रहा है कि दूध कम आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ठीक है, और ज्यादा सोचे ना, अपने डॉक्टर से मिलिए और वो आपको सही सलाह देंगे, और परेशान नहीं होना है बस। जी
0: बिल्कुल। तो स्तनपान के दौरान माँ को अपने खाने पीने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हो सकता है खाना पीना ठीक ना हो तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर खान पान ठीक नहीं है तो इससे माँ की हेल्थ पे असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं फिर दूध का जो मात्रा है हो सकता है कम हो। ठीक है, तो खाने पीने का तो बहुत ही ध्यान रखना है, जितना बच्चे का ध्यान रखना उतना माँ का भी ध्यान रखना है। और खाने पीने के लिए माँ को संतुलित और पौष्टिक भोजन देना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम बात कर लेते क्या क्या आना चाहिए। इसमें दाल होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, फल होना चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए, सूप हो सकता है, पूरा साबुत अनाज, ये सारी जरूरतें हैं। पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, यदि किसी प्रकार का नशा वो करती हैं तो उसको बंद करना उस अंतराल में बहुत जरूरी है। बस बाकी ठीक है, स्तनपान के दौरान अगर खान पान अच्छा है तो माँ की भी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी और बच्चे की भी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी।
0: जी, एक अंतिम प्रश्न और है
1: जी
0: कि आज के समय में स्तनपान को लेकर
1: जी जी
0: कौन कौन सी गलत धारणाएं हैं?
1: पहला तो सबसे बड़ी गलत धारणा ये है कि पहला पीला दूध खराब होता है। सच्चाई ये है कि वो सबसे पौष्टिक और सुरक्षा देने वाला दूध है। दूसरी गलत धारणा है कि गर्मी में बच्चे को पानी देना जरूरी है, ये बिल्कुल ना करें। 6 महीने तक माँ के दूध में ही पर्याप्त पानी होता है, बच्चे को अलग से पानी देने की 6 महीने तक में जरूरत नहीं होती। तीसरा, दूध माँ के दूध जितना अच्छा होता है, जो टॉप फीड दूध होता है, वो माँ के दूध जितना अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। माँ का दूध का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और सबसे ज्यादा मतलब जो हमने देखा है, लोगों को लगता है कि सर्दी जुकाम है, जैसे हमने पहले बात की, तो उसमें दूध नहीं पिलाना चाहिए, आप बिल्कुल पिला सकते हैं। ये

0: बहुत बड़ी मिथ्या है, लोगों की गलतफहमी
1: हाँ
0: है कि हम नहीं दे सकते,
1: हाँ हम
0: पर
1: तो
0: दे
1: बीमार
0: सकते
1: हैं,
0: हैं
1: हम नहीं
0: हम,
1: दे रहे।
0: लेकिन दे
1: हाँ
0: सकते हैं। इतना आसानी से आप बच्चे को अपना इन्फेक्शन नहीं ट्रांसमिट कर सकते दूध के रास्ते
1: जी
0: से।
1: जी
0: तो ये कुछ है धारणाएं जो थोड़ा फैली हुई है, गलत है। लेकिन जी, और एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगी, बहुत एक गलत फहमी है लोगों को, कुछ परिवारों में, शायद कुछ माओं में, कि हम फीड कराएंगे, हम बच्चे को स्तनपान करेंगे तो हमारा जो शरीर है, शरीर की अवस्था है,
1: जी
0: बाहरी दिखावट जो है वो खराब होगी। पर ऐसा नहीं होता है।
1: जी
0: स्तनपान से बच्चे और माँ के बीच में जो संबंध है, जितना अच्छा और बढ़ता है,
1: जी
0: माँ उतनी और खुश रहती है और शरीर अपने में और खिल उठता है।
1: जी
0: तो उस पे कह लीजिए कि बाहर से देखने में और आप और खूबसूरत हो जाते हो। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। स्तनपान एक नवजात के लिए, एक माँ के लिए एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है।
1: जी तो आज की इस खास बातचीत से हमने जाना कि स्तनपान न केवल बच्चे के लिए बल्कि माँ के लिए भी बेहद लाभकारी है। हम सब भी मिलकर स्तनपान को बढ़ावा दें और नई पीढ़ी को स्वस्थ और मजबूत बनाएं। डॉक्टर दिव्यांशी सोनी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आपने भेंट वार्ता सुनी। विषय था स्तनपान, माँ और शिशु के लिए वरदान। और भेंट वार्ताकार थी डॉक्टर दिव्यांशी सोनी, और उनसे बातचीत कर रही थी बबिता बत्रा। तो बहनों, इस भेंट वार्ता के जरिए अच्छी जानकारी मिली, और देखिए बातें और भी होंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए ये संदेश।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मैनो, अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में। मैनो, पुरुषोत्तम दास टंडन जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राजनेता और हिंदी के महान सेवक थे। उन्हें हिंदी को देश की राजभाषा दिलाने और समाज सुधारक के तौर पे जाना जाता है। बहनों, पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जन्म 1 अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। उन्होंने इतिहास विषय से MA और वकालत की डिग्री यानी कि LLB भी किया। बहनों, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की, और हिंदी के प्रति उनके अपार प्रेम के कारण ही उन्हें राजश्री की उपाधि भी दी गई। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे और वर्ष 1950 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बहनों, देश और समाज के लिए उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। मैनू, ये तो बातें हुई पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में, और बहनों अब बात करते हैं सावन माह के बारे में। ये तो बहनों आप सब जानती हैं कि सावन का महीना आ चुका है, और इस महीने में बादलों का उठना, तापमान का गिरना और चारों तरफ फैली हरियाली ही हरियाली, और ठंडी हवाओं का चलना, मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहार मन को तरोताज़ा कर देती हैं। और सावन की यह बहार अपने साथ लाती है कई सारी कहानियां, कुछ पहलू। मैंने, मेरी एक सखी है शिखा, मैंने उससे सावन के बारे में बहुत कुछ सुना, और शिखा अक्सर तारीफ करती है कि सावन की अलग ही खास जगह है। सावन में जो खुशियां हरियाली लेकर आता है, और सावन का महीना तो देखिए हम सबको भी बहुत अच्छा लगता है। और शिखा बताती है कि पूरे महीने सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करती है, मंदिर में बेलपत्र और जल चढ़ाती है, और इससे शिखा को एक अलग तरह की शक्ति और प्रेरणा मिलती है। मैंने देखिए सावन के महीने में मेहंदी लगाना, झूला झूलना भी एक परम्परा है, और गाँवों में देखिए आज भी बहने झूला भी ज़रूर झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं, और साथ ही साथ कजरी भी गाई जाती है। मैंने देखे तीज त्योहारों का इंतजार तो हर किसी को

होता है और इस सावन महीने में महिलाएं खूब इंजॉय भी करती हैं, हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और कामकाजी महिलाएं भी इसे सेलिब्रेट करती हैं। दूसरे त्यौहार तो देखिए 2 या 3 दिन में ही बीत जाता है, लेकिन सावन का महीना पूरी 1 महीने तक होता है। और बहनों देखिए, सावन में चारों तरफ हरियाली लोगों को एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी देती है, जिससे मन को खुशी मिलती है। तो बहनों, जब बात सावन महीने की हो रही है, तो क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

मैंने गीत तो आपने सुन लिया, मनोरंजन भी हो गया और बिल्कुल माहौल भी ऐसा हो गया जैसे सावन का महीना है और सारी सखियां मिलकर के झूला झूल रही हैं, गीत गा रही हैं। लेकिन चलिए अब कुछ बातें हो जाएं बाल विवाह के बारे में। बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह हो रहे हैं और इसका सबसे बुरा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है और साथ ही साथ उनका भविष्य भी खराब होता है। और बाल विवाह होने से उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है और आगे चलकर क्या करना है ये भी नहीं समझ में आता, यानी फिर आगे चलकर रोजगार की समस्या और इसके बाद शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। तो बहनों, इसे रोकने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए और कानूनों का कड़ाई से पालन हो और समाज में सभी लोग जागरूक बने, तभी बाल विवाह रोका जा सकता है। बहनों, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होना गैर कानूनी है। बहनों, बातें अभी और भी होंगी, पहले सुनिए ये प्यारा सा गीत।

मैनू अब बात करते हैं महिला हेल्पलाइन नंबर के बारे में। 1090 इस नंबर पर कॉल करने से महिलाओं को छेड़छाड़, पीछा करने, अश्लील कॉल या मैसेज जैसी समस्याओं के लिए है 1090। अगर आप परेशान हैं तो 1090 पर कॉल करें। आपकी कॉल महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा अटेंड की जाती है, जिससे आप बिना झिझक के अपनी बात कह सकती हैं और इससे आपकी पहचान भी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। बहनों, इसी के साथ ही गृहलक्ष्मी प्रोग्राम का सफ़र बस यहीं तक। अगले प्रोग्राम में हम फिर हाजिर होंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो बहनों, इस सावन में आप खूब इंजॉय करिए और अब हमें दीजिए इजाज़त। चलते चलते सभी बहनों को साजिदा का नमस्कार।

अभी महिलाएं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुन रही थीं। FM 102.7 पर यह आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। अब भोजपुरी में समाचार होंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसाना न खेतिहर मजूरन के मेधावी लैकन खातिर चलावल जा रहल मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार कैले के निर्देश दिले हमें। एकरे तहत उजीफा राशि के 3,000 रूपया हर महीना से बढ़ा के अब 5,000 रूपया हर महीना कैल जाय। मुख्यमंत्री ई निर्देश काली लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल के बैठक में दिले। वहां के कहने की उजीफा के राशि बढ़ौले के साथ ही योजना से ढेर से ढेरी पात्र विद्यार्थियों के लाभ दिले की रूपरेखा तैयार कैल जाये। इस दौरान मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना और मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के समय 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2030 ले बढ़ौले के प्रस्ताव के मंजूरी दिहल गई। सतही वित्तीय वर्ष 2026-27 बदे करीब 3,025 करोड़ रूपया के बजट के सतही किसान कल्याण, किसान विपणन और मंडी व्यवस्था से जुड़ल प्रस्तावों के मंजूरी दिहल गई। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हवे कि अभद्र भाषा और नफरत से कोनो समस्या के समाधान नहीं होला। वहां के भटकल नौजवानन के प्रति सहानुभूति दिखावे के अपील कैली और कहली कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित के ध्यान में रखत उन्हें दंड देले के जगहें पर सही राह दिखावल जाए के चाहें। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट कल गई एगो वीडियो संदेशा में प्रधानमंत्री राजधानी के जंतर मंतर पर भइल हालिये के घटना के जिक्र कैले जहां उनके आ उनके दिवंगत माता बदे अपशब्द के प्रयोग कल गई रहल। वहां के कहने की घटना के देश और दुनिया के लोग दिखले हवे और समाज में एक तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है। बाकी बचपन सीखले गलती कैले आओ के सुधर लहु के एगो दौर होवे।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज सिद्धार्थनगर जिला के कपिलवस्तु में बुद्ध थीम पार्क और लाइट एंड शो का उद्घाटन कैले। इस शो के जरिए भगवान बुद्ध के प्रारंभिक जिंदगी या कपिलवस्तु से मानवता के दिहल गई करुणा और शांति के संदेशा के आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कैल जाये। इगो रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बुद्ध थीम पार्क नई पीढ़ी को भगवान बुद्ध के विचारों से जोड़ने के साथ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और उसे विकास का आधार बनाने के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। यह पहल क्षेत्र के पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसरों को भी गति प्रदान करेगी। समाचार प्रेस से अरुण।
0: संसद परिसर में संत के रूपरेखा बना के कैल गये विरोध प्रदर्शन के मामला में वाराणसी में संत लोगिन के ओर से दिहल गई तहरीर के आधार पर आज पुलिस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कैल गई। महंत बालकनाथ आरोप लगौले के संसद परिसर में संत लोगिन के रूप बना के राम मंदिर से जुड़ल मुद्दा पर कैल गये प्रदर्शन से सनातन समाज के धार्मिक भावना आहत भइल हवे। प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति के माहौल में कांवड़ जतरा निकालल जा रहल हो। प्रशासन की ओर से ढेर संख्या में श्रद्धालुओं के देखत उनके सुरक्षा सहूलियत बदे पुरहर इंतजाम कैल गइल बा। सावन के पहला सोमवार के जल चढ़ावे बदे आज जौनपुर के मड़ियाहू से कांवड़ियन के बढ़न जत्था मिर्जापुर खातिर रवाना भइल। उन्नाव में गंगा घाट पर पहुंच के श्रद्धालु गंगा में जल भर के बाबा बलखंडेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक कैले। वहीं वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर शिव भक्ति के सतही राष्ट्रभक्ति और जल संरक्षण के अनूठा संगम देखे के मिलल। कान्हे पर गंगा जल से भरल कांवड़ आहाते में तिरंगा लेके कांवड़िया हर हर महादेव के सतही भारत माता के जय के नारा लगौले। प्रदेश के पूर्वी इलाकन के कई जिलन में आज दोपहरिया बाद मौसम के मिजाज बदल गयी और हल्काहे बरखा भइल। मौसम विभाग आवे वाला 5 दिन ले प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकन के कई जिलन में गरज चमक के साथ हल्काहे बरखा भइले के संभावना जतौले हवे। वहीं पहाड़न पर हो रहल लगातार बरखा से गंगा नदी के जलस्तर उफान पर बा। फरुखाबाद में नरोरा बंधा से ढेर मात्रा में पानी छुड़ौले के नाते नदी के जलस्तर खतरा की चीना से ऊपर पहुंच गई बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
3: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए श्रोताओं आपको जानकारी दे दें हमारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास खास कार्यक्रमों के बारे में।

रात 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती, सुनिएगा रात 9:30 पर। पुरानी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में, समय होगा रात के 9:15 का। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत, सुनिएगा रात 8:30 पर। फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम सबरस, सुनिएगा शाम 7:31 पर।

ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम ग्राम जगत सुनेंगे शाम 6:10 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाड़ी, समय होगा शाम के 6:50 का, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। तो ये थी उन कुछ खास कार्यक्रमों की रूपरेखा जो हमारी इस सभा में प्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं, आइए आपको सूचना दे दें खोए हुए व्यक्ति के संबंध में। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रेया पत्नी सुमित निवासी मकान नंबर 2 प्रथम 167 ओबरा कॉलोनी ओबरा थाना ओबरा जनपद सोनभद्र जो दिनांक 16/7/2025 से लापता हैं। उनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 19 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, हुलिया गोरा रंग, गोल चेहरा, पहनावा है इनका लाल रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई।

0: सब पंचन के राम राम।
1: मुराओ भैया देखा तोहरो के राम राम और पंच भैया लोगन के भी राम राम हो।
0: राम राम भैया, पंचेते के डुगडुगी बजल। और बताओ भैया, देखा का हाल चाल बाटे?
1: भैया देखा हाल चाल तो सब ठीक है बा, काहे कि ये समय जो गांव गिराव में देखते हुआ का हाल चाल बा, काहे कि पानी बुनी बरसत नहीं बा, कहीं बरसत
0: हाँ
1: बा तो कहीं नहीं बरसत बा। ये में देखा उमस भरल गर्मी बढ़ल बा, ऐसने में हम लोगन के बहुत सजग और सतर्क रहने की जरूरत बा, काहे कि जब उमस बढ़ेला ना
0: हाँ हाँ
1: तो देखा ये में तरह तरह के बरबरामी होखे के डर रहेला।
0: बिल्कुल सही कहा हुआ भागेलु भैया। निश्चित रूप से भैया, देखा हम लोगन के जागरूक और सचेत रहले के जरूरत हुए। और ओकरे साथ साथ भैया, हम लोगन के जोन भी अपन काम हो गए, ओके भी आगे बढ़ेले के जरूरत हुए। और निश्चित रूप से भैया, देखा हम लोगन के आज विशेष दिन हुए, आज 1 अगस्त हुए। और 1 अगस्त के भैया, देखा 1 अगस्त 1920 के भैया, देखा महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के भैया, देखा शुरुआत कैल गेल रहले, जौन कि भैया देखा भारत के पहला जौन बाकी जन आंदोलन रहले, जेकर उद्देश्य भैया देखा अंग्रेज के साथ हर तरह के भैया देखा सहयोग बंद करके भैया देखा स्वराज के भैया देखा स्थापना करे के उद्देश्य रहले। और निश्चित रूप से भैया देखा एकरा में बढ़ चढ़ के पूरा भारत के लोग भैया देखा साथ देलन। और जौन भी सरकारी नौकरी रहले और जौन भी उपाधि देवल जात रहे उस समय, ओकर भैया देखा बहिष्कार के लोग, ओकरे साथ साथ भैया देखा सरकारी स्कूल कॉलेज और अदालत के भी बहिष्कार कर गेल। और जौन विदेशी कपड़ा भैया आवत रहले भगेलो भैया।

0: ओकर भी बिया देखा जला करके बिया देखा होली खेलल गेल, ओकर साथ साथ स्वदेशी व खादी वस्तु के बिया देखा उपयोग लावे पर जोर दहल गेल बिया।
1: भैया यही से कहल गेल बा ना कि देखा अगर कोनो काम करे के बाद तो जन सहयोग की आवश्यकता बा, तो
0: बिल्कुल
1: यही बात से हम लोगन के देखा आगे चलते रही,
0: बिल्कुल
1: लेकिन अपन सब कुछ समय से होके अपन जोन बातचीत बा ये जाने से पहले देखा कोई संदेश बा एके सुन लिया जाए तब फिर आगे जानकारी
0: एकदम
1: होके।
0: सुनल जाए भैया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मुराव भैया, देखा हम लोगों के संदेश भी सुनल गई।
2: बिल्कुल,
1: और आगे हम लोगों के बात कही शुरू हो जाए। काहे कि देखा जब बातचीत होत रहे कि असहयोग आंदोलन के शुरुआत 1 अगस्त 2020 के बात रहल, तो वही से मिलल जुलल बात देखा। एक अध्यापक हवन अरुण तिवारी भैया, इनसे अपन मुने भैया बातचीत कैले हवन कि गांधी जी के विचारों के युवाओं पर का प्रभाव बा, तो यह बात पर सुनल जाए।
2: बिल्कुल सुनल जाए भैया।
3: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से कहीं न कहीं हम सभी प्रभावित होते हैं, और वास्तव में जो गांधी जी के विचार थे उन पर युवाओं का क्या प्रभाव पड़ा, आज इसके बारे में हम जानेंगे। आज हमारी मुलाकात हो रही है प्राथमिक विद्यालय चकयां विकासखंड नगवां के अध्यापक अरुण कुमार तिवारी जी से, और आज अरुण जी से हम लोग जानेंगे कि वास्तव में गांधी जी के विचारों का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। अरुण जी नमस्कार।
4: जी नमस्कार भैया।
3: अरुण जी, ये बताइए कि आप शिक्षक हैं, तो शुरुआत इसी से करते हैं कि युवाओं की शिक्षा दीक्षा के बारे में गांधी जी के क्या दृष्टिकोण थे।
4: जी सुनील जी, मैं बताना चाहूंगा, गांधी जी उनका जो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण रहा है, उसमें उन्होंने अपनी बात रखते हुए ये कहा है, कहीं मैंने पढ़ा था उनका, कि शरीर मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास
3: जी
4: ही शिक्षा का उद्देश्य है। हम शिक्षा के द्वारा किसी भी बालक के अंदर ऐसी जो भी संभावनाएं हैं, वो जिस ओर जाना चाहता है, वो डॉक्टर बनने के लायक है कि इंजीनियर बनने के लायक है, या जिस भी क्षमता को लेकर के वो इस संसार में आया है, हम उसे इस प्रकार शिक्षित करें कि वह अपनी पूर्णता को प्राप्त कर ले और वो शरीर से मन से और अपनी आत्मा से पूर्ण हो सके। तो गांधी जी शिक्षा देने और शिक्षा प्राप्त करने के इस बात के पक्षधर हैं कि हम बच्चों को शुरू से ही इस ओर लेके चलें, ताकि वो अपने अंदर निहित पूर्णता की ओर जा सके।
3: जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अच्छा, युवाओं में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे हो, इस पर गांधी जी के क्या विचार थे।
4: जी ये बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है सर, और हम ये अवगत हैं कि जैसे देखिए हमारा राष्ट्र का विकास भी या राष्ट्र की जो संस्कृति है हमारी, ये निश्चित रूप से इसमें रहने वाले लोगों हम नागरिकों के द्वारा ही है। तो कहीं न कहीं युवाओं में उनके नैतिक पक्ष का जो विकास है, चाहे उसमें सारी चीजें समेकित हो जाती हैं, चाहे उनका चारित्रिक विकास हो, उनके अंदर जो भी नैतिक गुण हैं, दया भाव, करुणा, कर्तव्य परायणता, सहनशीलता, निष्ठा, ये सारी चीजें जो भी जितने भी मूल्य हैं हमारे, ये बिल्कुल उनके नैतिक पक्ष के विकास से ही सरोकार रखते हैं
3: जी।
4: और हम देखें आज की एक सड़क पे चलते हुए भी हम ये महसूस कर सकते हैं इस चीज को कि आज इसका कितना अभाव है
3: जी।
4: एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सड़क पे चल रहा होता है तो वो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता है, वो तुरंत ही दाएं से बाएं से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है, भले ही आगे जाकर के उसे अपने मंजिल पे अपनी यात्रा पूरी करके बैठे ही रहना हो
3: जी।
4: तो कहीं न कहीं ये असहिष्णुता की बात है और ये संस्कारों की भी बात है। तो निश्चित रूप से युवाओं का जो नैतिक

0: मगर उनकी जीवनी भी पढ़ें और
1: जी
0: तमाम छोटी छोटी घटनाएं जो उनकी जीवनी में उद्धृत है, तो उसमें हम देखेंगे कि बापू कैसे जो है आत्मनिग्रह की बात किया करते थे। वे दूसरे पर अपने विचारों को थोपने के पक्षधर नहीं है, स्वविवेक का निर्माण हो, स्वयं ही हम सही और गलत का निर्णय ले सकें और अपने मन पे, वचन पे, अपने कर्म पे, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों पे, यहाँ तक कि अपनी इंद्रियों पे भी अपना अनुशासन हो, इसके पक्ष में वे सदैव रहे हैं।
1: जी
0: और इस बात को हम इससे भी देख सकते हैं, जैसे घटना का जिक्र आता है कि कैसे कि बा जो कस्तूरबा थी वो उनके साथ ही रहती थी, और एक बार जो है पूज्य बापू जी ने किसी वैद्य की सलाह पे ऐसा कहा गया बा के लिए कि अगर वो कुछ दिनों के लिए नमक खाना छोड़ दें तो वे स्वस्थ हो सकती हैं। तो इस पर बापू ने उन्हें पहले नमक खाने के लिए नहीं मना किया, स्वतः ही कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। ये आत्मनिग्रह था, ये उनका स्व अनुशासन था। तो बापू जो है फोर्सफुली किसी भी बच्चे को, व्यक्ति को या युवाओं को ही, आप वो तो कच्चे मिट्टी के घड़े जैसे हैं साहब, अगर आप उन्हें बहुत दबाव देंगे, आप एक अभिभावक या एक शिक्षक के तौर पे चाहे कि हम उन्हें बहुत दबाव देकर और उन्हें अपने नियंत्रण में अधीन कर लें, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। वहाँ स्व अनुशासन, हम उन्हें ऐसा प्रेरित करें, इस ओर ले चलें कि बच्चे हमारे स्वतः ही सही और गलत का आकलन कर सकें और वो सही मार्ग, सम्यक मार्ग का चुनाव खुद ही करें। जी
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अच्छा, गांधी जी के जो आदर्श थे, तो उन आदर्शों में सत्य और अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
0: जी, ये तो बिल्कुल आपने जो है, जैसे कह लिया जाए कि जब भी बापू का जिक्र आएगा तो सत्य और अहिंसा उनके इन दो हथियारों का, एक तरह से यह उनके बिल्कुल ही सबसे बड़े अस्त्र हैं, और गांधीवादी दर्शन में अहिंसा का तो बहुत ही बड़ा, एक बड़ी भूमिका है। इसमें हम देखते हैं कि बापू का जो अहिंसा और सत्य से तात्पर्य है, वो कहीं न कहीं, हिंसा देखिए सर कई तरह की होती है, मानसिक हिंसा है, शाब्दिक या वाचिक हिंसा है, और कर्म आधारित हिंसा है। यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी जीव को उसका वध ही करें तभी हिंसा हो रही है। हम यदि किसी के प्रति दुराभाव रखते हैं, हमारे मन में जरा सी भी कोई किसी के प्रति, किसी का अनिष्ट करने का भाव जागृत हो रहा है, तो वहाँ भी हिंसा है।
1: बिल्कुल
0: इसी तरीके से यदि हम किसी को ऐसे कुछ दुर्वचन बोलते हैं जिससे कि उसको कष्ट, उसको ठेस पहुंचता है, तो इसमें भी निश्चित रूप से हिंसा हो रही है।
1: बिल्कुल।
0: तो पूज्य बापू ने इन सभी प्रकार की जो हिंसाएं हैं उनसे बचने की बात कही है, और मानव मात्र में ही ईश्वर दर्शन की बात कही है। एक मैं कोट यहाँ पे करना चाहूंगा पूज्य बापू जी के जो है दर्शन में, एक बात ये आती है कि सत्य कभी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो अनुचित हो। कोई भी अनुचित कारण है तो उसके लिए सत्य बिल्कुल हानिकारक नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरीके से जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, जहाँ हिंसा नहीं है वहीं जीवन है। तो हमें भी अपने जीवन में बापू के इन उच्च आदर्शों को जरूर आत्मसात करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और मैं तो आपके माध्यम से आज जो है इस कार्यक्रम में सभी अपने श्रोताओं को, अपने युवा साथियों को, शिक्षक भाइयों को, बहनों को ये संदेश देना चाहूंगा कि जरूर विद्यालय में आप अपने बच्चों में इन मूल्यों का विकास करें।
1: बिल्कुल अरुण जी, आज आपसे मुलाकात हुई और इतनी सारगर्भित बात हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।

0: मुराओ भैया देखा कितना बढ़िया हम लोगों के संदेश भी सुने के मिलल, और उससे बढ़िया उससे पहले देखा हम लोगों के जानकारी भी मिलल। अरुण कुमार तिवारी भैया जो उनके अध्यापक रहलन, और अपन मुनई भैया एकदम फरिया फरिया के पूछत रहलन और हम लोगों के जानकारी दिवौलन।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हुआ भागेलु भैया। और निश्चित रूप से भैया देखा आजादी के लड़ाई में भैया गांधी जी के भैया देखा बहुत ही बड़ा योगदान रहले, और लड़ाई के दौरान भैया देखा बहुत से जो बाकी आंदोलन छल, और वो आंदोलन भैया देखा असहयोग आंदोलन जगह हम लोगों पहले जिक्र के लिए वो महत्वपूर्ण रहले। और भैया देखा ये लगभग जो बाकी 1.5 साल तक भैया देखा चलल रहले, और 12 फरवरी 2022 के भैया देखा खत्म भई रहले, यानी 1 अगस्त 2000

0: 20 से 12 फरवरी 2022 तक भी यह देखा चल रहा है, और निश्चित रूप से भी यह देखा ये आंदोलन के प्रभाव यह देखा आम लोग पर पड़ल और आजादी के मजबूती और भी मिलल भी है।
1: तो यही से देखा जा कर के हम लोगों के आजादी मिलल, और जब आजादी मिल गई तो अब अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ावे के बाद हम तो कहा थे कि खाली खाली भैया लोगों के धन्यवाद नहीं देवे के बाद, तो अशरफी लाल और उनका संगतिया भैया के एक विकास गीत बा, ऐसे भैया लोगों के धन्यवाद दिहल जाए।
0: एकदम भैया सुनावे हम लोगों सुन जाए।

0: मुराओ भैया देखा कितना बढ़िया हम लोगन के असर फिलहाल उनका संगतिया भैया के एक विकास गीत सुने के मिलल,
1: बिल्कुल
0: और जब
1: बिल्कुल
0: गीत गौनाई हो जाला तो देखा फिर से हम लोगन के अंदर ताजगी आ जाला और फिर जानकारी के ललक हो जाला।
1: एकदम सही कहत हुआ बगेलो भैया, और मौसम के मिजाज भी देखते हुआ या देखा उतार चढ़ाव देखे के मिलत हुए, और अपने अंचल में भी या देखा कम बारिश के चलते भी या देखा धान के रोपाई भी प्रभावित होते हुए, और ऐसने भी या देखा जब हम लोग के भी या देखा जोन धान गेहूं मकई के जो पारंपरिक खेती बा वो भी या देखा जब प्रभावित होला तो हम लोगन के मन में जिज्ञासा होला कि भी या देखा हम लोगन के आय के और भी कोई स्रोत रहे, तभी या देखा हम लोगन के जोन आर्थिक क्षति होत बा वो देखा भरपाई होकर हो सकत रहे।
0: मुराओ भैया जब भरपाई के बात कहला तो देखा जौन एक योजना बा जौन की मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना, तो एक अपना करके भी हम लोग अपन जौन आमदनी के जरिया बना सकेला और अपन जो भरपाई करे के बात कहला
1: हाँ
0: ओके अपना सकेला। तो देखा एहमे किसानन के आय बढ़ावे में ना जौन बाग बगीचा के बात रहेला
1: हाँ
0: तो ओकर से भी अपन कर सकेला, और वो हमें देखा सब्जी बा मसाला बा फूल बा और ओकरे साथे साथे देखा औषधीय खेती करके ई सब के से अपन भरपाई कर सकेला।
1: एकदम सही कहा था बगेलो भैया, ओकरे साथ साथ पाली हाउस के भी लगा करके हम लोगन हर तरह के सब्जी हर मौसम में भी देखा उत्पादन कर सकेला, और एकरा खातिर भी देखा हम लोगन के सरकार के तरफ से कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर हो गेल, पावर टीलर हो गेल और स्प्रिंकलर हो गेल, एकरे आदि जोन बाकी और तरह के जोन उपकरण हुए कृषि से संबंधित भी देखा ओकरे खरीदारी पर भी देखा राज्य सरकार के तरफ से भी 60% भी देखा अनुदान भी दहल जाते हुए, और जौन भी लोग ये योजना के लाभ लेवल चाहते हुए वो भी देखा अपन जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकलन, या भी देखा जौन भी अपने नजदीकी CSC केंद्र बा वहाँ पर जा करके भी देखा ऑनलाइन पंजीकरण भी देखा कर सकलन, जौन की उद्यान विभाग के पोर्टल हुए ओकरा पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकलन, और जौना के भी आवेदन करे के बाद एकदम भी देखा आसान तरीका हुए अपने आधार कार्ड लेकर के जाए, पासबुक लेकर के जाए और अपन जमीन के कागजात लेकर जाए, यह देखा तुरंत भी देखा अपन अनुदान के पात्र हुई हैं और ये सब योजना के लाभ ले सकत
0: और
1: हुई
0: ओकरे
1: हैं।
0: साथे साथे देखा भैया अपन जोन फोटो होला हो वो फोटो भी लेके जाए के बा और मोबाइल नंबर जरूरी होखेला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम तक अब के भी देखा मौसम के जब बात होते रहे तब यह देखा मौसम विभाग के तरफ से भी हम लोगों के जानकारी मिलत रहला, और निश्चित रूप से भी देखा आज भी शिव मंगल सिंह जो उनकी तकनीकी मौसम वैज्ञानिक BHU से हुए अपन मुनई भैया के का जानकारी बतौले हुए मौसम के बारे में एकदम सुनल जाए भैया।
2: किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बारी से जुड़ल है और खेती बारी में मौसम का बहुत बड़ा अहम भूमिका है और मौसम पर ही हम लोगन का खेती बारी आधारित होलय, और शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक अपन मौसम कैसन रही एकरे बारे में आज देखें हमार संपर्क हो गल बा शिव मंगल सिंह साहब से जौन की तकनीकी अधिकारी मौसम वैज्ञानिक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भू भौतिकी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हम, और आज आपसे ही हम लोगन जानब कि आवे वाला 4 दिन मौसम का कैसन रही। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार किसान भाइयों। अगर हम अगले 3-4 दिनों की बात कर लें तो मौसम पूर्वानुमान के आधार पर आने
2: जी
3: वाले दिनों में जो है बादलों की आवाजाही बनी रहेगी,
2: जी जी
3: जिसके परिणाम स्वरूप जो है कहीं कहीं हल्की बारिश का भी
2: जी
3: अनुमान लगाया जा रहा है, और ऐसे में अगर हम तापमान की बात कर लें तो अधिकतम तापमान की जो सीमा रहने वाली है अगले 3-4 दिनों तक वो है 31 से लेके 33 डिग्री सेंटीग्रेड, और
2: जी
3: न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।

0: है,
1: जी
0: और ऐसे में हवा की गति की बात करें तो वो सामान्य से अधिक ही रहेगी,
1: जी
0: और सापेक्षिक आर्द्रता की बात कर लें तो वो अधिकतम जो है 90+ रहेगा। देखें किसान भाई लोग, अगर बरसात अच्छे से ना ही होत बा,
1: जी
0: रोपाई आप लोगों का प्रभावित होत बा, तो उमन भाई पानी की व्यवस्था, जैसे कि अगर भगवान थोड़ा बहुत बरसत बहन मान लो, अभी अनुमान भी बाकी थोड़ा बहुत बारिश हुई अभी अगले 2-3 दिन में,
1: जी जी
0: तो उकरे बदे किसान भाई मेड़बंदी बहुत अच्छे से करें अपने खेत में, और जौने खेते में रोपाई हो गल बा वो खेते में किसान भाई जो हो खरपतवार के नियंत्रण करे के उपाय अपनावे,
1: जी जी
0: और जैसे कि झुलसा रोग हो गल, ब्लास्ट हो गल के लक्षण दिखे तो उचित दवाई का प्रयोग करें, खासकर ये धान के बाद बताओ थी भैया।
1: जी
0: और
1: जी
0: अगर मक्का की बात करें तो भाई मक्का में हल्का फुल्का बारिश होता तो भाई जल निकास की व्यवस्था तो करेगी पड़ी,
1: जी
0: और
1: जी
0: साथ में ही अगर तना छेदक कीट के प्रकोप बढ़त बा तो ओकर आवश्यकता अनुसार जौन नियंत्रण के उपाय हो
1: जी जी
0: रोग रोग व्याधि बदे भाई किसान भाई ओकरे बदे करें, और यही सही अरहर में भी किसान भाई विशेष ध्यान दे कि पीला मोजैक रोग और कीट का नियंत्रण का
1: जी
0: निगरानी करत रहें, और ये सब खेतर में जो है हल्की निकाई गुड़ाई और पौधों के मजबूत बनाव का तरीका जो है ओके अपनावें।
1: जी
0: और पशुपालन के बारे में अगर बात करें भैया तो पशुओं के जो है सूखा स्थान पे रखें तो ज्यादा बढ़िया बा, और जैसा कि हम आपसे पिछली बार भी बताए रहे कि किसान भाई के कि पशुओं के जवन इसमें चारा खियाओ तो भैया ना बरसात में का होला कि भीग जाला है,
1: जी
0: तो अगर थोड़ा सा लापरवाही करिए तो किसान भाई जो हो उनकर पशु जो हो बीमार हो जाए
1: जी
0: तो ओकरे बदे परेशानी उठाओ पड़े किसान भाई के, ऐसे पशुओं के भी विशेष ध्यान देवे की जरूरत भैया।
1: बिल्कुल एकदम सही बात कहत हुआ डॉक्टर साहब। जौन अपन किसान भाई लोग हुआ ये जानकारी से जरूर लाभ उठाई हैं। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।
1: मुराओ भैया
0: अकेलो
1: देखा
0: भैया
1: कितना बढ़िया हम लोगों के मौसम के बात जानकारी हो गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम तक आपके भैया देखा बिना देर के लिए भेंट वार्ता क्रम में हो, बागवानी प्रबंधन कैसे करें एकरे बारे में डॉक्टर संजीव कुमार राय जो उनके कृषि वैज्ञानिक KVK सोनभद्र के हुए अपन मुनई भैया से बातचीत हुए वो के सुनल जाए भैया।
1: किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बारी से जुड़ल है, हम लोगन खेती के साथ बारी का बात करीला। देखें बारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने किसान भाई लोगन बदे तो अत्यंत आवश्यक है, काहे से कहल जाला कि खेती बारी और गोरुवारी तीनों का सामंजस्य हम लोगन के अपने खेती किसानी में कहीं ना कहीं बैठावे के चाहिए। इस समय देखें बरसात का मौसम चलत है, जगह जगह वृक्षारोपण होता, अपन प्रदेश सरकार भी वृक्षारोपण के तहत एक अभियान चलो लेवा, और प्रत्येक ग्राम सभा में प्रत्येक किसान भाई लोगन के खेत के मेड़ पर कहीं न कहीं वृक्षारोपण होता। देखें इस समय हम कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र में है और यहाँ हमार मुलाकात हॉर्टिकल्चर वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार राय साहब से होइगल, और आज आपसे ही हम लोगन जानब कि बागवानी में खास तौर से हम लोगन काका सामयिक देखभाल करी जो पेड़ पौधा इस समय लगत था उनमें कौन कौन ध्यान रखी, तो आज हम लोग ये बात ये जानकारी डॉक्टर साहब से लेब। डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: डॉक्टर साहब तो जौन अपन किसान भाई लोग पेड़ पौधा लगावत हवा तो पेड़ पौधा लगावे में कौने कौने बात का वो प्रमुख रूप से ध्यान रखें।
2: किसान भाइयों आप सभी का स्वागत है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ। अगर बागवानी प्रबंधन की बात करें
1: जी
2: तो जैसा कि अगर हम एक योजना बना रहे हैं कि जो है हमको बागवानी करनी है
1: जी
2: तो सबसे पहले योजना बनाने से पहले हमको जो है स्थान का चयन जो कि सबसे महत्वपूर्ण है उसका करना बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर हम स्थान का चयन करने के बागवानी के लिए अगर बात करें स्थान चयन का तो वो कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो स्थान हो वो रोड के किनारे हो जिससे आवागमन की जो है व्यवस्था हो।
1: जी
2: और दूसरी बात यह है कि जो है आपका जो मार्केट है वो नजदीक हो और दो तीन बातों का ध्यान यदि देंगे तो आगे जो है हमें बागवानी करने में कोई जो है समस्या नहीं होगी। अच्छा, इस प्रकार जो है हम अब आगे बढ़ते हैं कि अब पौध

0: रोपण के लिए क्या क्या
1: जी
0: हमको सावधानियां बरतनी है और क्या क्या प्रक्रिया अपनाना है।
1: जी
0: जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जुलाई का समय है, तो अब इसके पहले की जो तैयारियां मेरे ख्याल से जो किसान भाई बागवानी करना चाह रहे होंगे या उन्होंने योजना बनाई रही होगी, तो जून के महीने में उन्होंने गड्ढे खोदने की तैयारी जो है वो कर ली होगी।
1: बिल्कुल सर।
0: तो उसके बाद की प्रक्रिया मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे गड्ढा आपका तैयार है,
1: जी
0: ठीक है, गड्ढा तैयार करने के बाद जो है 15-20 जून के बीच में मेरे ख्याल से गड्ढा तैयार होगा आपका। फिर उसके बाद जो है आप गड्ढा भरने की तैयारी करेंगे।
1: जी
0: अच्छा, गड्ढा भरने की तैयारी, भरने और गड्ढा खुदाई के बीच में जो समय होता है वो मान लीजिए कम से कम आप 20 से 25 दिन का जो है आप समय रखेंगे।
1: जी
0: अच्छा, उससे क्या होता है, गड्ढा अगर एक बार हमने खोद दिया उसके बाद 20-25 दिन का समय हम इसलिए देते हैं
1: जी
0: कि जो है अगर जो मिट्टी जो होती है वो जब हमने गड्ढा की खुदाई कराई तो वो नीचे की मिट्टी हमने ऊपर किया। अच्छा,
1: जी
0: इससे क्या हुआ, जब ऊपर करने पर और धूप उसमें लग रही है तो जो हानिकारक जीवाणु या कीटाणु हैं, उनके अंडे हैं, लार्वा हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। एक
1: जी
0: प्रकार से हमारी जो है वो मिट्टी जो है गड्ढे से जो निकली हुई है वो जो है उपचारित हो जाती है प्राकृतिक तरीके से। अच्छा, उसके बाद जब हम ये ठीक है, इतना करने के बाद जब हम गड्ढा भरने की तैयारी करेंगे तो उसके पहले एक चीज़ और ध्यान देंगे कि हमने जो गड्ढा खुदवाते समय ऊपर की मिट्टी को हमने एक साइड में रखा है और नीचे की मिट्टी को दूसरे साइड में रखा
1: जी
0: है। अच्छा, इसलिए ये करा जा रहा है कि जो है ऊपर की मिट्टी वो उर्वर मानी जाती है अपेक्षाकृत नीचे की मिट्टी
1: जी
0: से। अच्छा, जब गड्ढे की भराई हम करेंगे तो उसमें ध्यान देंगे कि जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद, और अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे किसान भाइयों, इसमें जो है दीमक का प्रकोप होने की संभावना बहुत ज्यादा
1: जी
0: रहती
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो उसके लिए अब हम जो है जैविक कीटनाशी प्रबंधन की बात करेंगे। तो इस समय जो है बिवेरिया बैसियाना जो कि ये जैविक कीटनाशी है, तो ये जो है मार्केट में और गवर्नमेंट संस्थानों में बहुत आसानी से उपलब्ध है और बहुत
1: जी
0: सस्ता है और बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये जैविक है तो इसका जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और तो इसका उपयोग यदि हम गड्ढे जो ऊपर वाली मिट्टी है उस मिट्टी में हम ये बिवेरिया बैसियाना मिला देते हैं,
1: जी
0: और कवक जनित रोगों के रोकथाम के लिए ट्राइकोडर्मा मिला देते हैं,
1: जी
0: और सड़ी हुई गोबर की खाद मैंने बताया आपको, ये इतना चीज यदि आप जो है ऊपर वाली मिट्टी में मिक्स करके उसके बाद आप ऊपर वाली मिट्टी को गड्ढे में पहले डालेंगे,
1: जी
0: उसके बाद जो है जो नीचे वाली मिट्टी थी उसको ऊपर आप डालेंगे। गड्ढा आपने भर दिया,
1: जी
0: गड्ढा भरने के बाद आप जो है एक निशान लगा देंगे उस पे, क्योंकि गड्ढा भरने के बाद ये पता नहीं चलेगा कि हमारा गड्ढा किस किस जो है दूरी पे कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि दूरी डिस्टेंस आपने पहले से मेंटेन करी होगी, वैरायटी के हिसाब से फसल की किस्म के हिसाब से आपने पहले से उसको जो है सुनिश्चित किया होगा कहाँ कहाँ है। तो गड्ढा भरने के बाद आप हमें उस पे चिन्ह लगा देंगे, जैसे कोई लकड़ी गाड़ देंगे उस पे,
1: जी
0: तो ये होगा कि जब हम रोपण करेंगे पौधरोपण तो इससे हमें आसानी रहेगी कि ये किस जगह पे हमारा गड्ढा है, तो
1: जी
0: इसमें जो है आसानी रहेगी। तो इस प्रकार हमने गड्ढे जो है खोदने और भरने की तैयारी जो है कर ली है। अब उसके बाद जो है अब हमने जो है पौधे जो भी हमने व्यवस्था करी उसके बाद पौधे लाए हम, और पौधे का रोपण करते समय एक चीज ध्यान देंगे किसान भाइयों, ये जो पिंड ध्यान देंगे पौधे लाते समय बहुत ही सावधानी का जो है बरतना होगा, पौधे का पिंड जो है वो टूटना नहीं चाहिए।
1: जी
0: तो ये बहुत, चूंकि आजकल नर्सरी वालों ने बहुत अच्छा प्रबंधन करके रखा है कि पिंड के ऊपर उन्होंने जो है क्या कहते हैं पॉली बैग में ही जो है वो पिंड रहता है तो फूटने की संभावना कम रहती है। लेकिन किसान
1: जी
0: भाई अगर सावधानी से आवागमन की व्यवस्था के समय अगर सावधानी बरतेंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो उसको लाएंगे और उसके बाद जो है जो पॉली बैग रहेगा बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको हटाएंगे कि जो उसका पिंड रहेगा वो फूटने ना पाए।
1: जी
0: फिर उसके बाद जो आपने पहले से चिन्हित किया है ये लगाने का जो गड्ढा आपने भरा था उस जगह पे

0: ऐसे निशान बना रखा आपने, जो है पौधरोपण कर दीजिए आसानी से। अच्छा, जो गड्ढा आपको अब खोदना है पौधरोपण के लिए, ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों, अब आपको जो आपका ये पिंड है उसी साइज का गड्ढा आपको खोदना है। खोदने के बाद अच्छी प्रकार से आप जो है उसमें मिट्टी जो है जो
1: जी
0: आपने निकाला उसको बढ़िया से भर दीजिए। यहाँ पे भरते समय एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, वायु का संचार अंदर तक ना होने पाए जो है पौधों के जड़ों तक।
1: जी
0: तो इसके लिए मिट्टी बहुत अच्छे से जो है दबा दीजिए जिससे वायु का संचार ना होने पाए। तत्पश्चात आप जो है उसमें पानी जो है दे दें। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप जो है पौधरोपण कर दीजिए।
1: डॉक्टर साहब, ये बताओ कि जैसे अपन किसान भाई लोग जैसे पौध लगाए दिलें, तो पौध लगौले के बाद कौने कौने बात का ध्यान रख सका ना?
0: सबसे पहली बात देखना है कि जो ये नर्सरी वाले पौधे होते हैं, किसान भाइयों जैसे हम अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जो है नर्सरी वाले जो पौधे होते हैं उस स्टेज पे उसी प्रकार उनका ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जरा से भी लापरवाही वो जो है पौधों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अच्छा, इस एक तो बदलते मौसम में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि कैसे जो है हम उसका जो है इस प्रकार से प्रबंधन करें ताकि जो है हमारा ये नर्सरी वाला पौधा जो है बहुत अच्छे से सरवाइव करे।
1: सुखा
0: तो
1: ना पावे।
0: हाँ,
1: डॉक्टर
0: बिल्कुल
1: साहब,
0: बिल्कुल
1: जवन अपन किसान भाई लोग हम पौधा का देखभाल तक करबे करिए। अच्छा, चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन के का सहेजल चाहिए, उनके का सलाह देवल चाहिए?
0: जी। किसान भाइयों, बागवानी प्रबंधन में सबसे बड़ी बात यह है कि जो है नर्सरी आपके पास हो गई तो फसल सुरक्षा की बात अगर करेंगे हम, तो चूंकि कीटों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है,
1: जी
0: जो कि आम के केस में देखा जाए तो सबसे जो एक रोग होता है मैंगो माल फॉर्मेशन है, वो नर्सरी स्टेज पे रहने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो
1: जी
0: किसान भाई उसका प्रबंधन आप पहले जो है करेंगे, अगर नर्सरी स्टेज पे जो है होता है तो आप जो है उसका प्रबंधन उचित तरीके से जो है मैंगो माल फॉर्मेशन का करेंगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखें आज आपसे संपर्क भर और इतना बढ़िया जो पौध रोपण के बारे में जानकारी मिलल, ऐसे अपन किसान भाई लोग जरूर लाभ उठाइए। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मुराहू भैया, देखा हम लोगन के तरफ से भी धन्यवाद बा, काहे कि इतना बढ़िया जानकारी बागवानी प्रबंधन के बारे में हम लोगन के मिलल,
2: बिल्कुल।
1: और ये तरीके से हम लोगन के भी अपन बाग बगीचा साग सब्जी खेती बाड़ी में करे के बा। तो हम तो कहते हैं कि भैया के धन्यवाद दिले जाए, लेकिन तोहरे हाथ में पाती लगल बा कौने बाजार के बा।
2: एकदम भैया, घोरावल से अपन इंद्रासन भैया तरकारी के भाव भेजले हुगन। अब पसेरी में हुए भैया बाचत है ओके। आलू भैया देखा 30 से 35 रुपया पसेरी, प्याज 130 से 150 रुपया,
1: अच्छा,
2: टमाटर 140 से 160 रुपया पसेरी, लहसुन 400 से 450 रुपया, बैगन नल्ले 80 से 90 रुपया पसेरी, लौकी 45 से 50 रुपया, नेनुआ 75 से 80 रुपया पसेरी, खीरा 85 से 90 रुपया, पालक 100 से 110 रुपया, मूली 60 से 65 रुपया, और मिर्चा रहले 350 से 370 रुपया पसेरी, और धनिया भैया बाजार टाइट रहले 500 से 550 रुपया पसेरी,
1: अच्छा,
2: करेला 180 से 200 रुपया, कुनरू 90 से 100 रुपया, बोड़ा रहले 130 से 140 रुपया पसेरी, परवल 170 से 180 रुपया, मकई रहले भैया देखा मक्का हो 75 से 80 रुपया, कोहड़ी 40 से 45 रुपया, कटहल रहले 140 से 150 रुपया, और नींबू रहले 200 रुपया प्रति सैकड़ा। ये रहे अपन घोरावल के बाजार भाव। इंद्रासन भैया के भी धन्यवाद बा, क्या कि बाजार भाव हमेशा भेजत रहलन, और निश्चित रूप से भैया देखा हम लोगन के बाजार भाव के जब बात आवेला तो निश्चित रूप से जब बाजार भाव बढ़िया मिलेला तो हम लोगन के खलीता भारी रहला और मन भी हरियर रहला
1: तो
2: भैया।
1: भैया देखा, मन हरियर रखे खातिर हम लोगन के भी कुछ अपन खेती बाड़ी पर ध्यान दिहले के जरूरत बा,
2: बिल्कुल
1: काहे कि देखा कुपोषण में सहायक जोन हम लोगन के मोटा अनाज बा, एकरे और भी हम लोगन के ध्यान बढ़ोले के जरूरत बा, काहे कि जब हम लोगन के शरीर स्वस्थ रही और शरीर स्वस्थ रखे खातिर हम लोगन के माटी के भी स्वस्थ रखब जरूरी बा,
2: बिल्कुल
1: और चारों ओर से जब हम लोगन के माटी स्वस्थ रही आप तब जौन भी अनाज हम लोग ओमे उत्पादन करब भैया वो स्वस्थ रही, और जब ओकर हम लोग खाएब तो अपन शरीर भी स्वस्थ रहे।
2: बिल्कुल सही कहते हो भगेलू भैया, और निश्चित रूप से मोटा अनाज में भैया देखे भरपूर मात्रा में पोषक तत्व रहेला।

0: और निश्चित रूप से भैया देखा हम लोगन के अपने खेत में मोटा अनाज के भैया देखा रकबा बढ़ावे के चाहिए और अपने खान पान में मोटा अनाज के शामिल करके अपने निरोग रहे और अपने घर परिवार के साथ अपने लैकन बचवन के भी निरोग रखे में मोटा अनाज सहायक हुए तो निश्चित रूप से खेती हम लोगन के एकर करे के चाहिए।
1: भैया देखा जब निरोग के बाद कहला तो एक बात हम और पंच भैया लोगन के कहत है कि जब निरोग रखे के बाद तो पहले अपन माटी के स्वस्थ रखा, माटी स्वस्थ रखे खातिर देखा हम लोगन के रसायन से धीरे धीरे नाता तोड़ले के जरूरत बा और जैविक खाद गोबर खाद हम लोगन से नाता जोड़े के बा। तो यही बात के साथ अपन जोन बाना अब पंचायती के बेला बखत हो ही गेल बा धीरे धीरे।
0: एकदम भैया पंचायती की बेला बखत हो गई हुए और कल फिर भैया देखा हम लोगन के यही समय मुलाकात हुई नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए भैया सब पंचन के राम राम, राम।

0: अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे थे। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाड़ी, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद।
1: रेनू बहनी,
0: हाँ विनय भैया।
1: देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम पंच बहुत उम्मीद लगाई थे अपनी फसल से ने कि हमार फसल खूब अच्छी पैदा हुई। हम मेहनत करे थे, खाद डाले थे, पानी डाले थे, उकी जो रोग कीट से रक्षा करे थे, लेकिन कहूं न कहूं देखा जाते कि कोनो दैवी आपदा आए गए या कहूं सूखा पड़ गया, तो अपन जन फसल का मनमाना परिणाम होते हुए हम पंचन के ना मिलत है।
0: बिल्कुल सही कहो विनय भैया, लेकिन यही स्थिति परिस्थिति से बचे खातिर जो है हम का सबका सरकार एक बहुत अच्छी योजना दीस है, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इके तहत जब वो हमारे कोनो ऐसी परिस्थिति आ जाते हैं या
1: हाँ
0: फिर हम पंचे जैसे आपन जो है बीमा कराए रही थे,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: हम पंचे कोनो तरह के दुर्घटना पर कुछ होए पर जो है हम पंचे उससे बाहर निकल पाई थे, तो इतना जब अगर हमारे फसल भी कोने आपदा में है इतना से जो है खराब हो जाते हैं, तो जो ये बीमा रहते है उनका पूरा कवर करते है, मतलब हमका पूरा क्लेम मिल जाते है उके।
1: बिल्कुल। और इससे फायदा ये होता है कि जो अपन नुकसान होते कि भरपाई होते, साथ में जो अपन अगली तैयारी होते वह मजबूत हो जाते। और सबसे बड़ी बात है जो बार बार कहा जाते कि खेती किसानी एक बड़ा खतरे का काम है, बड़ा जोखिम का
0: जोखिम
1: काम
0: का
1: है,
0: काम।
1: तो वो जोखिम भी जो है सरकार कवर कर देते हैं, तो किसान के एक तरह से मतलब रक्षा हो जाता है आर्थिक
0: बिल्कुल,
1: रूप
0: मतलब
1: से।
0: पूर्ण सुरक्षा समझ लो
1: हाँ
0: मिल
1: बिल्कुल।
0: जाती है।
1: क्यों बताओ कि अगर
0: हाँ
1: पंच भाई फसल बीमा करावा चाहते हैं तो फिर का कुछ रकम को उनका जमा करे, पत्र जमा
0: बिल्कुल
1: करे पड़ते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: भैया, खरीफ फसल की बात करी जाए तो जोन कुल बीमा राशि होते है भैया उके जोन है केवल 2% प्रीमियम जोन है किसान देते है, और अगर रबी फसल की बात की जाए तो कुल बीमा राशि के 1.5% प्रीमियम देते हैं किसान भाई लोग, और अगर वाणिज्यिक और बागवानी जैसी फसलन की बात करी जाए तो इस पर 5% जोन है प्रीमियम हमका सबका देखो थे, बाकी का खर्च जोन है वो सरकार वहन करत है।
1: लेकिन इके लिए बहुत जरूरी बात है कि आप अपने जो बैंक है उमा अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना है तो आप जाए के यहाँ बैंक के प्रबंधक से संपर्क कर सकते हो कि भैया हमारा फसल बीमा हो के यहाँ है। लेकिन कईयों बार होते हैं कि कई मनई चाहते हैं कि हम फसल बीमा ना करीबा, तो ओहू के लिए आपके यहाँ अगर ऐसा है तो आप बैंक में जाके यहाँ एक बार आपके यहाँ प्रबंधक से मिलके यू मना करे परी कि हम फसल बीमा ना करेगा। लेकिन हम तो कहे थे कि भैया मना कोई ना करो, सब लोग कराओ, ज्यादा से ज्यादा कराओ, क्योंकि बहुत मामूली प्रीमियम जी का कहते हैं बीमा राशि के जो किस्त हो तो के आधार पर आपके यहाँ एक बड़ा जो है मिल जाते का पैसा वापसी, फसल नष्ट होते, तो इका जरूर कराओ। और अति महत्वपूर्ण योजना है। और भैया एक चीज और जान लो कि चाहे जितनी महत्वपूर्ण योजना सरकार की हो, जब तक हम सबकी भागीदारी नहीं होते तब तक योजना
0: योजना
1: अपने,
0: सफल नहीं हो
1: हाँ अपने
0: पावत है।
1: लक्ष्य तक नहीं पहुंचते।
0: बिल्कुल, तो अगर सरकार बहुत कुछ हमारे खातिर सोचे है लेकिन अब हम जागरूक ना हो बे, तो भाई देखो कहूँ ना कहूँ फिर जो है वो हम कहित जरूर है लेकिन वो सफलता हमार हो जाती है ना।
1: बिल्कुल
0: तो हम पंचे उस सब योजना का फायदा ले, लाभ उठाई और अपने आप का और अपनी फसलन का सुरक्षित करी।
1: लेकिन रेणु बहनी एक बात और है कि हम पंच लाभ उठाई तो इसके लिए हमका जानकारी भी पूरी होगा चाहिए।
0: बिल्कुल हो
1: और जो
0: चाहिए।
1: जानकारी होते हैं और खास करके जो आज के बहुत महत्वपूर्ण खबर होते हैं वह अपने कार्यक्रम में हम लेकर आए थे, तो देखो आज के खबर अपने कार्यक्रम में है, इका जाना जाए।
2: किसान भाइयों प्रस्तुत है आज की खबर। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने 16 अगस्त से शुरू होने वाली खरीफ 2026 ई खसरा पड़ताल की सभी तैयारियां समय से पूरी करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य पूरी संवेदनशीलता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा ले रहे थे। बैठक में उन्हें बताया गया कि प्रदेश में अब तक 2.45 करोड़ से अधिक किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण हो चुका है, जो केंद्र सरकार के लक्ष्य का 85% है। गाजियाबाद और रामपुर ने लक्ष्य के अनुसार 100% पंजीकरण पूरा कर लिया है। मुख्य सचिव ने खरीफ 2026 डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी ई खसरा पड़ताल की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को सर्वेयरों का चयन, प्रशिक्षण और कार्य आवंटन समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अभियान निर्धारित समय पर सुचारू रूप से शुरू हो सके। बैठक में नंद बाबा दुग्ध मिशन की समीक्षा करते हुए एसपी गोयल प्रत्येक गांव में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। अगस्त में सभी जिलों में दुग्ध कॉन्क्लेव भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की नियमित निगरानी, प्रभावित परिवारों को समय पर राहत सामग्री उपलब्ध कराने तथा जिलाधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए और राहत कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न हो। किसान भाइयों, ये थी आज की खबर।
1: देखो रेणु बहनी, कहा जाता है कि खेती किसानी और पशुपालन ये एक ही गाड़ी के दो पहिया है, क्योंकि अगर एक स्वस्थ है तो दूसरा स्वस्थ है, और अगर एक स्वस्थ ना है तो दूसरा भी जो है ठीक ना चली,
0: ठीक ना चली। लेकिन भैया, अगर कबो हम पंचे अगर एक के बैलेंस गड़बड़ात है तो दूसरे उके बैलेंस बनाए हुए देते हैं।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहो, संतुलन दोनों के बराबर चलेगा चाहिए। तो देखो, अपने जो हरहा गोरु हैं, चाहे दूध वाले हों चाहे जो काम करते हैं वही हों, तो वहाँ एक बड़ी सामान्य सी बीमारी लग जाती है, खुरपका और मुंहपका। जी वहाँ अगर दूध वाले हैं तो डॉक्टर भैया लोग बतावा करते हैं, हम तो उन्हें से सुने हैं कि अगर दूध वाले हैं तो उनका दूध चला जाता है, अगर काम करने वाले हैं तो काफी कमजोर हो जाते हैं, काम भी उनसे नहीं हो पाता।
0: बिल्कुल भैया, कबो कबो तो अगर ये सब बीमारी ज्यादा बढ़ी गई तो अपन जानवर भी चला जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल चला जाते हैं, जब उनकी उत्पादकता चली गई तो फिर जानवर का उपयोग भी कम हो जाते हैं। तो देखो, ये एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी मुश्किल से जाते अगर लग जाते हैं, लेकिन अगर इनका टीकाकरण करा दिया जाए तो ये बीमारी अपने हरान के गोरुन के पास अबे नहीं करेगी।
0: बिल्कुल ना आए, इसके खातिर हमका टीकाकरण जरूर समय पर करवावे चाहिए। और जब इसकी सही जानकारी सबसे पहले तो हमरे लगे हुई, तब देखो हम पंचे जब कोनी चीज के बारे में अच्छे से जाने रहते हैं तो फिर वो काम समय पर जरूर करवा लेते हैं।
1: तो देखो, आज अपने कार्यक्रम में हाँ, डॉक्टर संगीता तिवारी बहनी जुड़ रही हैं और ये बता रही हैं कि खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण अभियान, तो यू अभियान का है, कैसे चलावा जा रहा है, कैसे लाभ लिया जाए, आओ जाना जाए।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ पशुपालन से आप जुड़े हैं वहाँ कुछ समस्याएं भी आती हैं, जैसे इस मौसम में FMD यानी खुरपका मुंहपका रोग की समस्या। ये रोग है क्या और इसका बचाव कैसे हो, और उसके लिए जो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश से निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डॉक्टर संगीता तिवारी साहिबा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग है।

0: क्या, और इसके बचाव के लिए जो टीकाकरण अभियान अपने प्रदेश में चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी?
1: नमस्कार आप सबको। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक FMD का अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 45 दिन का अभियान निरंतर चलेगा और जिसका कि एक ही उद्देश्य है कि हम अपने सारे पशुओं को टीका लगा के इस रोग से रोग मुक्त करना चाहते हैं। ये टीकाकरण अभियान लगातार सालों साल चलेगा जिससे कि हम इस बीमारी को अपने प्रदेश से भगा सकें और हमारे पशु खूब स्वस्थ रहें और अधिक से अधिक दूध दें।
0: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाई बहन ये जानना चाहेंगे कि ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग है क्या, और इसके नियंत्रण के लिए कौन सा अभियान चल रहा है?
1: ये विषाणु से होने वाला एक अत्यंत संक्रामक रोग है। एक गांव के अगर एक पशु को ये रोग हुआ तो हवा, पानी, चारे और संपर्क के जरिए पूरे गांव में फैल जाता है। इसके प्रमुख लक्षण भी मैं बताना चाहूंगी। पशु को बहुत तेज बुखार होता है, मुंह, जीभ और मसूड़ों में छाले पड़ जाते हैं, मुंह से लार टपकती है और पशु चरना बंद कर देता है। और इसके अलावा खुरों के अंदर भी जख्म हो जाते हैं जिससे पैर से लंगड़ाने लगता है। और जो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव हमारे किसान भाई बहनों के ऊपर पड़ता है वो ये कि दूध का प्रोडक्शन घट जाता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन 80% तक गिर जाता है। गर्भवती गाय भैंसों का गर्भपात हो सकता है। नर पशु खेत में काम करने लायक नहीं रहते। भले ही पशु ना मरे लेकिन वो लंबे समय के लिए कमजोर हो जाता है। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कम हो जाती है उस कंडीशन में वह विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होता है बार बार, क्योंकि शरीर उसका अपना रोग नियंत्रण कर ही नहीं पाता है।
0: डॉक्टर साहब, इलाज से बेहतर बचाव है, ये विषाणु जनित बीमारी है, तो इसके बचाव के लिए जो अभियान चल रहा है प्रदेश में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पशुपालक भाइयों बहनों से?
1: देखिए मैं बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP के तहत उत्तर प्रदेश में FMDCP चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। दिनांक 22 जुलाई से 8 सितंबर के मध्य ये 45 दिन का आठवां चरण ये महाअभियान है। और इस महाअभियान की महाआहुति है कि हर किसान को अपने अपने पशुओं को टीका अवश्य लगवाना है। अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस टीके को अवश्य लगवाना है, जिसमें डोर टू डोर यानी घर घर जाकर टीकाकरण करने वाली टीम सरकार के द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा बनाई गई है, जो जाएंगी टीकाकरण करेंगी, पशु का एक वैक्सीनेशन कार्ड बनाएंगी, उसको किसान बहन भाइयों को संभाल के रखना होगा। और ये टीका जो मैं सबसे जरूरी बात आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ बिल्कुल निःशुल्क टीका है।
0: डॉक्टर साहब, जब टीमें घर घर जाएंगी या गांव गांव जाएंगी टीकाकरण अभियान के लिए, खुरपका मुंहपका से बचाव के लिए, तो क्या कान में कोई टैगिंग भी होगी क्या?
1: जब हमारी टीमें घर जाती हैं तो वे पशु के कान में एक पीला प्लास्टिक का टैग भी लगाती हैं, जो कि पशु का एक तरह से जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है, इसी तरह पशु की वो यूनिक आईडी होती है। ये कान में लगने वाला 12 अंकों का टैग पशु का आधार कार्ड ही कहा जाना चाहिए।
0: यानी पशु का पहचान पत्र।
1: बिल्कुल पहचान पत्र है। और भारत पशुधन पोर्टल पर इसके पशु का टीकाकरण रिकॉर्ड इस टैग के द्वारा ही ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, गांव में अक्सर पशुपालक भाइयों बहनों के मन में भ्रम होता है कि अगर गर्भित जानवर है तो उसको टीका न लगे। आप क्या कहना चाहेंगे पशुपालक भाइयों बहनों से?
1: ये सुरक्षित होता है।
0: और अगर बुखार है जानवर को तो क्या टीका लग सकता
1: हाँ,
0: है?
1: सजेस्टेड नहीं है। बुखार की कंडीशन में थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो उसमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, और जब बुखार ठीक हो जाए तो उसके पश्चात टीकाकरण, क्योंकि 45 दिन का है तो पशु अगर बीमार भी होगा तो 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। वहां नोट करा देना चाहिए कि इसका छूट रहा है और इसका टीकाकरण समय से कर लिया जाए।
0: डॉक्टर साहब, ये क्या साल में टीकाकरण एक बार होता है या दो बार?
1: 2 बार होता है, 6-6 माह पे ये टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाता है।
0: तो एक जैसे अभी चल रहा है,
1: जी
0: इसके 6 माह बाद दूसरी बार?
1: बिल्कुल, 6 माह के बाद ये फिर से रिपीट होगा और हम जब तक इस विषाणु जनित रोग को अपने यहां से विदा नहीं कर देंगे तब तक ये महाअभियान हम चलाते रहेंगे।
0: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों की इस महाअभियान में भागीदारी बढ़े, एक एक जानवर को खुरपका मुंहपका का टीका लगे, इसके लिए क्या पशुपालक भाइयों बहनों का आह्वान करना चाहती हैं?
1: जब टीम आपके द्वार पे आए तो आप सहर्ष खुशी से उनका अभिवादन करते हुए इस टीकाकरण अभियान के अंदर अपने पशुओं को टीका लगवाएं और गर्भवती पशुओं को भी टीका लग सकता है।
0: डॉक्टर साहब, जो ये टीका है, ये किन किन जानवरों को

0: से गाय भैंस में कितनी उम्र से कितनी उम्र तक को लग सकता है?
1: केवल शुरू के 3 महीने मैटरनल एंटीबॉडी होती है बच्चों के अंदर, माँ की जो एंटीबॉडी होती है
0: जी
1: उसमें अगर हम टीकाकरण करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन शेष समय में सारे पशुओं को टीका किया जा सकता है, सब बिल्कुल सुरक्षित है।
0: डॉक्टर साहब, क्या इसका इलाज भी संभव है अगर किसी जानवर को हो जाए तो?
1: बिल्कुल इसका इलाज संभव है और निरंतर अस्पतालों में केस आते हैं और इलाज किया जाता है, संबंधित दवाइयां लगाई जाती हैं और खुरों के अंदर भी एंटीसेप्टिक डाला जाता है और मुंह के छालों के लिए भी फिटकरी इत्यादि के पानी का घोल लगाया भी जाता है, दवाइयां भी आती हैं जो लगाई जाती हैं जिससे रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इलाज हो, तो इलाज बड़े आराम से इसका किया जाता है।
0: टीकाकरण के बाद पशुपालक भाइयों बहनों को अपने जानवरों की देखभाल में कुछ खास हिदायत?
1: गाँव में अगर 90% से ज्यादा पशुओं को टीका लगेगा तभी हर्ड इम्यूनिटी बनेगी, यानी कि सामूहिक सुरक्षा बनेगी। और इसके अलावा सभी पशुओं को, गाय भैंस बछड़े सबको टीका लगवाएं, बाड़े को साफ रखें, नए खरीदे गए पशुओं को 14 दिन अलग रखने के बाद टीका लगवा कर पुराने पशुओं में मिलाएं। ऐसा ना हो आपके पशु ठीक ठाक हैं और बाहर से आया पशु वैक्सीनेटेड ना हो तो वह बीमारी को लेके चला आए, इस बात का ध्यान रखा जाए। किसी भी आपात स्थिति में जानकारी के लिए पशुपालन विभाग के टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करें।
0: यानी 1962।
1: एक विशेष तरह की हमारी सेवा है MVU, मोबाइल वेटनरी यूनिट, जो कि द्वार पे पहुंचती है और इलाज देती है पशुओं को।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहती हैं पशुपालक भाइयों बहनों का खुरपका मुहपका रोग नियंत्रण और टीकाकरण अभियान के बारे में डॉक्टर साहब?
1: मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी तरह का भ्रम ना पालिए, और पशु का सुरक्षा कवच है टीका, इसके बिना हर इलाज है फीका। अपने पशुओं को FMD का टीका जरूर लगवाएं और उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दें।
0: डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रेणु बहनी,
3: विनय भैया,
2: अब बात देखो गीत गोने के
3: अरे भैया तुम तो हमारे मन की बात कहो हैं।
2: देखो गीत गोने यही होते कि जैसे एक मानसिक खुराक होते ना हम सबकी, कि कुछ
3: हाँ
2: मनोरंजन होगा चाहिए, तो स्वस्थ मनोरंजन अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने सब पंचन बहन का कराए रहे हैं। तो आओ सुना जाए संजोली पांडे के स्वर में है यू लोकगीत।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: एक अपने प्रगतिशील किसान है, प्रगतिशील मतलब ऐसा काम कर रहे हैं कि जो दूसरों के लिए प्रेरणा है,
7: प्रेरणा हो।
6: तो आज अपने किसान जो है वे अपने कार्यक्रम में अपने साथ जुड़े हैं, राम सिंह पटेल भैया। तो आओ जाना जाए कि इनकी सफल किसानी क्या राज का है।
7: हम हो पंचे सफल हो भैया।
6: बिल्कुल,
8: आज के किसान क्रम में आइए आपको ले चलते हैं फतेहपुर जनपद के मलवा ब्लॉक के औंग गाँव, जहाँ के नॉनमेसी किसान राम सिंह पटेल भैया हमारे साथ हैं। राम सिंह पटेल भैया, आप नॉनमेसी खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कुल कितनी खेती की जमीन है आपके पास?
9: डॉक्टर साहब, हमारे पास खेती की जमीन 8 एकड़ है।
8: क्या फसल योजना बनाए हैं पूरे साल की, खरीफ रबी जायद की?
9: डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमारे पास 1 एकड़ धान लगा है, बाकी 7 एकड़ पे हमारे ढैंचा बोया था, ढैंचा को हम खेत में कुछ मिला चुके हैं, कुछ मिलाएंगे, जैसे लहसुन करना है तो उसमें अभी ढैंचा खड़ा है, और जैसे प्याज लग जाएगा, प्याज के बाद हमारा लहसुन लगेगा।
8: यानी खरीफ प्याज भी करते हैं?
9: हाँ, खरीफ प्याज करते हैं, 5 एकड़ पे खरीफ प्याज लगेगा, और खरीफ प्याज के बाद फिर उसके बाद लहसुन का काम होगा। लेकिन खरीफ प्याज के हार्वेस्टिंग के बाद 15 नवंबर तक हमारी हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उसमें हम ये सब्जी वाली मटर बोते हैं GS10।
8: अच्छा।
9: और उस मटर पे ही हम उसी समय बुआई के तुरंत बाद ट्रैक्टर से उसमें नालियां बना दे, जैसे मटर हमारी जब रहती है उसी में हम पौध जो है तरबूज और खरबूजा की तैयार करके, और मटर के बीच में ही हम वो खत्म नहीं होती, हम तीसरी फसल उसी में रोपित कर देते हैं।
8: यानी रिले क्रॉपिंग कर रहे हैं।
9: हाँ, तो उसमें क्या है कि जब मटर खत्म नहीं हुई कि तब तक हमारा तरबूज और खरबूजा तैयार हो जाता है, तो हमें 3 कैश क्रॉप उसी जमीन पे मिल जाती है, और एक जो फसल है हम जमीन को देते हैं हरी खाद, एक फसल तो हम उसी जमीन को देते हैं, 3 फसल अपने लिए लेते हैं।
8: यानी साल में 4 फसल ले लेते हैं।
9: 4 फसल ले लेते हैं, ढैंचा जो है खेत के लिए, हमें जैव कार्बन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए।
8: हाँ।
9: और इसके बाद जो है जो 3 फसलें हैं अपने लिए कैश क्रॉप, अपने खाने के लिए और अपने इनकम के लिए हम 3 फसलें बना।
8: इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
9: इस समय हमारे पास धान लगा है, प्याज की नर्सरी है, प्याज रोपाई की तैयारी चल रही है।
8: यानी खरीफ प्याज,
9: खरीफ प्याज
8: 5 एकड़ करेंगे?
9: 5 एकड़ की पूरी तैयारी है हमारे पास, 50 क्विंटल बलवेट है।
8: हाँ।
9: और बाकी नर्सरी है, दो विधि से हम करते हैं, बलबेट विधि और नर्सरी विधि। डॉक्टर साहब, हम बेड सिस्टम में करते हैं क्योंकि बरसात का सीजन होता है, कभी भीषण बरसात हो सकती है।
8: अंतरण क्या रखते हैं और रोपाई कितने दिन की नर्सरी करते हैं खरीफ प्याज?
9: डॉक्टर साहब, खरीफ प्याज की नर्सरी 45 से 50 दिन की तैयार हो जाती है, और जो दोपाई की दूरी होती है अगर हम फ्लैट पे जब लगाते हैं तो 4 इंच पेड़ से पेड़ की दूरी, 6 इंच लाइन से लाइन की दूरी।

0: पूरी रक्षा होती थी। लेकिन जब हम बेड सिस्टम में करते हैं तो हमें पेड़ों की संख्या उतनी ही रखनी है, तो हम जो है लाइन से लाइन की दूरी घटा देते, 6 इंच की बजाय 5 इंच कर देते हैं, पेड़ से पेड़ की 4 इंच ही रह देते
1: कौन
0: हैं।
1: कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं खरीफ प्याज उत्पादन में?
0: खरीफ प्याज के उत्पादन में हमें ध्यान रखना है कि हमें जल भराव वाली जमीन नहीं होनी चाहिए। वर्षा चाहे जितनी हो, हमारे उसमें जल भराव नहीं हो, पानी निकल जाना चाहिए, एक तो ये है। दूसरी बात, समय से समय हमें जैसे खरपतवार जो प्रबंधन, ये सब पूरा हमें ध्यान में रख के पूरा जो है काम करना होता है।
1: अब फसल की भूख कैसे मिटाते हैं?
0: डॉक्टर साहब, एक एकड़ में 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटास और 20 किलो यूरिया हम जोताई पे देते हैं।
1: कुछ कार्बनिक खादों का प्रयोग करते होंगे?
0: हाँ, सड़ी गोबर खाद, बर्मी कंपोस्ट, अगर जो चीज उपलब्ध है वो हम उसमें पूरा दे करके, और फिर जो है
1: और हरी खाद तो है ही।
0: हरी खाद है, और संतुलित खेती करते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व तो हम अपनी फसल को देते हैं जिससे अच्छा उत्पादन होता है।
1: 8 एकड़ की खेती और इतनी विविधता, खास करके मसालों में आप प्याज और लहसुन की भी खेती करते हैं और सब्जियां करते हैं, पूरे साल में कितना खर्चा गिरता है 8 एकड़ की खेती में? उत्पादन कितना ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: डॉक्टर साहब, ये हम लोग जो है ये मान चलते हैं कि लमसम 3 से 4 लाख रुपया हमारा जो है खर्चा होता है, अगर रेट मिल जाता है तो 15 से 25 लाख के बीच में हमारा टोटल बिक्री होती है,
1: पूरे
0: तो
1: साल का?
0: पूरे साल का जो है, तो अगर हम 4-5 लाख जो अपना खर्चा निकाल तो 10 से 15 लाख रुपया तो हमारा साल का सेव बच जाता है।
1: जो अब तक आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: डॉक्टर साहब, हम तो ये कहेंगे, जैसे आज नवयुवक खेती से दूर भाग रहा है, कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन मुझे आज तक नहीं लगा है कि खेती घाटे का सौदा है। हमें उसको जो है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर नहीं करना है, और ज्ञान के साथ साथ अनुभव के साथ खेती अगर आप करोगे तो कभी खेती घाटे का सौदा नहीं है। जहां पे मार्केट हो उस मार्केट के अनुरूप हमें उत्पादन करना चाहिए, तभी हमें अच्छा रेट और हमारा अच्छी तरह से माल बिक जाता।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9936058016, 9936058016, 9936058016।
1: राम सिंह पटेल भैया, आज के किसान क्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: यू रहा आज के किसानवाणी का यू अंक
4: और हमका उम्मीद है कि आप सब किसान भाई बहन इनके यहाँ यू अंक बहुत पसंद आवा हुई है।
3: तो पंचो आज के किसानवाणी का अंक आपके यहाँ कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न हम तक जरूर भेजो। आप इसमें का बेहतर सुना चाहते हो वो हमका बताओ। तो हमारा पता है कार्यक्रम किसानवाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड 226001।
4: और भैया हमारा ईमेल आईडी भी है वो का बता दियो।
3: हमारा ईमेल आईडी है farmandhomeairlko@gmail.com। और अब यह के साथ हमका यानी विनय के यहाँ
4: और हमका यानी रेणु के यहाँ
3: देव अनुमति
4: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा होंगे कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में बुद्ध थीम पार्क का किया लोकार्पण। कहा, भगवान बुद्ध के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा थीम पार्क। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस वर्ष राज्य में 5 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा राष्ट्रध्वज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर अस्मिता डे ने जूडो में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत हर रविवार देशभर में जागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था।
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बुद्धा थीम पार्क का लोकार्पण किया। उन्होंने कपिलवस्तु बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया। श्री पुरी ने कहा कि यह थीम पार्क भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और मानव कल्याण के कालजयी संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में श्री पुरी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल स्वीकृत की गई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को क्रांतिकारी बताया।
3: एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर के लिए मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ का एक योजना अप्रूव की है। इसके तहत 4 साल में डेटा कलेक्शन, डीप वाटर ड्रिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा। इस योजना के साथ आने वाले समय में हम 1,00,000 करोड़ तो प्रतिवर्ष बचा पाएंगे।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देश के गौरवशाली इतिहास से जन जन को जोड़ने का राष्ट्रीय अभियान है। इसे व्यापक जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाना चाहिए। कल लखनऊ में मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान, स्वतंत्रता दिवस तथा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि 14 और 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का अनिवार्य रूप से प्रसारण निश्चित किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता का आह्वान करते हुए इस वर्ष 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा रैली, तिरंगा संगीत समारोह, तिरंगा प्रदर्शनी और सेल्फी विद तिरंगा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख बाजारों और चौराहों को तिरंगा थीम पर सजाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा और राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ आयोजित किए जाएं। 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सभी स्मारकों, स्मृति स्थलों और शहीद स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा मामले को लेकर संसद परिसर में नाटक करने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में आज मुकदमा दर्ज किया गया। काशी जोन के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि संतों की तहरीर पर सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
2: संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाना में एक तहरीर दी गई है, मैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, राहुल गांधी जी और अवधेश जी जो ये हैं, इनके द्वारा सदन में, संसद में कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा जो सनातन धर्म है उसका अपमान हुआ है, उसी में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाए।
0: उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले पर कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
3: जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों के आधार के ऊपर जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे उनको सजा हुई है वो जेल में। बाकी जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, एसआईटी की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी स्वयं, उसके हम सब लोग चिंतित हैं, उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी उसमें दोषी हुए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
0: नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने आज वाराणसी में विंध्य आर्थिक क्षेत्र के 7 जनपदों के सुनियोजित विकास की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्ष 2030 के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए और इसके लिए तकनीक आधारित निगरानी तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में उत्तर प्रदेश ने देश के शीर्ष 100 जनपदों की सूची में अपने 17 जनपदों को शामिल कराया है। सूची में लखनऊ ने पहला स्थान हासिल किया है। एक रिपोर्ट।
4: यूपी नेडा डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि इस सूची में राजधानी लखनऊ ने 1,24,167 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के साथ देश का नंबर एक जनपद बनने का गौरव बरकरार रखा है। वहीं वाराणसी ने भी देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कानपुर नगर 14वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, समयबद्ध स्वीकृति, डिस्कॉम और संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय तथा सब्सिडी वितरण की प्रभावी व्यवस्था ने इस अभियान को नई गति दी है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर स्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में जूडो में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्मिता को इस जीत के लिए बधाई दी है। अस्मिता डे ने बताया कि देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर बहुत खुशी हो रही है।
5: मैं अपने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और गर्व हो रही है। ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का है जिन्होंने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद और शुभकामना दी है। मुझे

0: ये जानकर भी बहुत खुशी हुई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया को 2030 से 31 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी सप्ताह के दौरान मॉनसूनी सक्रियता में वृद्धि का अनुमान जताया है। विभाग ने कल से 5 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस बीच प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बदायूं में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा होंगे कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में बुद्ध थीम पार्क का किया लोकार्पण। कहा, भगवान बुद्ध के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा थीम पार्क। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस वर्ष राज्य में 5 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा राष्ट्रध्वज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर अस्मिता डे ने जूडो में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म सरफिरा से। मनोज मुंतशिर, सोहित अभ्यंकर, सागर भाटिया और नीति मोहन की आवाज़ में। गीत के बोल मनोज मुंतशिर के हैं और

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म टाइगर जिंदा है से। विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और गायक कलाकार हैं आतिफ असलम।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण, और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:40 हुए हैं। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। तो कार्यक्रम का अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म ट्यूबलाइट से। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे, माफ कीजिएगा श्रोताओं, संगीत अमित भट्टाचार्य का है और गीत के बोल प्रीतम ने लिखे हैं, और गायक कलाकार हैं अतिफ असलम।

श्रोताओं, अभी आपने आतिफ असलम की आवाज़ में फिल्म ट्यूबलाइट का गाना सुना। प्रीतम के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे थे अमिता भट्टाचार्य ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से, राहुल मिश्रा की आवाज़ में। गीत के बोल लाडो सुवालका ने लिखे हैं और संगीत राहुल मिश्रा का है।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिटी लाइट्स का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। रश्मि सिंह ने गीत के बोल लिखे थे और संगीत जीत गांगुली का था। और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चंदू चैंपियन का गीत प्रीतम, अरिजीत सिंह, अमित मिश्रा और आईपी सिंह की आवाज़ में। गीत के बोल आईपी सिंह के हैं और संगीत प्रीतम का है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सब रह सब यहीं पर समाप्त होता है। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 बजे तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए।

इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के बृजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर

0: करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM 102.7 पर यह आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चमत्कार का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू, सुदेश भोसले, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक को फिल्म आंखें में। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था बप्पी लहरे ने। और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म डर का गीत उदित नारायण की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शिव हरि ने।

श्रोताओं, डर फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। FM 102.7 पर यह आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास की आवाज़ में ये प्यारी सी गज़ल। श्रोताओं, कार्यक्रम की गज़ल सुनने से पहले आइए सुन लेते हैं ये संदेश।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी गजल आपने सुनी मितारे सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में। और इसी के साथ गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। FM 102.7 पर यह आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
3: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई है। 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
2: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
3: मुझे पूरा विश्वास है आज यहां जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है,

0: जिनकी नींव रखी गई है वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117.85 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44.55 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379.35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193.95 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
3: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
1: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
4: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का

0: एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
3: अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन में से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल लेऊं। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, SAI को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
2: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
1: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5,000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekananda Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athletes Oman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artefacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekananda Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
5: Swami Vivekananda ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
4: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS and increasing medical seats as well.
5: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई आईटीआई बनाई गई, 9 नए आईआईएम, 7 नई आईआईटी और 13 नए एमबी स्थापित किए गए हैं। आज देश में एमबीबीएस की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
4: Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Governor Thavarchand Gehlot and the President of Ramakrishna Math, Srimad Swami Gautamanandji Maharaj were present on the occasion. Earlier in the day, Prime Minister Modi launched development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure at Vizianagaram in Andhra Pradesh. Addressing a public meeting, the Prime Minister said Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and the centre is fully committed to realising the vision of Swarna Andhra and Vikasit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development.
5: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है।
6: एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
4: Prime Minister Modi also inaugurated the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram and said it is a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Alluri Sitarama Raju, which will inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
6: बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 है। एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है।
4: Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Vikasit Bharat Sankalp Abhiyan tomorrow through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the program. Union Home Minister Amit Shah has approved the advance release of 2,117.85 crore rupees from the central share of the State Disaster Response Fund SDRF to support the states affected by floods during the ongoing southwest monsoon. We have a report.
7: The assistance approved for the affected states includes 44.55 crore rupees to Arunachal Pradesh as advance release of the first installment for the financial year 2026-27. For Assam, 379.35 crore rupees has been sanctioned as the first installment, while Gujarat has been approved 500 crore rupees. Himachal Pradesh, which had already received the first installment, has been sanctioned 193.95 crore rupees as advance release of the second installment. While Odisha has been sanctioned the second installment of 500 crore rupees. Further, Maharashtra has been approved 500 crore as advance release of the first installment. The Home Ministry noted that since the onset of the monsoon, the government has been continuously monitoring the flood situation in close coordination with the state governments. It added that the government has also extended all possible assistance, including pre-deployment of National Disaster Response Force teams and logistical support from the Ministry of Defence wherever required. Interministerial central teams have already been deputed to Arunachal Pradesh and Assam to assess the damages. It added that on the request of the government of Nagaland, an IMCT is also being constituted for the state. The Home Ministry further underlined that this approval aims to strengthen the ongoing relief and response measures of the flood-affected states. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
4: Meanwhile, the flood situation in Odisha continues to remain grim, with the Mahanadi and its tributaries in spate, posing a fresh threat to low-lying areas of Katak, Puri, Jagatsinghpur, Kendrapara and Khordha districts. 10 downstream districts remain on high alert as Hirakud Dam continues releasing flood water through 22 gates. More than 8 lakh people have been affected, while over 2,69,000 people have been evacuated to safer places. Chief Minister Mohan Charan Maji today conducted an aerial survey. Meanwhile, IMD has forecast more rainfall over parts of the state, keeping the flood threat alive. In Kerala, incessant heavy rain has caused widespread havoc, triggering landslides and severe waterlogging across the state. 6 rain-related deaths have been reported today from Kottayam, Idukki and Malappuram districts, while 6 people remain missing. More from our correspondent.
8: Amid the possibility of extreme heavy rainfall, the India Meteorological Department has issued a red alert for 9 districts and an orange alert for 5 districts in Kerala today. More than 1,400 people have been shifted to relief camps opened in the affected areas. The State Disaster Management Authority has informed that 17 houses were completely destroyed, while 127 houses were partially damaged in rain-related incidents today. Widespread damage to agricultural crops has also been reported from several districts. Shabarimala pilgrims have been advised to avoid visiting the temple on August 2nd and 3rd in view of the heavy rainfall and the rising water levels in the Pamba River. As water levels in several rivers and dams continue to rise, authorities have issued alerts to people living in nearby areas. Fishing activities have been banned along the Kerala, Karnataka and Lakshadweep coast until tomorrow. Anila Balakrishnan, Akashavani News, Thiruvananthapuram.
4: In Maharashtra, continuous rainfall has led to a sharp rise in the water levels of rivers, streams and lakes.

0: Korean Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Soman Ra now bags gold in men's shot put F57. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनने से पहले आइए सुन लेते हैं ये संदेश।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म छलिया का गीत मुकेश की आवाज़ में। कमर जलालाबादी की लिखी इस गीत को संकेत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण, और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:24 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म रंगोली से, किशोर कुमार की आवाज़ में। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं पर समाप्त हुआ। FM 102.7 पर यह आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों तक एक संश्लिष्ट यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है, जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है, जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है, जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक ठौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त, या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूं, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी, फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है, सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू क हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़त न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक
धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छाह सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आँखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा, हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों की, वह एक है। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो लेखन है, उस लेखन का तरीका अलग है, लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नियति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है, और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता कि जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो, चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी। हिंदी एक बड़ी भाषा थी क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व ज्यादा था। तो देखा तो हिंदी में तमाम

0: पत्रिकाएं थी जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी, अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पे इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था, लोगों को यह लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सबकी पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहाँ ले जाना, और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया, जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए। और वह जानने का माध्यम यही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था थी, उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें, तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में, वो किस प्रकार का बीता। और इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को, जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था, उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित करते हैं और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में उन क्षेत्र के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं, इसे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र

0: प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
1: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से निश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमर कृति जिसने बहुत कम शब्दों में यानी अत्यल्प में पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती अत्यल्प में संपूर्ण, और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेर दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
0: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
1: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र प्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
0: तुम सभ्य हो मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो ईश का अस्तित्व सत्य न मानते है, भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव इस ऋषभूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है क्रूर और कराल है।
1: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई, तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
2: एक समय पर भारत भारती की स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
1: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथ्य बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
0: हे नव युवाओं देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी, दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहां क्या हो रहा है आजकल संसार में, सुख शांतिमय सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ, अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
1: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड, भविष्यत खंड, मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
3: हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती का भी उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
1: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है, जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
4: भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं, तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के इस भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं, तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
1: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
0: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, कलम का दम और सोजे वतन।
5: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत तो होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए, जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का। रचनाकार नवाब राय, यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल अमर रचनाएं दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम केवल कहानियां नहीं थी बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
0: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
6: जब वे सोजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं, तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था।

0: जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्के दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपने रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
1: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की पांचवी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने ये स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को यह भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
2: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,
3: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक दयाराम निगम ने दिया और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
1: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
2: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, व्यंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। चिन्मया भगिनी ने अपनी संगीत शिक्षा पद्मभूषण विद्वान मदुरई श्री टी एन शेषगोपालन और कलईमा

0: मणि विद्वान नैवेली श्री आर संतान गोपालन से प्राप्त की। आप अपने गुरु की प्रमुख शिष्याओं में से एक हैं। संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि के कारण आप देश विदेश की विविध संगीत सभाओं में अपना गायन प्रस्तुत करती आ रही हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन टीवी चैनलों पर आपके द्वारा प्रस्तुत अनेकानेक कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। चिन्मया भगिनी अनेक पुरस्कार एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। आज के कार्यक्रम में चिन्मया भगिनी के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स। In tonight's national program of music, we bring to you a Carnatic classical vocal recital by Chinmaya sisters, Srimati Uma and Srimati Radhika. Chinmaya sisters are one of the leading and popular duo in the field of Carnatic music. With their mellifluous voices, spirited singing and strict adherence to classicism, the duo has captured the hearts of rasikas worldwide. Chinmaya sisters are senior disciples of Padma Bhushan awardee Madurai Sri T.N. Seshagopalan and Kalaimamani Neyveli Sri R. Santana Gopalan and have successfully imbibed and observed the specialities of their guru's style in their singing. They have travelled extensively and performed in prestigious venues all across India and abroad. They are A-graded artists of Akashvani and have had the privilege of performing in many special programs organized by Akashvani and Doordarshan. In tonight's concert, Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika are accompanied by Srimati Shraddha Ravindra on the violin, Sri B. Ganapati Raman on the mridangam and Sri N. Sundar on morsing.
0: कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं नाट्य राग और रूपक ताल में हरिकेशनल्लूर मुत्तया भागवतर की रचना शक्ति गणपतिम।
1: द कॉन्सर्ट फॉर टुनाइट बिगिंस विद द कॉम्पोजिशन ऑफ हरिकेशनल्लूर मुत्तया भागवतर इन रागा नाट्य सेट टू रूपक तालम शक्ति गणपतिम।

0: अब सुनिए संत्यागराज की रचना ई वसुधा, राग है सहाना, ताल है आदि।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद ई वसुधा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा सहाना सेट टू आदि तालम।

0: चिन्मया भगिनी अब प्रस्तुत कर रही हैं मां मव मीनाक्षी, वराली राग और मिश्र चापुताल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका फर्दर कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद मा मव मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन रागा वराली सेट टू मिश्र चापुतालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चिन्मया भगिनी, श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर लिसनिंग टू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। दे आर अकंपनीड बाय श्रीमती श्रद्धा रविंद्र ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंग।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं मोहनम राग और आदिताल में रचना नन्नू पालिम्पा। रचनाकार हैं संत त्यागराज।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद नन्नू पालिम्पा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा मोहनम सेट टू आदितालम।

0: अभी आपने सुना तनिया वर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: You just heard to a Thani Avartanam played on the Mridangam by Shri B. Ganapati Raman and by Shri N. Sundar on Morsing.
0: कार्यक्रम का समापन करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं जौनपुरी राग और आदि ताल में पापनासम शिवन की रचना मुरुगनई बजी मनमे।
1: चिन्मया सिस्टर्स कंक्लूड देयर कॉन्सर्ट विद मुरुगनई बजी मनमे, a composition of Papanasam Sivan in Raga Jaunpuri set to Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: In tonight's national program of music, you just listened to a Carnatic classical vocal concert by Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika. They were accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on violin, Sri B. Ganapati Raman on mridangam and Sri N. Sundar on morsing. With that, we come to the end of tonight's national program of music. This program was recorded at the studios of Akashvani Chennai and was broadcast from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में 650
3: पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के

0: नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117.85 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 पर यह आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 11:05 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।